श्रोताओं नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 800 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 28वीं तिथि तदनुसार 18 जून 2026। इस समय सुबह के 5:59 हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

नई समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष रूप से विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोद्योमिर जेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में

0: ईरान के साथ समझौते के दौरान नौ वहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं विचार मंथन। अनुशासन किसी के ऊपर थोपा नहीं जाता बल्कि आत्म अनुशासन लाया जाता है, ऐसा कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन, आलेख डॉक्टर फादर डेविड जॉर्ज का, वाचक है दिनेश नामदेव।
1: एक दिन बालक थॉमस एडिसन स्कूल से घर आए और अपनी माँ को एक चिट्ठी देते हुए बोले कि इसे मेरी टीचर ने आपको देने के लिए कहा है। जब उसकी माँ ने वो चिट्ठी पढ़ी जो उसके बेटे ने उसे दी थी, तो उसकी आंखें भर आईं। वो स्तब्ध रह गई। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर उसने अपने बेटे को पत्र पढ़कर सुनाया कि उसकी टीचर ने लिखा है, आपका बेटा बहुत प्रतिभाशाली है। ये स्कूल उसके लिए बहुत छोटा है और यहाँ बहुत अच्छे शिक्षक भी नहीं हैं जो उसे सही तरह से पढ़ा सकें। इसे आपको ही पढ़ाना होगा। एडिसन की माँ ने उसी दिन से तन मन लगाकर अपने बच्चे को पढ़ाया, उसकी काबिलियत को जगाया, आत्मविश्वास बढ़ाया, उसके सपनों को सजाया और सपनों को हकीकत में बदलने के लिए प्रेरणा दी। और वो बालक कालांतर में दुनिया का सबसे मशहूर वैज्ञानिक बना। कई वर्षों बाद एडिसन की माँ का देहांत हो गया। माँ के अंतिम संस्कार के बाद जब वे अपनी माँ के कमरे में बैठे हुए थे, अचानक उनकी नज़र उस चिट्ठी पर पड़ी जो उसकी टीचर ने स्कूल के दिनों में उनकी माँ के लिए लिख कर दी थी। उन्होंने बड़ी उत्सुकता से चिट्ठी को उठाया, उसे खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था कि थॉमस एडिसन कमज़ोर दिमाग के बच्चे हैं और यहाँ उसको पढ़ाना संभव नहीं है। दूसरे बच्चों को और शिक्षकों को इससे कई प्रकार की असुविधा होने के कारण कल से इसे शाला में नहीं भेजने की कृपा करें। एडिसन बहुत देर तक रोते रहे और फिर उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, थॉमस एडिसन एक कमज़ोर दिमाग का बालक लेकिन एक महान माँ का बेटा था और उस महान माँ के कारण वो अब इस शताब्दी का एक बहुत बड़ा आविष्कारक बन गया है। ज़रा सोचिए कि अपने बच्चों पर विश्वास रखना कितना महत्वपूर्ण है। माता पिता अपने बच्चों के जीवन में चमत्कार कर सकते हैं, बस उन्हें उन पर विश्वास रखना होगा, प्यार करना होगा, समय देना होगा ताकि वे तरक्की कर सकें। माँ का प्यार अपने बच्चे के जीवन को

0: परिवर्तित कर सकता है। पिता का साथ और प्रोत्साहन बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ा सकता है। नकारात्मक टिप्पणी मासूम बच्चे की बुद्धि को बर्बाद कर सकती है। हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। वो केवल प्यार और रोशनी में ही पनपते हैं। शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वे बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाएं। आज जरूरत है कि बच्चों को सही दिशा प्रदान की जाए और उस दिशा में बढ़ने की ओर उनको प्रोत्साहित किया जाए। जब वे गलती करें तो उन्हें सही दिशा प्रदान करें। हमारा जन्म जीतने के लिए हुआ है, पराजित होने के लिए नहीं। हम ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ संरचना है। बच्चों में गलती निकालकर उसे निराश करने से अच्छा है कि उसकी विलक्षणता, शक्ति, मजबूत इरादे और प्रतिभा को समझने की कोशिश करें। एक बालक का जन्म अनेक क्षमताओं और प्रतिभाओं के साथ होता है। हमें उनकी मदद करके उनमें अंतर्निहित प्रतिभाओं और योग्यताओं की खोज करना चाहिए ताकि वो एक सफल व्यक्ति बन सके। वे समय के साथ प्रतिभाओं के धनी हो सकते हैं। मानवता का भविष्य इस पर निर्भर करता है कि हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं। बच्चों का बचपन बहुत कुछ सीखने का अमूल्य समय है जो प्रतिभाओं और क्षमताओं से भरपूर होता है। उन्हें सिर्फ सही प्रशिक्षण की जरूरत है। माता पिता और शिक्षकों को बच्चों को सही करते समय पकड़ना चाहिए, ना कि गलती करते समय। हमारी मानसिकता में जब इस प्रकार का परिवर्तन होगा, बच्चे बहुत जल्दी सीखेंगे, बढ़ेंगे और देश का नाम ऊंचा करेंगे। अत्यंत आवश्यकता है सकारात्मक रुख को अपनाना और प्यार से, प्रोत्साहन से और सही मायने में बच्चे का आत्मविश्वास जगाना और बढ़ाना।
1: चिंतन में भी आप सुन रहे थे डॉक्टर फादर डेविड जॉर्ज का लेख, वाचक थे दिनेश नामदेव। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस का गान, गायक सर शोभना राव भूपिंदर सिंह के।

सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहउ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजसु विधि हाथ। श्री रामचरित मानस का ये दोहा भारतीय जीवन दर्शन का मानो एक आधार स्तंभ है। राजा दशरथ की अंत्येष्टि तथा दशगात्र विधान संपन्न हो जाने के पश्चात मुनि वशिष्ठ ने राजसभा में भरत को धीरज बंधाते हुए ये वचन कहे थे। राजा दशरथ के निधन पर सोच करने का औचित्य नहीं है। सोच उस राजा के बारे में करना चाहिए जो नीति निपुण नहीं होता और जिसे प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं होती। मुनि वशिष्ठ ने इस प्रकार नारी वर्ग सहित समाज के विभिन्न वर्णों, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा अन्य लोगों के हित अहित और उन कार्यकलापों की चर्चा की जिनके कारण वे सोच करने के हेतु बनते हैं। राजा दशरथ तो सब प्रकार से बड़भागी थे, अतः उनके कारण विषाद व्यर्थ है। उन्होंने भरत को राज दिया है तो भरत को पिता के वचन को साकार करना चाहिए।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गान, गायक स्व शोभना राव भूपिंदर सिंह के थे। यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है, 6:45 हुए हैं। कृषि सामयिकी में सुनिए निम्बोली का कीटनाशक संबंधी जानकारी।
1: किसान भाई बहनों, हम अक्सर बातें किया करते हैं कि जैविक खेती अपनाना है, जैविक पौध सुरक्षा आपको अपनाना है, इसमें निम्बोली का बड़ा महत्व होता है। जब हम नीम की बात करते हैं तो नीम के पत्ती की याद आती है, जिसे हम कीड़े मकोड़ों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन नीम की निम्बोली इससे ज़्यादा असरकारक होती है। इसमें बहुत सारे उपकारी उपाधान होते हैं जो पौधों में लगने वाले कीट और रोगों को मारते हैं। जैसे सुंडी को यह पत्ती खाने से रोकता है। घरेलू उपचार में हम अगर नीम के तेल की बात करें तो इसमें हम बहुत सारे कीटों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नीम की अच्छी गुणवत्ता का तेल हमें यदि प्राप्त नहीं हो पाता तो कीटों पर इसका असर उतना नहीं होता जितना कि हम चाहते हैं। ऐसे में आप सभी को नीम के बीज या निम्बोली से जैविक कीटनाशक तैयार करने की हम सलाह देते हैं। अब जैसा कि मौसम चल रहा है, इसमें आप देख रहे होंगे कि नीम के जो पेड़ हैं इससे निम्बोली गिरने लगती है, जिसे आप इकट्ठा करके सुखा लें, इससे हम जैविक कीटनाशक तैयार कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि जैविक कीटनाशक तैयार करने के लिए क्या क्या सामग्री होगी और उसे कैसे तैयार करना है। इस जैविक कीटनाशक को बनाने के लिए आपको 5 किलो निम्बोली, 20 लीटर गुनगुना पानी और 200 मिलीलीटर तरल साबुन या डिटर्जेंट और एक सूती कपड़ा जो कि कीटनाशक छानने के लिए उपयोग होगा। एक बार फिर से सामग्री हम आपको बता रहे हैं, 5 किलो निम्बोली, 20 लीटर गुनगुना पानी और 200 मिलीलीटर तरल डिटर्जेंट, जिसे कि हम लिक्विड डिटर्जेंट भी बोलते हैं, वो लेना है और साथ में सूती कपड़ा लेना है कीटनाशक छानने के लिए। इस प्रक्रिया में ये ध्यान रखना होगा, अगर आपको इस कीटनाशक को फसल में स्प्रे करना है तो छिड़काव से एक दिन पहले नीम के तेल को बनाने की तैयारी कर लें। इसको बनाने के लिए सबसे पहले निम्बोली को सुखाकर पाउडर बना लें, इसमें अब गुनगुना पानी मिलाकर अच्छे से मिला लें। इसको मिलाने के बाद इस घोल को रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दें। जब आप इस घोल को रात भर छोड़ते हैं तो रात में बीच में जब भी आपको अवसर मिले इसको हिला लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगले दिन सुबह इस घोल को सूती कपड़े से छान लें। अब इस घोल में तरल डिटर्जेंट जो हमने आपको पहले बताया था डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लें। इसके बाद ये घोल बंद कर तैयार हो जाएगा। इस घोल को हम 80 लीटर पानी में मिला सकते हैं, जिससे 20 लीटर और 80 लीटर मिलकर 100 लीटर स्प्रे सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, जिसे कि आप अपने फसलों पर छिड़काव कर सकते हैं। इसको बनाते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी, जैसे कि इस घोल को हर बार ताज़ा तैयार करें। रखा हुआ घोल बिल्कुल भी उपयोग ना करें, क्योंकि उसकी सांद्रण क्षमता जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, इससे कीटों पर आपको प्रभाव नहीं दिखेगा। इसी प्रकार इस घोल को धूप से बचाएं, धूप के नीचे बिल्कुल ना रखें, इससे भी इसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। सबसे अच्छी बात इस कीटनाशक घोल में ये है कि ये कीटनाशक जो हमने बनाया है ये हमारे मित्र कीट जैसे कि मधुमक्खी और अन्य उपकारी कीड़े, इनको कोई भी हानि नहीं पहुँचाता है। यह जैविक कीटनाशक के छिड़काव के बाद अगर बचता है तो इस घोल को मिट्टी में अच्छी तरह से मिला लें तो फसलों को कीड़ों के आक्रमण से ये पहले से ही बचाएगा। तो इस तरह से आप सभी आसानी से नीम की निम्बोली से नीम के तेल का घरेलू उत्पादन कर सकते हैं।
0: कृषि सामयिकी में निम्बोली कीटनाशक संबंधी जानकारी दे रहे थे विपिन यादव। ये प्रसारण विविध आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से किया जा रहा था। 6:50 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण।

गुड मॉर्निंग। जबलपुर का समय होगा 7:20 का। 8:30 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। 9 लोक राजस्थान में गायत्री जैन और कृष्णा नायडू के गाय बुंदेली लोकगीत सुनवाए जाएंगे। वंदे मातरम गौरव गान की 1:30 10:05 पर, विश्व दर्पण 10:10 पर सुनिएगा, सारंगा 10:20 पर।

दोपहर 1 बजे महिला सभा के अंतर्गत सुनिएगा सुश्री रश्मि शर्मा की वार्ता पर्यावरण संरक्षण।

1:33 पर होगा लोक संगीत का कार्यक्रम, सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा 1:45 पर आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम 2:00 से।

5:02 पर होगा कार्यक्रम युवाणी। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा 5:33 पर। NCRT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा 6:00।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बैतूल प्रवास पर आधारित रेडियो रिपोर्ट सुनी जा सकती 6:30 पर। कृषि जगत के अंतर्गत श्री विकास सिंह का बुंदेली कविता पाठ। सुर्खियों में 8:00 फिल्म संगीत। 8:35 पर स्पॉटलाइट। 9:15 हंसना मना है इस धारावाहिक का 6वां भाग। 9:30 प्रस्तुति होगी डॉक्टर बैजनाथ गौतम की। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में ललित रतुनी का तबले पर बजाए 3 ताल सुना जा सकता है। 10:00 मनभावन। 10:30 कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: प्रदेशस्य बैतूल नगरे आध्यात्मिक जागृत्या जनजातीय समाजस्य सशक्तिकरण कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। द्वितीय दिवसे सा ओडिशायाः रायरंगपुरे चिकित्सा शिविरस्य ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनायाः च उद्घाटनं विधास्यति। तृतीय दिवसे राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह पहाड़पुरे कौशल केन्द्रस्य निरीक्षणं करिष्यति, सहैव रायरंगपुरे जनसभां च संबोधयिष्यति। चतुर्थ दिवसे सात जून मासस्य एकविंशति दिनांके जबलपुरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसोत्सवे भागं ग्रहीष्यति, सहैव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहे अध्यक्षतां विधास्यति। यात्रायाः चरमे सोपाने सा ख्यूनो राष्ट्रीय उद्याने सहरिया जनजातीय सदस्यैः चीता अन्वेषकैः च सह संवादं विधास्यति। संयुक्त राष्ट्र संघस्य खाद्य संस्थाभ्याम खाद्य एवं कृषि संघटनेन अथ विश्व खाद्य कार्यक्रमेण च विज्ञापितं यत् आगामीषु मासेषु युद्ध जलवायु परिवर्तन धन न्यूनता कारणात् विश्वस्य त्रयोदश प्रमुख क्षेत्रेषु बुभुक्षा संकटं अधिकं गभीरं भविष्यति। संयुक्त प्रतिवेदनस्य अनुसारं सम्प्रति जगति 66-200 कोटि जनाः तीव्र खाद्य असुरक्षया पीडिताः सन्ति। अस्यां सूच्यां सुडान, दक्षिण सुडान, यमन, फिलिस्तीन, नाइजीरिया, सोमालिया चेत्यादयः देशाः अत्यधिक संकटग्रस्ताः सन्ति। प्रतिवेदने चिंता प्रदर्शिता यत् विंशति द्वाविंशति तः परं मानवीय सहायतायै प्राप्यमाणं धनं 60% न्यूनं जातम्। WFF संस्थायाः कार्यवाहक निदेशकः कार्ल स्काउ महोदयः अवोचत् यत् यदि शीघ्रं किमपि कार्यान्वयनं न क्रियते तर्हि कोटिशः जनाः दुर्भिक्षस्य गर्ते पतिष्यन्ति। हॉकी क्रीडायां नीदरलैंड देशस्य राइडरहेम नगरे प्रचल्यमाणायाः FIH प्रो लीग स्पर्धा मालिकायाः द्वन्द्वे भारतीय पुरुष हॉकी दलेन जर्मनी दलं 3-1 इत्यांकांतरालेन पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
2: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। इसमें ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने, डीप फेक और बच्चों के शोषण जैसी चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता

सीईटीए इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिसिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मैच में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से मनदीप सिंह, शिलानंद लाखड़ा और नीलकांत शर्मा ने गोल किए। ये मनप्रीत सिंह का 413वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। उन्होंने भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का कीर्तिमान बनाया। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रम के लिए देश भर में 1,70,000 से अधिक आयोजकों ने पंजीकरण कराया है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि योग संगम स्वास्थ्य के माध्यम से एकता का उत्सव है। इसके तहत देश भर में हजारों स्थानों पर लोग एक साथ योग करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति आज से प्रदेश के 5 दिवसीय प्रवास पर। प्रधानमंत्री आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। महाराणा प्रताप का जीवन वीरता शौर्य पराक्रम का प्रतीक, कहा मुख्यमंत्री ने। और भारत ने पुरुष क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को और महिला T20 क्रिकेट मैच में नीदरलैंड को हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से प्रदेश में 5 दिवसीय दौरा कर रही हैं। आज सुबह मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य उनका इंदौर विमानतल पर स्वागत करेंगे। इसके पश्चात वे बैतूल जाएंगी। वहां वे ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल सोसाइटी बाय स्पिरिचुअल अवेकनिंग कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस कार्यक्रम के बाद वे ओंकारेश्वर पहुंचकर मंदिर में दर्शन एवं आरती में सम्मिलित होंगी। 19 जून को राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर ओंकारेश्वर में कार्यक्रम में शामिल होंगी। 20 जून को राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जबलपुर पहुंचेंगी और 21 जून वहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके पश्चात रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह में सहभागिता करेंगी। 22 जून को राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और इसके बाद वे ग्वालियर पहुंचकर नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वीवा टेक 2026 सम्मेलन में भाग लेंगे। वे भारत की तकनीकी प्रगति और नवाचार को दुनिया के सामने रखेंगे। पेरिस में प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से भारत फ्रांस संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। इससे पहले G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई विश्व नेताओं से मुलाकात की और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस साल 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय निर्यात को बड़ा लाभ मिलेगा। भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। इससे वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जीवन वीरता शौर्य पराक्रम त्याग का प्रतीक है। उनका नाम स्मरण करते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। महाराणा प्रताप ने तमाम कठिनाइयों के बीच भी राष्ट्र प्रथम को सर्वोपरि रखा। समाज का हर वर्ग, देश की अस्मिता और आत्मसम्मान के लिए महाराणा प्रताप को एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में देखता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती के अवसर पर भोपाल के महाराणा प्रताप नगर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने समाज के प्रतिभाशाली डॉक्टर, युवा खिलाड़ियों और समाज सेवियों को मंच से सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा,
2: यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विरासत से विकास की ओर जब बढ़ने की बात आएगी तो हमारे लिए भौतिक अधोसंरचनाएं जीवन उपयोगी आवश्यक वस्तुओं के लिए, लेकिन गौरवशाली अतीत के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसे कामों के सिलसिले में हमने कमिटमेंट किया था कि महाराणा प्रताप जयंती पे छुट्टी होगी तो पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर अपने उस अवकाश को भी निभा रहा है। लेकिन अवकाश के साथ साथ उनके जीवन के सभी पक्षों को आने वाली पीढ़ी को जानने के लिए भी हम पाठ्यक्रम में भी महाराणा प्रताप को जोड़ने वाले हैं, ताकि स्कूल एजुकेशन के माध्यम से उनके जीवन के सभी पक्षों से भविष्य की पीढ़ी को भी सीखने को मिले।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ 2028 के भव्य आयोजन के लिए हजारों करोड़ के विकास कार्य तेजी से पूर्ण किए जा रहे हैं। उज्जैन, इंदौर और आसपास के सभी जिलों में विकास को गति मिल रही है। इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन में धार, नागदा और रतलाम को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल उज्जैन जिले के नागदा में बालाजी धाम में श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा व ध्वज पूजा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर यादव का श्री बालाजी धाम में भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत विशेष रूप से उपस्थित थे। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएन वुमेन द्वारा संचालित सेफ सिटीज एंड सेफ पब्लिक स्पेसेस फॉर वुमेन परियोजना में जबलपुर शहर को शामिल किया गया है। जबलपुर का चयन देश के एकमात्र शहर के रूप में किया गया है। विश्व के चुनिंदा 65 शहरों में संचालित इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत जबलपुर में महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक सर्वसाधारण सार्वजनिक वातावरण विकसित करने की दिशा में कार्य योजना तैयार की जाएगी। इस उपलब्धि पर कल मानस भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिला जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े अनुभव और सुझाव साझा किए। इन सुझावों के आधार पर शहर के लिए एक विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं, छात्राओं और कामकाजी युवतियों के लिए सार्वजनिक स्थलों को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान

पाकिस्तान को 170 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। वहीं महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में कल रात भारत ने नीदरलैंड को

मुकाबले में भारत का सामना जर्मनी से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 19 जून को विकासखंड कोलारस के ग्राम पचावली और 20 जून को जिला मुख्यालय शिवपुरी स्थित मानस भवन में प्राकृतिक खेती कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी आज आगरमालवा स्थित नमो उपवन में वृक्षारोपण करेंगे और साथ ही जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। नर्मदापुरम जिले में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर मतदाता सूची को अपडेट करने का काम जारी है। इसके तहत नए मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं, जबकि मृत या दोहरी प्रविष्टि वाले नाम हटाने और अन्य त्रुटियों को सुधारने की कार्रवाई की जा रही है। इंदौर जिले के चंद्रावतीगंज में आगामी 20 जून को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उपस्थित रहेंगे। कटनी जिले में आयोजित जनकल्याण शिविरों के माध्यम से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया जा रहा है। शिविर में अब तक 13,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 12,156 का निराकरण किया जा चुका है। श्योपुर जिले में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत छात्रों के लिए संचालित मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में रसोइयों के लिए कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से प्रदेश के 5 दिवसीय प्रवास पर। प्रधानमंत्री आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। महाराणा प्रताप का जीवन वीरता शौर्य पराक्रम का प्रतीक, कहा मुख्यमंत्री ने। और भारत ने पुरुष क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को तो वहीं महिला T20 क्रिकेट मैच में नीदरलैंड को हराया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर होगा। दीजिए अनुमति। नमस्कार।

सुबह हो, आज हम रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस मना रहे हैं। जी हाँ, रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासक, झांसी की रानी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख वीरांगना थीं। उन्होंने अंग्रेज़ों की हड़प नीति का विरोध किया और अंतिम सांस तक मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी कहते हुए बहादुरी से युद्ध किया। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका तांबे था, लेकिन प्यार से उन्हें लोग मनु कहते थे। उनके पिता का नाम मोरोपन तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। छोटी उम्र में ही उनकी माँ के निधन के बाद उनके पिता ने उनका पालन पोषण किया। बचपन से ही मनु ने घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी जैसे युद्ध कौशल सीख लिए। उनका विवाह 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। उनके एक पुत्र हुआ जिसकी 4 महीने की आयु में ही मृत्यु हो गई। बाद में राजा ने एक दत्तक पुत्र दामोदर राव को अपना उत्तराधिकारी बनाया,

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

अग्नि की लौ सदैव ऊपर ही ओर उठती है और पानी का स्वभाव नीचे की ओर बहना है, लेकिन हमारा मन ऊपर नीचे दोनों दिशाओं में जा सकता है। ऊपर की दिशा शांति, विस्तार और आकाश जैसी बंधन मुक्त है, जबकि नीचे की दिशा भौतिक वस्तुओं, वासनाओं और आकर्षणों से भरी है। अब ये हमारी पसंद है कि हम मन को किस तरफ ले जाएं। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम सदा फूलों की सुगंध लेने वाली मधुमक्खी की तरह बने, ना कि उस मधुमक्खी की तरह जो खाद्यान्न से भरा थाल छोड़कर गंदगी की ओर मुरझाती है। मेले दर्पण में सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंबित नहीं होता है। इसी तरह भक्ति में भी अहंकार शामिल हो जाए तो साधना धुंधली ही रहेगी। मन में यदि अशांति है तो ईश्वर ही नहीं बल्कि हर किसी को हमारी भाव भंगिमा से यह दिख जाएगा कि हम समर्पण में विनय नहीं अहंकार परोस रहे हैं। सूखी दिया सलाई एक बार में ही जल जाती है, लेकिन गीली तिली को कितना भी घिसो उससे चिंगारी नहीं निकलती। वैसे ही यदि मन कंचन, कामनी की आसक्ति, विषय वासना और कुविचारों में भीगा है तो उसे कितनी भी ईश गाथा सुनाई जाए उसमें भक्ति की लौ नहीं जलेगी। यदि हम घंटों प्रार्थना करें पर अंतरंग में विषय कसाय उधम मचा रहे हों तो स्थिति वैसी ही रहेगी जैसे समुद्र की तरफ पीठ करके बैठने पर अथाह जलराशि नहीं बल्कि सिर्फ सूखी रेत दिखाई देती है।

श्रोताओ, जब हम आराध्य के चरणों में सिर झुकाकर नमन करते हैं तब हम वास्तव में नमन अर्थात मन रहित हो जाते हैं। उस क्षण हमारा मन नहीं प्रभु का हो जाता है। प्रभु को समर्पित ऐसे मन में ना हर्ष होता है, ना शोक, ना स्वार्थ। प्रार्थना और साधना में यदि स्वार्थ शामिल हो गया तो भगवान हार जाते हैं और भोग विलास जीत जाता है। पुण्य कलशों की गिनती से नहीं बल्कि कषाय धोने से मिलता है। प्रभु के अभिषेक से पहले हमें अपने आत्मा को निर्मल करना होता है।

आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजना चाहते हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
3: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
4: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
2: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
5: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति

0: को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
2: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
3: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
5: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
6: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
4: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उरांव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
7: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
4: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुँच मिलेगी।
8: We have a huge pool of talent.
9: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
10: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट AF थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
11: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन, फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंप कर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की

0: खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक एक, रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर IIT निदेशक से तर्क वितर्क। केंद्र सरकार ने कहा, टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल। संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती, बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम निशित कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू अटेंड विवाटेक समिट इन पेरिस विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रों। पीएम मोदी टू आल्सो एड्रेस मेंबर्स ऑफ इंडियन कम्युनिटी इन फ्रेंच कैपिटल। President Draupadi Murmu to embark on a 5-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. Polling for 2 Rajya Sabha seats from Jharkhand and 1 from Mizoram to take place today. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement to come into force on the 15th of July this year. US President Donald Trump signs 14-point peace deal with Iran to end West Asia conflict. And in men's cricket, India beat Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the 3-match series to take unassailable 2-0 lead. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi arrived in Paris last night for the final leg of his visit to France. Upon his arrival in the French capital, Mr. Modi received a warm welcome from the members of the Indian community gathered at his hotel.
3: I feel India and France, it goes beyond geopolitics, education, culture, AI, innovation, it is everything.
4: So we are very thankful ki Modi ji aaye humse mile.
2: In Paris, Prime Minister Modi will attend the VivaTech 2026 alongside French President Emmanuel Macron. The VivaTech Summit is Europe's largest technology and startup event where Mr. Modi is expected to highlight India's growing innovation, ecosystem and technological advancements. Prime Minister Modi is also scheduled to address members of the Indian community during a special diaspora event. We hear more from our correspondent.
5: Today, the Prime Minister continues packed itinerary designed to supercharge bilateral trade and innovation partnerships. He will lead the charge by covering a specialized roundtable with top French and European business leaders, focusing on driving strategic investments into India's expanding industrial and tech corridors. The centerpiece of the visit takes place later today at VivaTech, Europe's premier technology and startup conference. Prime Minister Modi, alongside French President Emmanuel Macron, will lead a series of high-level engagements at the summit, culminating in a highly anticipated keynote address that highlights India's skyrocketing global digital footprint. The intensive diplomatic trip will wind down with a major community outreach initiative. The Prime Minister is slated to attend a massive diaspora reception featuring vibrant cultural performances that celebrate India's heritage. Mahesh Sopre, Akashwani News, Paris, France.

यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि नारायण मल्हार जोशी का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 5 जून। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, नोएडा उत्तर प्रदेश से प्रवीण कुमार झा और दमोह से किशन घीवाला। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

भारतीय स्वाधीनता इतिहास में ऐसे अनगिनत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को एक तपस्या की तरह जिया, जिन्होंने सेवा को साधना माना तथा राष्ट्र प्रेम को जीवन का सर्वोच्च धर्म। उन्होंने स्वतंत्रता को केवल स्वप्न नहीं माना, बल्कि गांवों जंगलों में घूम घूम कर उसे जन जन का विश्वास, संघर्ष और संकल्प बना दिया। अपने जीवन का प्रत्येक क्षण राष्ट्र को समर्पित करने वाले ऐसे ही महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे लक्ष्मण प्रसाद दुबे। वो एक दूरदर्शी शिक्षाविद और समाज

धारक भी थे। चूंकि उनका पूरा जीवन एक शिक्षक के रूप में बीता और अपने इस कर्तव्य को उन्होंने एक साधना माना, इसलिए वो आम जन में गुरु जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। लक्ष्मण प्रसाद दुबे का जन्म 9 जून सन 1909 को दुर्ग जिले में हुआ था। ये वो समय था जब देश में राष्ट्रवाद की लहरें हिलोरें ले रही थीं। सन 1905 में बंग भंग आंदोलन की आंच से पूरा देश सुलग रहा था। ऐसे वातावरण में लक्ष्मण प्रसाद दुबे का बचपन बीत रहा था। उनकी आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्तर पर ही आरंभ हुई और शिक्षा के साथ साथ वो समाज की विषमताओं को भी देख रहे थे। शोषण और पराधीनता के प्रभाव से वो अत्यंत आहत हो जाया करते थे। विद्यार्थी जीवन से ही उनके भीतर अध्ययन के साथ साथ सामाजिक सरोकारों के प्रति गहरी रुचि थी। यही कारण है कि वो केवल पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि समाज और राष्ट्र की परिस्थितियों को समझने का प्रयास करते रहे। फिर वो समय आया कि जब देश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन नई दिशा प्राप्त कर रहा था। स्वदेशी और सत्याग्रह के विचार लोगों को आकर्षित कर रहे थे। लक्ष्मण प्रसाद दुबे भी इस राष्ट्रीय चेतना से अछूते नहीं रहे। उनके मन में देश की स्वतंत्रता और समाज के उत्थान का भाव निरंतर प्रबल होता गया।

अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वो शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए। वो अध्यापन का कार्य तो करते ही थे, इसके साथ ही उन्होंने अनेक युवाओं को राष्ट्र सेवा हेतु प्रेरित किया। भिलाई में शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए उनका संपर्क जिले के वरिष्ठ सत्याग्रही नरसिंह प्रसाद अग्रवाल से हुआ। अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में उन्होंने मद्य निषेध आंदोलन चलाया, स्वदेशी का संकल्प लिया तथा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। विदेशी वस्तुओं के साथ साथ उन्होंने जॉर्ज पंचम का चित्र भी जलाया। 1930 का दशक भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का अत्यंत महत्वपूर्ण समय था, जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आरंभ किया। इसी समय लक्ष्मण प्रसाद दुबे सक्रिय राजनीति में शामिल हुए। वो अब राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। वो जनसंपर्क संगठन निर्माण के साथ ही लोगों के भीतर राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम करने लगे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत शांत, सरल और कर्मठ था। वो मानते थे कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं बल्कि समाज में जागृति और आत्मसम्मान का संचार भी है। यही कारण है कि वो शिक्षा पर अत्यधिक बल देते थे। वो विशेष रूप से नारी शिक्षा और नारी स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर थे। सन 1930 में जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा आरंभ की, तब इस आंदोलन का प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी व्यापक रूप से हुआ। सन 1930 में जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा आरंभ की, तब इस आंदोलन का प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी व्यापक रूप से हुआ। चूंकि यहाँ कोई समुद्र तट नहीं था, इसलिए सविनय अवज्ञा की भावना से जुड़ते हुए ब्रिटिश शासन के अन्य दमनकारी कानूनों को चुनौती दी गई। मध्य प्रांत में जंगल सत्याग्रह आंदोलन का प्रमुख रूप बन गया। वन क्षेत्रों में रहने वाले किसानों, जनजातीय समाज के लोगों और ग्रामीणों पर अंग्रेजों ने जंगलों में चराई, लकड़ी, घास और वन उपज लेने पर अनेक प्रतिबंध लगा रखे थे। इसलिए सत्याग्रहियों ने इन कानूनों का उल्लंघन करने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ का पोड़ी जंगल सत्याग्रह 1930 के जंगल सत्याग्रहों में एक महत्वपूर्ण कड़ी था। छत्तीसगढ़ में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश वन कानूनों के विरोध में किया गया था। धमतरी के पास स्थित बालोद के ग्राम पोड़ी में हुए जंगल सत्याग्रह का आरंभ जुलाई 1930 में हुआ, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने किया। लक्ष्मण प्रसाद दुबे चूंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में काम कर रहे थे, इसलिए जाहिर तौर पर वो इसमें सघन रूप से सक्रिय हुए। सत्याग्रहियों ने आरक्षित वन क्षेत्र में प्रवेश किया, घास और लकड़ी एकत्र की, पशुओं को प्रतिबंधित क्षेत्रों में चराया। इस तरह वन कानूनों का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। पोड़ी सत्याग्रह की पूरी रूपरेखा तथा दस्तावेजी काम अग्रवाल जी ने लक्ष्मण प्रसाद दुबे को सौंप दिया था। सत्याग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों को उन्होंने गुप्त रूप से संरक्षित रखा और उसका पूरा लेखा जोखा एक रजिस्टर में दर्ज कर उसे संकलित किया। सत्याग्रह की इन सभाओं में महिलाएं भी आती थीं, जो चरखा लेकर आंदोलन का प्रतिनिधित्व करती थीं।

लक्ष्मण प्रसाद दुबे ने राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो लोगों के बीच जाकर उन्हें देश की स्थिति से अवगत कराते, स्वाधीनता आंदोलन के उद्देश्य को समझाते और राष्ट्रहित में लोगों को संगठित होने का संदेश देते। उनका मानना था कि स्वतंत्रता का संघर्ष केवल नेताओं का नहीं बल्कि जन सामान्य का संघर्ष है। सन 1942 में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया, तब पूरा देश नई ऊर्जा से भर उठा और एक निर्णायक लड़ाई आरंभ हुई। इस समय भी लक्ष्मण प्रसाद दुबे छत्तीसगढ़ में सक्रिय थे। वो स्वाधीनता आंदोलन और जंगल सत्याग्रह में पूरी तरह से जुटे हुए थे। उनकी गतिविधियों पर अंग्रेजी शासन की नजर रहने लगी, लेकिन नरसिंह प्रसाद अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद भी वो रुके नहीं, वो आंदोलन को हवा देते रहे। परिणाम स्वरूप लक्ष्मण प्रसाद दुबे को गिरफ्तार करने का आदेश जारी हुआ। उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दिया और भूमिगत हो गए और वन्य क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन की लौ जलाते रहे। सन 1942 से 1947 तक वो दुर्ग, रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय रहे। 15 अगस्त सन 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के बाद भी वो चुप नहीं बैठे। वो लगातार समाज सेवा के मार्ग पर चलते रहे। उनके लिए स्वाधीनता का अर्थ केवल अंग्रेजी शासन से मुक्ति नहीं था, वो एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जहां शिक्षा, जागरूकता और मानवीय मूल्यों का विकास हो। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ही उन्होंने शिक्षा के महत्व को बहुत गहराई से समझ लिया था। वो अक्सर कहा करते थे कि किसी भी राष्ट्र का वास्तविक विकास शिक्षित और जागरूक नागरिकों के माध्यम से ही संभव है। यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद उन्होंने किसी भी पद का लालच नहीं किया। आज़ादी के बाद उनका पूरा ध्यान सामाजिक जागरण और शिक्षा पर ही केंद्रित रहा। लक्ष्मण प्रसाद दुबे ने ग्रामीण अंचलों में शिक्षा के प्रसार और विद्यालयों की स्थापना की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो मात्र एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी नहीं थे, बल्कि वो ग्रामीण शिक्षा जागरण के अग्रदूत भी थे। गुरुजी के रूप में उन्होंने गांव-गांव में शिक्षा की अलख जगाई, अनेक युवाओं को अध्यापन कार्य से जोड़ा और ग्रामीण अंचलों में विद्यालयीन शिक्षा के विस्तार की दिशा में मजबूत नींव रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत की आज़ादी, भारत का उत्थान, भारत की विजय ही उनके जीवन का अनंतिम लक्ष्य था। निस्वार्थ भाव से आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए उन्होंने 23 जुलाई सन 1993 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसे महान राष्ट्र सेवी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: न सनसनी, न सनसनी, न सनसनी, न उत्तेजना, न उत्तेजना, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हाँ, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: पेश है इस घंटे की खास खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और अन्य स्थानों पर भी विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कुनो अभ्यारण्य में भी वे जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वीवा टेक 2026 सम्मेलन में भाग लेंगे। वे भारत की तकनीकी प्रगति और नवाचार को दुनिया के सामने रखेंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस साल 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय निर्यात को बड़ा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती के अवसर पर भोपाल के महाराणा प्रताप नगर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समाज के प्रतिभाशाली डॉक्टर, युवाओं, खिलाड़ियों और समाजसेवियों को मंच से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ 2028 के भव्य आयोजन के लिए हजारों करोड़ के विकास कार्य तेजी से पूर्ण किए जा रहे हैं। इंदौर उज्जैन मेट्रोपोलिटन में धार, नागदा और रतलाम को भी शामिल किया गया है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रनों से हरा दिया। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में कल रात भारत ने नीदरलैंड को 95 रनों से हरा दिया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
3: हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लोक रसधार, इस कार्यक्रम के प्रारंभ में सुनिए गायत्री जैन के गाए बुंदेली लोकगीत।

लोक रसधार में भी आप सुन रहे थे कृष्णा नायडू के गाए बुंदेली लोकगीत। ये प्रसारण आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से किया जा रहा था। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला प्रसारण।

0: जिसका शीर्षक है चूड़ियां। इसके लेखक हैं सआदत हसन मंटो, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल।
1: प्रस्तुत है सआदत हसन मंटो का लिखा नाटक चूड़ियां। प्रस्तुतकर्ता हैं राकेश ढोंडियाल।

0: अपने अजीजों और दोस्तों को तोहफे दीजिए। इश्तहार की सुर्खी तो दिलचस्प है। अपने अजीजों और दोस्तों को तोहफे दीजिए, शादी ब्याह और सालगिरह और इसी किस्म के दूसरे मौके पर हसीन तोहफे ही देने चाहिए। आपका दिया हुआ आईना, आपका पेश किया हुआ फूलदान, आपका भेजा हुआ हार, जरा गौर फरमाइए इन हसीन तोहफों में कितनी शायरी है। हमारे शोरूम में तशरीफ लाइए और अपने दोस्तों, अपने अजीजों या अपने खासों को तोहफा देने के लिए अपने मन पसंद शेरों का चुनाव कीजिए।
1: लाइए अखबार मेरे हवाले कीजिए, मैं जंग की ताजा खबरें पढ़ना चाहता हूँ। मियाँ, इस हॉस्टल में टाइम पास करने के लिए एक ही चीज है, अखबार।
0: मियाँ, आपको जंग से इतनी दिलचस्पी क्यों है?
1: इसलिए कि मैं सुलह पसंद आदमी हूँ।
0: सुलह पसंद आदमी है, ये जंग भी सुलह पसंद आदमी ही कर रहे हैं। खैर हटाइए, मैं आपसे ये अर्ज करने वाला था कि मैं एक हसीन तोहफा खरीदना चाहता हूँ।
1: अच्छा, किसके लिए?
0: इसका भी फैसला नहीं हुआ।
1: बहुत खूब,
0: तोहफा ले आए तो बाद में फैसला कर लिया जाएगा।
1: ठीक है, लेकिन आपका कोई दोस्त, कोई अजीज, कोई?
0: यहाँ आपके सिवा कोई नहीं है।
1: तुम्हारा मतलब?
0: जी नहीं, तोहफा मैं आपको नहीं देना चाहता।
1: क्यों?
0: इसलिए कि आपको अपनी पैदाइश की तारीख ही नहीं मालूम है। फरमाइए, आप कब पैदा हुए थे?
1: ऐसी चीज को याद रखता है?
0: तब आपकी सालगिरह का सवाल ही नहीं पैदा होता।
1: हाँ, वो तो बिल्कुल नहीं होता है।
0: रही आपकी शादी, तो इसके बारे में मुझे यकीन है कि कभी हो ही नहीं सकती।
1: यानी इस मामले में आप मुझसे भी कहीं ज्यादा नाउम्मीद हो चुके हैं।
0: जी हाँ, इसलिए कि आप कभी ये फैसला नहीं कर सकेंगे कि आपको 50 बरस की औरत चाहिए जिसमें 16 साल की अल्लाह लड़की की नजाकत हो, या आपको 16 साल की लड़की चाहिए जिसमें 50 बरस की औरत की पुख्तगी मौजूद हो। लेकिन मेरा सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है।
1: जो मुझे भी अच्छी तरह मालूम है, लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि आप तोहफा खरीदने के बाद ही शादी के मसले में गौर करेंगे?
0: बिल्कुल ऐसा ही होगा।
1: तो जाहिर है कि आपका तोहफा भी कोई जनाना ही होगा।
0: बिल्कुल जाहिर है, मैंने अगर कोई मर्दाना तोहफा खरीदा तो इसका यह मतलब होगा कि मैं बहुत खुदगर्ज और कमीना हूँ।
1: क्या शक है? मेरा मतलब?
0: आपका मतलब ठीक है, इसलिए कि तोहफा मेरी तरफ से मेरी तरफ होगा, लेकिन हो सकता है कि मैं अपनी सालगिरह मना लूं, क्योंकि मुझे अपनी पैदाइश की तारीख अच्छी तरह याद है। मेरा मतलब है जबानी याद नहीं, नोटबुक में लिखी हुई है।
1: इस सूरत में भी आपका तोहफा आपकी तरफ से आप ही की तरफ होगा।
0: अरे हाँ, ये तो हो गई, तो इसका ये मतलब हुआ कि तोहफा खरीदने के बाद मुझे कोई औरत
1: या लड़की तलाश करनी पड़ेगी जिसके साथ आप शादी कर सकें।
0: हाँ, ऐसी औरत
1: या लड़की,
0: या लड़की मुझे हर हालत में तलाश करना पड़ेगी।
1: हर हालत में क्यों?
0: हर हालत में नहीं, सिर्फ उस हालत में जब मैंने तोहफा खरीद लिया होगा।
1: ये हालत बहुत ही काबिले रहम होगी।
0: कुछ भी हो, मैं तोहफा खरीदने का फैसला कर चुका हूँ, अब ये बदल नहीं सकता। आइए चलें।
1: चलिए
0: चलिए
1: चलिए।
0: अरे चलिए ना।
1: तो चलो ना।

0: आइए आइए, फरमाइए।
1: तोहफों की यही दुकान है ना, जिसका इश्तहार
0: जी हाँ, जिसका इश्तहार आज के अखबार में छपा है। बिल्कुल सही जगह तशरीफ लेकर आए जनाब आप। आइए आइए, हमारी दुकान में एक से एक नायाब तोहफे हैं। एक मिनट माफ कीजिएगा, वो मोहतरमा आ रही है, उन्हें अटेंड कर लूँ। आइए मोहतरमा आइए।
1: क्या खूबसूरत लड़की है।
2: तोहफों की यही दुकान है।
0: जी हाँ यही दुकान है, और सरकार से रजिस्टर्ड है ये दुकान।
2: रजिस्टर्ड?
0: जी हाँ। अरे अंदर तो तशरीफ ले आइए मेहमान। जनाब आपको कुछ तोहफा पसंद आया?
1: मुझे आपकी सब चीजें पसंद आई हैं। क्या खूबसूरत लड़की है
0: जी।
1: खासतौर पर वो चीज तो खूब है
0: जी। कौन सी?
1: वो लड़की नहीं, वो पुतली जो उस कोने की रौनक बढ़ा रही है।
0: जी शुक्रिया शुक्रिया। वैसे फरमाइए कौन सा तोहफा बांधूं आपके लिए। वैसे मेरा अपना ख्याल ये है कि...
1: फरमाइए ना, आपका अपना ख्याल क्या है
0: जी? किसके बारे में?
1: नहीं वो मतलब इन्हीं तोहफों के बारे में। एकदम वैसी ही है, मेरे ख्वाबों की मलिका जैसी।
0: जी जनाब आप तो खो ही गए। वैसे आप किस मौके के लिए तोहफा चाहते हैं?
1: हाँ ये बताना वाकई जरूरी है। सईद साहब
3: हाजिर हुआ। हमीद मियां
1: आप इन्हें बता दीजिए कि मुझे किस मौके के लिए तोहफा दे। ये कौन हंसा?
0: लड़कियां हंस रही हैं।
1: हाँ लड़कियां हैं, हंस रही हैं। देखिए किस्सा ये है कि मुझे अपनी पत्नी के लिए, नहीं मेरा मतलब है कि उस बीवी के लिए जो मेरी बीवी होनी चाहिए और बहुत जल्द होनी चाहिए, एक तोहफा खरीदना है। हम दोनों ने ये फैसला किया है, हालांकि मैं अपनी सालगिरह मना सकता था।
0: जी इसमें क्या शक है। वैसे मेरा अपना ख्याल ये है कि ये कौन हंसा?
3: लड़कियां हैं, हंस रही हैं।
1: हाँ लड़कियां हैं, इन्हें हंसना ही चाहिए।
0: जी जी वैसे मेरा अपना ख्याल ये है कि अब आपको जल्दी कोई तोहफा खरीद लेना चाहिए, क्योंकि
1: मैं अपना तोहफा चुन चुका हूँ।
0: अच्छा तो फिर फरमाइए।
1: ये दो चूड़ियां जो इस खूबसूरत बक्स में दो हसीन कलाइयों को दावत दे रही है।
0: वाह वाह क्या तोहफा चुना है आपने। वैसे मेरा अपना ख्याल ये है कि
2: इस ताश के बारे में आपका क्या ख्याल है?
1: बहुत खूबसूरत है, खासकर आपके हाथ में।
2: मैंने आपकी राय नहीं मांगी।
3: मैं कुछ अर्ज करूं?
2: जी नहीं, फरमाइए इसके बारे में आपकी क्या राय है।
0: आपने मुझसे राय पूछी तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बड़ा ही खूबसूरत है। सचमुच तोहफा तो चीज है जी, वो खुशनसीब होगा जिसे ये ताश आप तोहफे में देंगी।
1: जी जी यानी अगर वो फ्लैश खेलेगा ना तो खूब जीतेगा।
2: आपने कैसे जाना कि ये ताश किसी को तोहफा देने के लिए खरीद रही हूँ? आपको मालूम होना चाहिए कि ये ताश मैंने सिर्फ अपने लिए खरीदा है। पैक करा दीजिए इसे।
0: जी अभी लीजिए।
2: और ये लीजिए इसकी कीमत।
1: ये चूड़ियां भी पैक करा दीजिए।
0: जी अभी लीजिए।
1: और ये लीजिए कीमत।
0: जी जी शुक्रिया। अरे छोटू ये ताश और ये चूड़ियां पैक कर दे बेटा जल्दी से।
2: सईदा।
3: इरशाद।
2: आपका नाम सईदा है?
3: जी नहीं, सिर्फ सईद, आ की मात्रा के बगैर।
2: क्यों सईदा, मैंने ये ताश अपने लिए खरीदा है या किसी और के लिए?
4: अरे अपने लिए।
1: ये और भी अच्छा है।
2: क्यों?
1: इसलिए कि चूड़ियां भी मैंने अपने लिए खरीदी हैं।
2: आप खुद ही पहनिएगा।
1: जी हाँ इस समय तो खुद ही पहनूंगा, जब तक तो मेरा मतलब है बीवी नहीं मिल जाती। अब फिलहाल ताश तो आप अकेले ही खेलेंगी।
2: मैंने कोई फैसला नहीं किया, और मैं समझती हूँ कि हमें ये गुफ्तगू यहीं बंद कर देनी चाहिए।
0: ये लीजिए आपके तोहफे। वैसे मेरा अपना ख्याल ये है,
1: फिलहाल आप अपना निजी ख्याल अपने पास रखिए और लाइए मेरी चूड़ियां।
0: ये लीजिए।
2: लाइए मेरा ताश।
0: ये लीजिए, आइएगा फिर।

0: हाय, होठों पर अनसुने तराने, झील में जैसे तारे, बाकी चितवन में वो छल बल, जो खेले वो हारे, चेहरे पर लाली सी जैसे कलियां नदी किनारे, हुस्न के इस उमड़े धारे में ढूंढे कौन सहारे। हाय,
1: सत्ता अट्ठा और ये नहला, ये भी राउंड बन गई।
2: आप राउंड क्या बना रहे हैं? अरे ये तो उसी किस्म का ताश है।
1: जी नहीं, उसी किस्म का ताश नहीं बल्कि वही ताश है।
2: आपका मतलब?
1: बिल्कुल ठीक है।
2: यानी
1: अब मैं आपको बताता हूँ।
2: हाँ।
1: ये दहला,
2: हाँ।
1: ये बेगम,
2: हाँ।
1: और ये गुलाम, अब आप खुद ही सोच लीजिए क्या मामला है।
2: आप खुद ही बयान फरमाइए।
1: अरे होठों पर अनसुने तराने, झील से जैसे तारे, ये अनसुने तराने आप नहीं सुन सकते हैं।
2: अरे यार, ये पहेलियां क्यों बुझा रहे हो मुझसे? मैं पूछता हूँ, ये ताश आपके पास पहुंचे कैसे?
1: आज नोटबुक खोलकर देखी तो मालूम हुआ कि आज अपनी सालगिरह है।
2: हाँ?
1: सो मेरी सालगिरह का तोहफा मुझे मिल गया और वो दो चूड़ियां उधर चली गई।
2: उधर किधर?
1: उधर ही मेरी बीवी, मेरी होने वाली बीवी के पास।
2: मेरा अपना ख्याल है कि दुकानदार की गलती से पैकेट बदल गए, आपकी चूड़ियां उधर चली गई, उसका ताश इधर आ गया।
1: आपका निजी ख्याल दुकानदार के निजी ख्याल से बहुत ज्यादा दुरुस्त है।
2: अब आप क्या कीजिएगा?
1: कुछ भी नहीं, ताश खेला करूंगा।
2: और वो चूड़ियां पहना करेगी।
1: अरे क्या हर्ज है? कौन है?
3: तार वाला हुजूर
1: आया।
2: बादशाह, बेगम, गुलाम, बन गई राउंड।
1: अरे क्या हुआ?
2: अरे एक राउंड बन गई थी। हाँ, आप सुनाइए, खैरियत तो है?
1: कबला, वालिद साहब का तार है।
2: क्या फरमाते हैं?
1: फरमाते हैं फौरन चले आओ, एक जरूरी काम है।
2: यार ये जरूरी काम क्या हो सकता है?
1: डिप्टी साहब ही जाने, सवाल तो ये है कि अब जाना पड़ेगा। देखिए, अगर इत्तफाक से मेरी गैर हाजिरी में उनसे मुलाकात हो जाए और वो ताश के बारे में पूछताछ करें तो
2: मैं अपने अनजान होने का इजहार करूं, लेकिन अगर वो उसी किस्म का दूसरा सौदा करना चाहें
1: तो मेरी तरफ से आपको उसकी खुली इजाजत है।
2: तो चलिए अपना सामान समेटिए और निकलिए यहाँ से।
1: चलिए।

0: अब्बा मैं आपका तार मिलते ही चल पड़ा।
1: तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि वक्त थोड़ा ही रह गया है।
0: किसमें?
1: तुम्हारी शादी में।
0: मेरी शादी? यानी मेरी शादी हो रही है?
1: कतई तौर पर हो रही है।
0: किसके साथ?
1: लड़की के साथ। और किसके साथ बेवकूफ कहीं?
0: और जिसको मैं बिल्कुल नहीं जानता।
1: हाँ हाँ, जिसको तुम बिल्कुल नहीं जानते।
0: और शादी मेरी हो रही है।
1: तुम कहना क्या चाहते हो?
0: अरे मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे यह शादी मंजूर नहीं।
1: क्या कहा?
0: अब्बा जी, ये सरासर जुल्म है। मैं कैसे ऐसी शादी पर रजामंद हो सकता हूँ? अरे मैं लड़की को जानता नहीं, उसकी शक्ल तक से अनजान हूँ। जाने किस मिजाज की है, कैसे ख्यालात रखती है। मेरी गैर मौजूदगी में मुझसे सलाह किए बगैर आपने इतना बड़ा फैसला कर दिया।
1: मैं तुम्हारा बाप हूँ।
0: अरे ठीक है, लेकिन लेकिन अब्बा जी, आप खुदा के लिए इतना तो सोचें। पढ़ा लिखा आदमी हूँ, रोशन ख्याल हूँ, दिल में न जाने क्या क्या उमंगे हैं। और फिर अब मैं आपसे क्या कहूँ। मुझे मालूम होता कि आप मुझे यहाँ बुलाकर ये फैसला सुनाने वाले हैं तो मैं कभी ना आता, कहीं भाग जाता, खुदकुशी कर लेता।
1: मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ।
0: मैं भी शादी करने के लिए तैयार नहीं।
1: देखूंगा तुम कैसे नहीं करते शादी।
0: अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। शादी ना हुई, खेल हो गया। अरे क्या करूं क्या ना करूं, मेरी जान अजब मुसीबत में फंस गई है। देखूंगा तुम कैसे शादी नहीं करते, मैं तुम्हारा बाप हूं। चलिए फैसला हो गया, अब चाहे मेरी सारी जिंदगी तबाह हो जाए। ये ताश ही अब मेरी किस्मत का फैसला करेंगे। अगर तीन पत्तों ने राउंड ना बनाई तो मैं कभी शादी ना करूंगा, और अगर राउंड बन गया तो कहरे दरवेश बरजाने दरवेश कर लूंगा। जब शादी को खेल ही समझा गया है तो यूं ही सही, मैं भी इसका फैसला पत्तों से ही करूंगा। दुग्गी तिग्गी और चौका, लानत है इस पर, आखिरी सहारा भी धोखा दे गया।
2: तुम यहाँ बैठे ताश खेल रहे हो, माँ से नहीं मिलना था?
0: अम्मी जान मैं शादी नहीं करूंगा।
2: क्या बेहुदा बक रहे हो?
0: नहीं अम्मी जान, मुझे ऐसी शादी मंजूर नहीं। यानी मुझसे पूछे बगैर शादी का फैसला कर दिया गया है?
2: इसमें पूछने की बात ही क्या थी? माँ बाप अंधे तो नहीं होते हैं?
0: मुझे तो आप लोगों ने अंधा ही समझा।
2: हमने जो कुछ

0: किया, ठीक किया है।
1: मैं मर जाऊंगा लेकिन इस तरह शादी कभी नहीं करूंगा।
0: कुछ होश की दवा करो, जो मुंह में आता है बक देते हो।
1: अब तो चाहती है बस गला ही घोंट दे, आदमी उफ तक न करे।
0: बड़ा जुल्म हुआ है तुम पर।
1: अरे इससे बढ़कर और जुल्म क्या होगा, यानी मेरी सारी जिंदगी पर काजल का लेप किया जा रहा है, मुझे हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे गार में धकेला जा रहा है और अभी कुछ जुल्म नहीं हुआ। अमी जान सच कहता हूं, उसे धमकी न समझिएगा, जहर खा लूंगा मैं, गाड़ी के नीचे मरूंगा, पर ऐसी शादी कभी नहीं करूंगा मैं।
0: या अल्लाह, तुम पैदा ही न होते तो कितना अच्छा था, आज मुझे ये दिन देखना तो नसीब न होता। कितने चाव से तुम्हारा रिश्ता ठहराया था।
2: अम्मी जान, अम्मी जान आप इधर हैं?
3: हाय अल्लाह भाई जान, आप तशरीफ ले आए। हाँ मैं आपको उधर ढूंढ रही थी अम्मी जान।
2: क्या है?
3: ना आप ले आई हो अम्मी जान, लेकिन किन मुश्किलों से लाई हूँ तौबा। पर आप खामोश क्यों हैं? अरे मगर आप रो भी तो रही हैं भाई जान, क्या बात है?
2: सुनार बाहर बैठा है।
3: हाँ हाँ बैठा है,
2: उसे कह दे चला जाए, हमें कंगन नहीं बनवाने हैं।
3: ये आप क्या कह रही हैं अम्मी जान, नाप ले आई हूँ।
2: सुरैया तू इस वक्त जा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सुनार से कह दे कल आए।
3: इसका क्या मतलब है, नाप मौजूद है तो फिर कल क्यों आए, आज ही क्यों ना काम शुरू कर दे ताकि वक्त पर मिल जाए।
2: जो दिल में आए कर, मुझ नसीबो जली को तो न सता।
3: जाने आप किस बात पर भरी बैठी हैं, सताए आपको हामिद भाई जान और कोसा मुझे जाए। वो तो खैर अब नखरे करेंगे ही ना, बात बात पर बिगड़ेंगे, शादी जो हो रही है। खैर इस किस्से को छोड़िए। अरे हाँ मुझे उसके लिए तोहफा खरीदना है, अभी वहां गई थी ना तो मालूम हुआ कि कल उसकी सालगिरह है। लाइए लाइए कुछ रुपये दीजिए मुझे। हाँ
2: मैं कहती हूँ दफा हो जाए यहाँ से, मगर न चाट मेरा।
3: हामिद भाई जान आप क्यों मुंह में घुंघनिया डाले बैठे हैं, जैसे आपके मुंह में तो जबान ही नहीं। एक तो मैं आपके काम करती फिरूं और फिर उल्टा झिड़कियां भी खाऊं। हाँ
1: चल हट, मैं इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहता।
3: तो लीजिए ये नाप की चूड़ी आप संभालिए, बाहर सुनार बैठा है उसे जो कहना हो कह दीजिए। हाँ
1: है? चूड़ी, वही चूड़ी। अरे सुरैया, ए सुरैया बासुन ना बासुन, ये चूड़ी तूने कहाँ से ली?
3: कहीं से भी ली हो आपको इससे क्या।
1: अरे मैं समझ गया है, ये वाकई उसकी है ना, उसी की है।
3: नहीं बताती, जाओ।
1: अरे मेरी बहन, मेरी अच्छी बहन जो हुई है, बताओ बताओ ना ये किसकी है।
4: आहा, समझ गए हैं, लेकिन बार बार मुझे ही से पूछेंगे, मजा आता है ना। क्यों? आपकी होने वाली बीवी की है, जिसकी कलाई से जबरदस्ती उतार के लाई हूँ। हाँ
1: जबरदस्ती क्यों, क्या वो उतारने नहीं देती थी?
4: हाँ कहती थी नहीं मैं ये चूड़ी कभी नहीं दूंगी, किसी का तोहफा है, तुम कोई और ले जाओ।
1: अच्छा अच्छा फिर
3: पर मैं एक और बहाने से ले आई, कहा मुझे भी ऐसा जोड़ा मंगवाना है।
1: वो मारा, अरे आजा मेरी बहन मेरे गले लग जा।
3: भाईजान भाईजान क्या हो गया है आपको? हा?
1: अरे चुप चुप चुप, अब मैं जरूर शादी करूंगा। अम्मी जान कहाँ है?
3: ये क्या दीवानापन है भाईजान।
1: अरे अब मैं जरूर शादी करूंगा।
3: बहुत अच्छा।
1: अच्छा सुन, आज उसकी सालगिरह है ना?
3: हाँ है तो सही, अब पर ये आप ताश के पत्ते क्यों इकट्ठा कर रहे हैं?
1: ठहर, अभी बताता हूँ। सुरैया
3: जी,
1: तुम उसे कोई तोहफा देना चाहती हो ना?
3: हाँ।
1: तो ऐसा करो ये ताश ले जाओ। रुक, ठहर, इन्हें इस बक्स में डाल दूं।
3: भाईजान ताश?
1: हाँ तुम उसे ये पैकेट तोहफे के तौर पर दे दो, फिर देखो क्या होता है। अरे मेरे मुंह की तरफ क्या देखती हो, कह जो दिया। अरे इससे बेहतर और कोई तोहफा हो ही नहीं सकता। हाय
3: अल्लाह भाईजान।
1: होठों पर अनसुने तराने, झील में जैसे तारे, बाकी चितवन में वो छल बल, जो खेले वो हारे। चेहरे पर लाली सी जैसे कलियां नदी किनारे, हुस्न के इस उमड़े धारे में ढूंढे कौन सहारे।

0: चूड़ियां। अभी आप सादत हसन मंटो का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। भूमिका सहित कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। हमीद संजय मेहता, सईद बालेन सिंह कुशवाहा, हमीदा कंचन राजानी, दुकानदार अशोक बुलानी, हामिद के पिता शाकिर अली, हामिद की मां शिवांगी पवार और सुरैया दिव्या पवार। इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल।
1: अभी आप सुन रहे थे नाटक चूड़ियां। लेखक थे सादत हसन मंटो, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जग

0: राग तेलंग।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीतमय संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: कवि श्री राग तेलंग।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्व

0: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे सतना जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सतना जिले की चिट्ठी। आलेख लाल बहादुर तिवारी, वाचन स्वर शरद बाघेला। सतना जिले में भी इन दिनों प्री मानसून गतिविधियों का दौर है। तेज हवा के साथ कहीं कहीं बारिश होने से तापमान में कमी आई है। जिले में अतिवर्षा और बाढ़ आपदा स्थिति में आवश्यक सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष क्रमांक 07672223211 यानी 07672223211 है। कंट्रोल रूम के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कंट्रोल रूम के लिए प्रभारी अधिकारी राहत शाखा और डिप्टी कलेक्टर लक्ष्य राम जांगड़े को बनाया गया है, जिनका नंबर 9993754244 यानी 999-3754244 है। सतना जिले में खरीफ फसलों की बोनी की तैयारी को ध्यान में रखते हुए जिले में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उप संचालक किसान कल्याण कृषि ने बताया कि वर्तमान में सतना और मैहर जिलों में यूरिया, डीएपी, एनपीके और एसएसपी सहित विभिन्न उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने गत माह स्थानीय टाउन हॉल में आयोजित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम में सांसद गणेश सिंह उपस्थित रहे। विगत दिनों प्रदेश की पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और मैहर जिले की प्रभारी मंत्री राधा सिंह ने मैहर जिला मुख्यालय में कलेक्ट्रेट भवन के पास 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली नवीन जिला पंचायत के भवन निर्माण का भूमि पूजन किया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिला पंचायत भवन को समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निर्माण के साथ तैयार किया जाए। प्रदेश की नगरी विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के अरेगांव विधानसभा क्षेत्र में 11 से 15 जून तक सघन भ्रमण एवं जनसंवाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। रेगांव मंडल के प्रवास के दौरान राज्य मंत्री ने जनसंपर्क, जनसुनवाई और विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए क्षेत्रवासियों को 213 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगातें दी। कार्यक्रम के तहत उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी दिलाया। उन्होंने ग्रामीणों से अधिक वृक्षारोपण करने और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। जिले के जवाहर नगर स्थित दादा सुखेंद्र सिंह स्टेडियम में स्विमिंग पूल सहित शेष बचे निर्माण कार्यों का शुभारंभ सांसद गणेश सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि ये स्विमिंग पूल युवाओं में तैराकी के प्रति रुचि बढ़ाने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सतना और मैहर जिले में 12 से 18 जून तक नगरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में क्षेत्रीय नागरिकों की समस्याओं के निराकरण और विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। सतना जिले में वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन एवं संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी जल संसाधनों में 16 जून से 15 अगस्त तक क्लोज सीजन घोषित किया गया है। इस अवधि के दौरान सभी प्रकार की मछली पकड़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सतना जिले में मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को सभी स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। समय समय पर टीकाकरण कराए जा रहे हैं। सतना और मैहर जिले में किसानों के कल्याण के लिए कृषि और संबंधित विभाग के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए 10 दिवसीय कृषि रथ का शुभारंभ किया गया। ये कृषि रथ जिले के प्रत्येक विकास खंड के अंतर्गत निर्धारित सभी ग्राम पंचायतों में पहुंचकर किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहा है। सतना जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जल संरक्षण और जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए व्यापक स्तर पर गतिविधियां आयोजित की गई। इसी तारतम्य में शहर के प्रसिद्ध जगत देव तालाब में जिला पंचायत और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तालाब सफाई के लिए संकल्प लेकर सफाई कार्य शुरू किया। सतना जिले के मझगवां विकासखंड अंतर्गत नकेला में क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र मझगवां के संयुक्त तत्वावधान में किसानों को औषधि पौधों की

उन्नत खेती प्रसंस्करण और उपयोग विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई और सतना जिले में 28 से 30 जून तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा, जिसमें घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम बच्चों को दवा पिलाएगी। सतना जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

श्रोताओं, आज हम रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस मना रहे हैं। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वाकई रानी लक्ष्मीबाई 1857 की राज्य क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना थी। उन्होंने सिर्फ 29 वर्ष की उम्र में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुई।

वंदे मातरम गौरव गान की डेढ़ सदी। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 10:10 होना चाहते हैं। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला प्रसारण।

0: आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। अमेरिका और ईरान ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप एल में ब्रिटेन ने अपने आरंभिक मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हराया और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने लीड्स में नीदरलैंड्स को 95 रन से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
1: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
2: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
0: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
3: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
4: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। AI को सुरक्षित, तेजी से और कुशलता से लागू करने पर सत्र में श्री मोदी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मानव मस्तिष्क के हर पहलुओं को बदलने की क्षमता है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि इस प्रौद्योगिकी को जीवन मूल्यों, जिम्मेदार डिजाइन और सरदार शासन के आधार पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील

0: मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। इसमें ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने, डीप फेक और बच्चों के शोषण जैसी चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया गया। वहीं लिथियम, निकेल और दुर्लभ खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए G7 क्रिटिकल मिनरल्स अलायंस बनाने की घोषणा की गई है। नेताओं ने AI और क्वांटम तकनीक से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के लिए भी वैश्विक तैयारी बढ़ाने का आह्वान किया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिशकियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक रूप जारी कर दिया है।
1: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमेरिका के समर्थन से ईरान में कम से कम $300 अरब के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुँच मिलेगी।
2: We have a huge pool of talent.
3: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। और अब समाचार खेल जगत के।
3: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। लीड्स में ग्रुप ए के मैच में भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। नीदरलैंड्स की टीम 114 रन पर आउट हो गई। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त बना ली है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मैच में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हराया। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्र दराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हरा दिया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हरा दिया। विश्व दर्पण के लिए मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि संघर्ष, जलवायु संकट और धन की कमी के कारण आने वाले महीनों में दुनिया के 13 क्षेत्रों में भूखमरी की स्थिति और गंभीर हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार करीब 26 करोड़ 60 लाख लोग पहले ही गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। सूडान, दक्षिण सूडान, यमन और फलिस्तीन सबसे अधिक चिंता वाले क्षेत्रों में शामिल है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि खाद्य सहायता के लिए वित्तीय सहयोग में कमी आई है, जिससे हालात और चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को योग संगम कार्यक्रम के लिए देशभर में 1,70,000 से अधिक आयोजकों ने पंजीकरण कराया है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग संगम स्वास्थ्य के माध्यम से एकता का उत्सव है। इस पहल का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।

0: आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं सारंगा। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। पहला गाना सुनिए, सत्य पे सत्ता फिल्म से आवाज़ें आशा भोसले, दिलराज कौर और साथियों की हैं। सुनना चाह रहे हैं कल्पा सतना से चांद मोहम्मद, लाल मोहम्मद, सितारा खान, आशिकी मौसमी, अंजुम दिलशान पठान इनके परिवार के सदस्य, नर्मदा कॉलोनी मंडला से सिया शरण, ज्योतिषी, पुष्पा गोल्डी, रोली लकी, श्वेता परू, सादर इनके परिवार के सदस्य, यंग रेडियो लिसनर्स खोवंडी जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन, महेंद्र जैन, सत्यन, अरुण चौरसिया इनके परिवार के सदस्य।
1: कृषि विश्वविद्यालय से खेतों तक

फिल्म वार से सुनिए अरिजीत सिंह को सुनना चाह रहे हैं। कटनी से अवध संतोष सिंह ठाकुर, अवधेश कुमार, सुमेर पटेल, सुदामा, बारेलाल, शेख मुनीर इनके परिवार के सदस्य, ग्राम पहरुआ से राम कुमार लोधी, संजय पुरी इनके परिवार के सदस्य, अमरावती से नसीम बेगम, आयशा खान, शुएब शायमा, मोत्रा से आफिया खान, अकोला से रमेश कटनवर, वैशाली कटनकर,

0: हाथों में भेज।
1: अगला गाना सुनिए फिल्म नसीब से लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में शब्दकार हैं आनंद बख्शी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। सुनना चाह रहे हैं बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा अमित कुमार हैप्पी, गाजीपुर से प्रतीक राय प्रांजल, शेरकलापुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति, उमरखेड़ से अभिजीत गवाड़कर, सरिता एकांश, नागपुर से श्रीमती वैशाली सुमित परी इनके परिवार के सदस्य, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत प्रणीता इनके परिवार के सदस्य।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए अलका याग्निक सोनू निगम को। सुनना चाह रहे हैं बिहार से अकरम हुसैन, इनके परिवार के सदस्य, पाटापार से गन्नूलाल के आर सोनी, पंजाब से हरदेव मीका, मोटक्का माफी से जगन्नाथ पटेल, इनके परिवार के सदस्य, नांदेड़ से आरती, इनके परिवार के सदस्य।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सारंगा।
1: भवन में 19 जून को शाम 7 बजे फ्रांस के संगीत बैंड की प्रस्तुति होगी और प्रदेश के कई जिलों में प्री मानसून गतिविधियों के चलते आंधी और बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर संभाग के अनेक जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज, डीटीएच का ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT ऐप पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे।
3: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। हमारे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो सखी कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम किसी खास विषय पर बात करेंगे। वैसे वो विषय हम सभी के लिए बहुत ही खास है। पानी की कमी को हम कैसे रोक सकते हैं? आने वाली स्थिति, बारिश नहीं होने की स्थिति में या बारिश कम होने की स्थिति में पानी का बचाव हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है ये हम सभी जानते हैं। तो आइए आज हम इस विषय पर बात करेंगे और सुनेंगे सुमधुर गीत। तो कीजिए कॉल 2660902 पर और STD कोड आप जानते ही हैं 0755। हमें इंतज़ार है आपके फ़ोन कॉल्स का। हेलो, नमस्ते जी, कौन बोल रही हैं?
4: जानकी गुप्ता बोल रहे हैं, ग्राम भगवंत नगर से।
3: कौन बोल रहे हैं?
4: जानकी गुप्ता।
3: जानकी गुप्ता बोल रही हैं जी, कहाँ से?
4: ग्राम भगवंत नगर।
3: अच्छा, और जानकी जी, भगवंत नगर ये कहाँ पड़ता है?
4: ये है टीकमगढ़ जिला में है।
3: अच्छा अच्छा अच्छा,
4: तहसील कलेरा।
3: आपने शायद पहली बार कॉल किया है ना?
4: कॉल अभी 3 तारीख को की थी, कॉल 7 तारीख।
3: नहीं मतलब बहुत, मेरी तो शायद आपसे पहली बार बात हो रही है जानकी जी।
4: आप कौन बोल रही हैं?
3: मैं कविता रावत बोल रही हूँ।
4: हाँ, पहली बार हुई
3: है ना। चलिए, और सुनाइए क्या हाल है आपके?
4: सब बढ़िया है मैम, खाना बना गए।
3: हाँ,
4: साफ कर रहे थे, फोन लगा रहे थे, लग गया।
3: चलिए बहुत अच्छी बात है। और जानकी जी, आपके यहाँ जो पानी है उसकी कोई कमी तो नहीं है? भरपूर मात्रा में मिलता है आपको पानी?
4: एक तो ये नहर वीहर आती है सिंचाई के लिए।
3: अच्छा अच्छा।
4: हाँ, और जो बैसा कुगा उगा भी यहाँ पर।
3: मतलब अच्छी तो व्यवस्था है जल की,
4: घर में बोर है।
3: चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपसे एक बात पूछनी है कि आप है ना पानी की बर्बादी करने से बच्चों को या रोकती हैं या बहने देती हैं काफी हद तक पानी?
4: अरे मैम, हमारे यहाँ जो हमारा घर है ना,
3: हाँ,
4: हमारे तो बिल्कुल भी पानी बर्बाद नहीं करते हम लोग।
3: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि है ना कई जगह पर पानी की बहुत समस्या हो रही है और अभी हम देख रहे हैं कि जून आधा निकल चुका है लेकिन मानसून अभी पूरी तरह से हमारे यहाँ नहीं आया है।
4: हाँ मैम,
3: है ना।
4: तो हम जो हमारे यहाँ पानी है ना, और हमारे नल में थोड़ा कम पानी है, इसलिए हम और किसी के घर से पानी की वो करें व्यवस्था। तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल पानी बर्बाद हम करते ही नहीं, कभी नहीं करते। पहले नल से लिया तो नहीं करते, घर पानी आता तो नहीं करते।
3: बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि है ना यदि हमें भरपूर पानी मिल भी रहा है लेकिन हमें सब लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पानी की बर्बादी रोकना चाहिए और ये हम सभी कर
4: गांव में।
3: हाँ हाँ,
4: पानी की जाना, पानी की मात्रा है तो बहुत बार करते हम, तो कई बार रोकते हैं, ये इतना पानी ना फैला हो।
3: बिल्कुल सही बात है, जहाँ भी आप देखें कि कोई पानी की बर्बादी कर रहा है तो बेझिझक होकर उसको रोकिए। जी चलिए जानकी जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: थैंक यू, धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्ते।
1: नमस्ते दीदी। कौन आप बोल रहे हैं?
0: मैं कविता दीदी बोल रही हूँ।
1: अच्छा, तो
0: आप
1: आज
0: कौन बोल रहे
1: आपको
0: हैं?
1: मैं सपना से रमेश कोटवानी, सपना
0: कौन बोल रहे हैं?
1: से रमेश कोटवानी।
0: रमेश कोटवानी।
1: हाँ
0: कहाँ से जी? रमेश कोटवानी जी, बोलिए।
1: हाँ तो आज कौन से हेलो वो वाला चल रहा?
0: आज हमारा प्रोग्राम है बात आपकी, गीत हमारे।
1: जी, तो समाधि फिल्म का गाना सुनना है।
0: बिल्कुल, हम आपको गीत तो सुनवाएंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम में हमारी पसंद के गीत होते हैं, बातें आपकी होती हैं। और आज की जो बात हमने रखी है, उसका विषय है कि जल को कैसे संरक्षित करें, कैसे बचाव करें, हम पानी की बर्बादी को कैसे रोकें।
1: जल को तो देखिए दीदी, चाहे वो नाली हो चाहे नर्मदा हो, सबको रोक के चलना चाहिए। पानी तो हर चीज का काम आता है, चाहे गंदा भी हो, भी गमलों में काम आ जाएगा,
0: बिल्कुल सही बात है, लेकिन
1: हर चीज
0: यही
1: में काम
0: बातें
1: आएगा।
0: हम हर जन जन तक पहुंचानी है कि कैसे पानी की बर्बादी को रोकें और
1: नहीं नहीं
0: वेस्टेज पानी है उसका क्या उपयोग करें।
1: नहीं दीदी, ये तो जरूरी है। नहीं, ये तो आदमी को शुरू से करना चाहिए, नहीं तो ये तो आगे चल के भविष्य में बहुत दिक्कत होगी।
0: बिल्कुल सही बात है, और ये जो आने वाली दिक्कतों को, कि हमारे बच्चों को वो दिक्कतें ना हो, यही सोचकर यदि हम सभी थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो
1: नहीं,
0: पानी को
1: जरूर
0: बचा सकते हैं,
1: जरूरी है दीदी, ये तो बहुत
0: है ना?
1: जरूरी है।
0: क्योंकि हम
1: हाँ
0: देख रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसकी वजह से कितनी मानसून कितना रूठा हुआ है हम सभी से।
1: अभी देखिए, इतनी गर्मी इसलिए भी पड़ती है कि पूरे
0: गर्मी,
1: अमेरिका
0: हाँ,
1: में
0: हर साल गर्मी बढ़ती ही जा रही है टेम्परेचर।
1: सीमेंटिंग रोड बन रही,
0: बिल्कुल सही बात है,
1: वो पानी अब बहे तो जाए कहाँ से,
0: बिल्कुल
1: सीमेंट
0: बिल्कुल।
1: है इधर उधर चला जाता है।
0: बिल्कुल, तो जब भी बारिश
1: तो
0: भी हो तो उसके लिए भी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि कुछ गड्ढे हमारे जहाँ खेत वेत हैं वहाँ करके रखें, कि वो जमीन के अंदर पानी बैठ सके, है
1: औद्योगिक
0: ना?
1: क्षेत्र देखिए, इतने खुले हैं मशीनों पूरी 24 घंटा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए रमेश जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। कल 11 बजे अपना प्रोग्राम सुनिएगा, और अभी के लिए आपसे इतनी ही बातचीत।

0: हेलो
1: हेलो, आकाशवाणी।
0: जी, आकाशवाणी मध्य प्रदेश
1: आप अच्छे हैं? आप?
0: जी। हम बहुत अच्छे हैं, आप अपना शुभ नाम बताइए।
1: मेरा नाम सागर सिंह कुशवाहा है।
0: सागर सिंह कुशवाहा,
1: हाँ जी,
0: कहाँ से?
1: बसई नवाब धौलपुर,
0: जबलपुर,
1: बसई नवाब धौलपुर।
0: धौलपुर
1: हाँ जी,
0: जी। और कब कॉल किया था आपने? आज तो हमारी शायद आपसे पहली बार बात हो रही है।
1: हाँ जी,
0: इसके पहले कब कॉल किया आपने आकाशवाणी में?
1: फोन लगता है नहीं है तुम्हारा।
0: लेकिन आज लग गया ना।
1: आज लग गया, बहुत खुशी हुई है।
0: चलिए सागर जी, क्या करते हैं आप?
1: मैं राजमिस्त्री हूँ।
0: अच्छा। और अब हम जिस विषय पे आज बात कर रहे हैं, वो बात करने में आपको तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप तो सागर हैं और हम बात कर रहे हैं जल की।
1: आओ बोलो, बताइए।
0: तो बताइए, जल को कैसे बचाया जाए, पानी की बर्बादी कैसे रोकी जाए?
1: एक तो ऐसा है, पानी खर्च कम करो। उसकी जहां तक लगे एक बाल्टी फैला देना, आधी बाल्टी कोशिश करो पानी फैलाने की।
0: बिल्कुल सही बात है। मान लो अपने यहाँ खूब नल आता है, खूब पानी आता है, उसके बावजूद हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि बाकी लोगों के पास उतना नहीं पहुंच रहा है।
1: फालतू नल को मत चलाओ, पानी की जरूरत है उतना ही खर्च करो।
0: बिल्कुल सही बात है। यदि हम अपनी गाड़ियों को धोते हैं तो डायरेक्ट पाइप से ना धो के बाल्टी से मग्गे का इस्तेमाल करें तो पानी की कम बर्बादी होगी। और
1: बिल्कुल
0: जो
1: होगी साहब।
0: हमारे दाल चावल धोने का पानी है, यदि वो गमलों में डाला जाए तो उससे भी हमारी पानी की काफी बचत होगी। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, यदि हम सभी उसका ध्यान रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी को पानी की दिक्कत नहीं होगी।
1: जैसे पहले कुएं पे पानी निकालते,
0: जी
1: एक बाल्टी के काम निकाल लेते, अब हमारा तो उसको टैप चालू कर देंगे, चल रहा है काफी,
0: वही,
1: 8 घंटा।
0: बहुत जगह ऐसा देखा है कि पानी की बर्बादी काफी होती है। तो हम तो यही चाहते हैं अपने सभी श्रोताओं के माध्यम से सब लोगों तक

0: यही जागरूकता फैले कि पानी की बर्बादी को रोका जाए,
1: रोका जाए,
0: है ना। चलिए सागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। कुछ और कहना चाहते हैं?
1: गाना सुनना है।
0: गाना तो आप बिल्कुल सुनेंगे, हम अपनी पसंद का गाना सुनवाएंगे और कल 11 बजे से आप अपना कार्यक्रम सुन सकते हैं।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: दीदी, नमस्ते। हम
0: नमस्ते जी।
1: भारतचंद्र साहू जी, राजेंद्र नगर, गंज बासोदा, जिला विदिशा।
0: भारचंद साहू,
1: बिल्कुल दीदी, आपके नियमित श्रोता।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और
1: और
0: क्या
1: सारे
0: हाल है
1: कार्यक्रम
0: आपके?
1: तो हैं बहुत बढ़िया है दीदी, आप
0: हम भी
1: कैसी
0: बहुत अच्छे हैं।
1: हैं?
0: और बारिश
1: बिल्कुल।
0: वारिश तो अभी गायब सी है।
1: हाँ, गायब तो है फिलहाल में, कल तो पानी गिरा है गंज वासुदेव में। हाँ,
0: हाँ, यहाँ भोपाल में भी गिरा था, लेकिन बहुत कम। जो कहते हैं ना कि मानसून आ गया है, वो अभी ऐसे हालात दिख नहीं रहे।
1: नहीं, वो अभी 5% दिख रहा था माहौल,
0: वही।
1: ऐसा नहीं दिख रहा था।
0: तो आज हमारा विषय यही है कि जल की बर्बादी हम कैसे रोकें।

0: क्योंकि डे बाय डे जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं, वक्त बीतता जा रहा है, पानी
1: बिल्कुल
0: की
1: बिल्कुल
0: कमी होती जा रही
1: बिल्कुल दीदी, बहुत बहुत
0: है ना।
1: अच्छा फिर इसने है बिल्कुल।
0: तो बताइए ना,
1: हम
0: आप कैसे पानी की बर्बादी को रोकते हैं?
1: दीदी पानी तो ऐसा है, देखो बेफजूल का पानी बिल्कुल नहीं बहाना चाहिए। है क्या है, जैसे पानी आपका है पर्याप्त, आपके पास है
0: जी
1: तो या गड्ढा मड्ढा वगैरह बना लो या कुछ बना लो, उसको रोक के रखे पानी के लिए,
0: बिल्कुल सही
1: फिर
0: कह
1: अपने
0: रहे हैं।
1: लिए आगे के चल के अपने लिए काम में आए वो पानी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: बिल्कुल रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना पानी बगैर कुछ नहीं हो सकता।
0: और आज हमें पानी है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए ये दिक्कतें और बढ़ जाएंगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, पेड़ पौधे कट चुके
0: वही।
1: हैं तो उनकी वजह से पानी की मात्रा कम हो रही है। पानी गिर नहीं रहा सही तरीके से,
0: बिल्कुल।
1: बिल्कुल पानी बिल्कुल भी नहीं गिर रहा सही तरीके से, हम
0: तो
1: व्यर्थ कर
0: इसीलिए
1: चुके हैं
0: हम
1: ना।
0: सभी का कर्तव्य बन जाता है कि कहीं भी यदि पानी की बर्बादी होते देखें तो उसे
1: बिल्कुल
0: रोकें और स्वयं भी बहुत कम से कम मात्रा में पानी को खर्च करें।
1: बिल्कुल। और दीदी एक बात और कहना चाहते हैं हम रेडियो के
0: बताइए।
1: माध्यम से कि
0: हाँ जी।
1: आजकल जो स्कूल के खुलने वाले हैं बच्चों के, ज्यादातर
0: हाँ।
1: हमें देखने में एक आया है कि आजकल बच्चे टच मोबाइल में ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं।
0: वो तो सही बात है।
1: क्या है ये, गलत है ये, माता पिता का फर्ज है कि उन्हें देखें क्या देख रहे हैं, पढ़ाई
0: बिल्कुल
1: कर रहे
0: सही
1: हैं कि
0: बात
1: नहीं
0: है।
1: कर रहे हैं जी, बच्चे कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, उनकी लाजें देखते आए
0: बिल्कुल
1: भाई,
0: बिल्कुल
1: लापरवाही बिल्कुल ना बरतें बच्चों के साथ।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और आज हम जो अपने विषय से अब ना हटें, तो पानी की बर्बादी को रोकने का पूरा प्रयास आप सब भी करें।
1: और दीदी हम ये कह रहे हैं कि हमारे पत्र शामिल नहीं हो रहे आजकल
0: अभी
1: आकाशवाणी
0: आजकल
1: भोपाल में।
0: अभी होगा, आपका पत्र भी शामिल होगा। बहुत सारे लोग रहते हैं तो सबका नंबर आते आते थोड़ा टाइम लगता है।
1: हाँ
0: चलिए,
1: बहुत
0: कॉल करने
1: ज्यादा
0: के लिए धन्यवाद। हमारे अगले श्रोता लाइन में लगे हुए हैं। ठीक
1: बिल्कुल
0: है
1: दीदी
0: भारतचंद्र जी, थैंक
1: बिल्कुल।
0: थैंक यू,
1: मैं
0: थैंक यू
1: दीदी
0: वेरी मच।
1: नमस्ते नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: हेलो हेलो,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते। कौन बोल रहे हैं?
1: मैं धार जिले के से रवि बोल रहा हूँ,
0: रवि
1: रवि वर्मा।
0: रवि वर्मा, धार जिले से। और रवि जी, क्या करते हैं आप?
1: मैडम मैं किसान भी हूँ और हमारे पास में इंडस्ट्रियल एरिया है पिथमपुर,
0: हाँ,
1: वहाँ पर एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता हूँ जहाँ पर एक्सावेटर और जेसीबी बनती है।
0: अच्छा हाँ, मैं जानती हूँ पीथमपुर को तो।
1: जी।
0: चलिए, क्या उम्र क्या है आपकी?
1: मैडम मेरी उम्र 40 वर्ष है और मैं बहुत पुराना श्रोता हूँ, रेडियो का बहुत दीवाना हूँ
0: अरे वाह,
1: और मेरा
0: अपनी
1: पहली बार
0: दीवानगी
1: फोन लगा है
0: बिल्कुल
1: आपके
0: बरकरार
1: रेडियो पे
0: रखिए। जी।
1: और मैं कहना चाहता हूँ कि जो रेडियो सुनता है ना,
0: हाँ
1: उसकी कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है। जो सुनता है ना, तो
0: हाँ
1: उसकी कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा होती है मैडम,
0: बिल्कुल
1: ये
0: सही
1: मेरा
0: कह
1: मानना
0: रहे हैं,
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रेडियो से हमें तमाम तरह की ज्ञान प्राप्त होता है।
1: जी मैडम
0: आज
1: बिल्कुल।
0: हम जो बात कर रहे हैं, जैसे जल की बर्बादी को रोके, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमेशा, मतलब हर बार है ना, पानी मानसून हमसे थोड़ा थोड़ा रूठता जा रहा है, क्योंकि
1: जी
0: पेड़
1: मैडम।
0: कटते जा रहे हैं,
1: हाँ मैं
0: है
1: भोपाल
0: ना?
1: में आता हूँ ना, तो जब झील थोड़ी सी खाली देखता हूँ ना, तो मुझे भी लगता
0: सच
1: है कि
0: बात है। तो हमें हमारी आने वाली पीढ़ी को, उनके भविष्य के
1: हाँ
0: लिए, पानी को संरक्षित रखने के लिए सभी को थोड़े थोड़े
1: हम
0: प्रयास
1: हमारी
0: करने
1: आने
0: होंगे।
1: वाली पीढ़ी को बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं देना चाहते, उनको पर्यावरण अच्छा दे दें, उनको अच्छे पेड़ पौधे दे दें,
0: बिल्कुल,
1: पानी दे दें, तो यही अपने लिए बहुत
0: यही
1: है,
0: विरासत है उनके लिए,
1: यही विरासत है
0: है
1: उनकी
0: ना?
1: कि
0: तो बस इसी का
1: हम
0: प्रयास करना
1: आने में
0: है।
1: अपनी प्रकृति को अपने हाथ से खोते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे कैसे प्रयास आप करते हैं रवि जी, थोड़ा सा

0: प्रकाश डालिए इस बात पर।
1: मैडम मैं तो अपने मेरे दो बच्चे हैं, उनको हमेशा यही शिक्षा देता हूँ कि अपने को कम से कम गाड़ी चलाना है, कम से कम अपने को जो बिजली की भी बचत करना है घर में।
0: हाँ?
1: और जहाँ तक हो सके हम आसपास तो साइकिल का यूज करते हैं, हमारे घर में दो साइकिल भी है।
0: हाँ?
1: और एक इलेक्ट्रिक बाइक भी है। तो हम कोशिश हमारे स्तर से कर रहे हैं मैडम।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अपने स्तर पे हर व्यक्ति यदि कोशिश करता रहेगा तो हम सभी अपने मकसद में सफल होंगे, ठीक है ना रवि जी?
1: कहता हूँ कि मैं बताऊँ, भारत को स्वच्छ देखना चाहता हूँ मैडम।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: यहाँ पे भी मैं अगर ये कचरा और ये पॉलिथीन उड़ते हुए देखता हूँ ना, तो मुझे थोड़ा कुछ अंदर से फील होता है कि अगर मैं कुछ, मेरे पास समय नहीं है अभी कि मैं कुछ करूँ इसमें ज्यादा सोशल वर्क, पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अगर आगे होके अगर मैं फ्री हुआ, अगर मेरे पास पर्याप्त पैसे हो गए, बच्चे कमाने लग गए, तो मैं इसी काम में लगने वाला हूँ।
0: बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए रवि जी।
1: जी, मुझे भी बहुत खुशी हो रही।
0: मुझे भी बहुत खुशी हुई।
1: मेरे बालक का कल बर्थडे, उसका नाम लेना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल लीजिए।
1: और मेरी मिसेज का नाम है नीतू वर्मा
0: जी।
1: और बड़े वाले बालक जो कंप्यूटर साइंस में बेंगलोर में पढ़ रहा है, उसका नाम है राज वर्मा।
0: चलिए सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे आकाशवाणी परिवार।
1: मेरी माता जी का नाम मैडम शकुंतला वर्मा, और बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। धन्यवाद।
1: गीत है मैडम,
0: गीत हमारी पसंद का होगा आज के कार्यक्रम में,
1: दिल दीवाने का डोला दिल।
0: चलिए ठीक ठीक, ओके, धन्यवाद
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: हेलो,
2: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते,
2: मैं हीरू हीरू जी बोल रही, बाग से।
0: कहाँ से?
2: बाग, बाग जिला धार।
0: धार जिले से कौन बोल रही है?
2: मैं हीरू बोल रही, हीरू पड़ियार।
0: अच्छा हीरू,
2: हाँ।
0: कैसी हैं?
2: हम तो अच्छे, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, आप बताइए।
2: आपकी होती आप? बढ़िया होती?
0: बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हीरू जी, आज हम ये बात करेंगे कि है ना, पानी की बर्बादी को कैसे रोक सकते हैं हम। आप कैसे रोकती हैं
2: पानी की बर्बादी को? ये तो मेरे को इतना नहीं आता है मैम।
0: हाँ?
2: हम तो बर्तन मानते तो कई साबुन रसोड़े से मान लेते, पानी की बचत करते, ज्यादा पानी ढोलते नहीं है।
0: अच्छा,
2: पानी ढोलना पाप है, अपन को पानी पीने को मिल रहा है इतना ही बहुत है मैम।
0: बिल्कुल सही कह रही है। चलिए,
2: अपन पानी ढोल ढोल करेंगे फिर अपन क्या कैसे जिएंगे?
0: बिल्कुल सही बात है।
2: पानी से तो जी रहे, पानी से कैसे जी रहे?
0: जल ही जीवन है,
2: अभी तो जीवन है। वो मछली कैसे बाहर निकल जा, अंदर रहती समुद्र में तो जीती है, बाहर निकल जाती तो मर जाती है वो।
0: बिल्कुल सही बात है, वही हमारा जीवन है, बिन पानी सब सून, यानी पानी के बिना हम सबका जीवन संभव नहीं है।
2: तो चटनी मिले सीखी सही, उनको पानी होना जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है। तो बस ये बात हम सभी को समझना चाहिए कि यदि आज हमारे पास भरपूर पानी है तो कल के लिए हमें उसे बचा के रखना बेहद जरूरी है। वही अब हो सकता है कि अपन जो बात कर रहे हैं वो सबके कानों तक पहुंचे, और जो लोग बर्बादी करते होंगे वो शायद उन्हें थोड़ी बहुत समझ आ जाए। बस यही आकाशवाणी का उद्देश्य होता है कि लोगों में जागरूकता फैलाना, ठीक है जी।
2: बचत करेंगे जितना अच्छा रहेगा जीवेंगे तो अपन क्या।
0: बिल्कुल, चलिए हीरू जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दूसरे कॉलर्स भी लाइन में हैं तो हम उनसे बात करेंगे। आपसे आज के लिए इतनी ही बात, ठीक है?
2: धन्यवाद
0: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: खाते गांव से गोविंद जलोदिया बोल रहा था। हाँ,
0: खाते गांव से
1: गोविंद
0: गोविंद जी,
1: जलोदिया।
0: गोविंद जलोदिया, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है, ठंडी पड़ गई थोड़ी, जब पानी वानी गिर गया तो।
0: बहुत ज़्यादा तो नहीं गिर रहा, लेकिन हाँ, हल्का सा जैसे ही गिरता है तो थोड़े से
1: हाँ
0: मौसम में ठंडक आ जाती है, लेकिन
1: हाँ
0: थोड़ी देर बाद वापस उमस हो जाती है।
1: हाँ हो जाती है, पर वो

0: आज गोविंद जी हम जो बात कर रहे हैं ना आज, हेलो जी, कौन बोल रहे हैं?
1: खाते गांव से बोल रहा था गोविंद जलोदिया।
0: हाँ, आपसे बातचीत अधूरी रह गई थी, फोन डिस्कनेक्ट हो गया था।
1: हाँ
0: तो गोविंद जी, आज जो हमारा विषय है, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम का,
1: अच्छा,
0: कि पानी की बर्बादी को कैसे रोका जाए।
1: पानी का बर्बादी का कैसा रोका जाए?
0: बताइए ना इस विषय पर, आप
1: तो
0: कैसे
1: पानी
0: पानी
1: का क्या
0: का।
1: है कि पानी तो बहुत ही मतलब अनमोल है चीज है। पानी तो मतलब क्या है, जल स्तर कम होता ही जा रहा है। पानी कम ढोलो, बहुत सारे नल की टोटियां पे लगी, नगर पालिका छोड़ देती है ऐसी पटक पटक, और लोग पटक रहे चलते रहता है काम उसका। क्या अपने घर भी यही हाल है, नल चल रहा है तो चल रहा है, बंद हो रहा है तो बंद हो रहा है, कोई देख रेख करते नहीं है क्या?
0: तो ये
1: और
0: सबको
1: दूसरी
0: ध्यान
1: बात
0: देने
1: यह
0: की
1: है कि अगर
0: जरूरत
1: हम
0: है।
1: लोग फव्वारे से नहाया करो तो और कम पानी का उपयोग होता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन है ना,
1: हाँ,
0: पानी को, बर्बादी को तो रोकना है ना हम सभी को,
1: पानी
0: है ना।
1: को रोकना है, कम उपयोग करो जी। बहुत सारे लोग क्या है कि मतलब बहुत ज्यादा ही उपयोग करते हैं उसका। अक्सर हमारे यहाँ खातेगांव में तो क्या है कि रोड सुबह जब नहलाते हैं तो यहाँ से वहां तक रोड को नहलाते थे, जब लोगों को मिल नहीं रहा और ये फेंक रहे हैं।
0: अरे ये बहुत गलत बात है, और जहाँ
1: हाँ,
0: कहीं
1: बहुत
0: भी हम ऐसी पानी की बर्बादी होते देखें ना, तो हम उन्हें बिल्कुल बेतकल्लुफी से रोकें, ये हम सभी का फर्ज है।
1: क्योंकि वो हमारे यहाँ क्या है कि पानी की वो नहीं है, नर्मदा जी बांस में ही है तो
0: हाँ
1: उससे सप्लाई होता रहता है, तो पानी का कोई वो नहीं है।
0: हाँ, तो आप रोकिए, आप बोलिए उनको कि यदि आज हम पानी की बर्बादी करेंगे तो कल पानी की कमी होगी, है ना। ठीक है गोविंद जी, सबके छोटे छोटे प्रयास ना बहुत बड़े संकट से हमें मुक्ति दिला सकते हैं। ठीक है, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद,
0: नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: हेलो, हेलो, हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी,
1: हेलो।
0: नमस्ते। हाँ,
1: हाँ जी नमस्ते।
0: नमस्ते। कौन बोल रही है?
1: जी मैं कामिनी दसौंधी बोल रही हूँ, टिकरी से, बड़वानी जिले के टिकरी गांव से।
0: अच्छा, बड़वानी से। कामनी जी, कैसी हैं आप?
1: बड़वानी जिले के टिकरी गांव से। आओ।
0: अच्छा, कैसी हैं आप?
1: बढ़िया बढ़िया सर।
0: और क्या काम करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, हाउसवाइफ हैं। तो कामनी जी, आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि पानी की बर्बादी को आप कैसे रोकती हैं, या पानी खूब जब कपड़े धोती हैं, बर्तन मांजती हैं।
1: पानी की बर्बादी को रोकना चाहिए। पानी अमूल्य है, अपने लिए जल ही जीवन है।
0: ये हम सब समझते हैं, लेकिन है ना, रोकते नहीं है।
1: रोकते नहीं है, बस वो जैसे नल दे रहा है तो उसको बंद नहीं करेंगे। बर्तन बर्तन धोएंगे तो नल में धोएंगे, ऐसे नहीं करना। बर्तन में लेके पानी में बर्तन धो तो उससे पानी की बचत
0: बिल्कुल,
1: होगी।
0: बहुत छोटी छोटी बातें हैं। यदि आप टब में पानी लेके फिर बर्तनों को
1: या
0: धोंगी
1: पानी
0: तो
1: को
0: पानी की
1: धोएंगे
0: बर्बादी रुकेगी। कार अगर आप पाइप से ना धोएं, बाल्टी से धोएं, तो उससे पानी की बर्बादी रुकेगी,
1: उससे पानी की बर्बादी
0: है ना।
1: रुकेगी।
0: बहुत सारी बातें हैं। हमारी
1: बहुत सारी बातें
0: सब्जी, दाल, चावल, ये सब धोने का पानी यदि हम पेड़ों में डालेंगे तो
1: डालेंगे।
0: उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और पानी की
1: हाँ,
0: बर्बादी बचेगी।
1: पानी की बर्बादी भी नहीं होगी।
0: बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अगर हम इन सब का ध्यान रखें तो हम
1: जी दीदी,
0: आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं।
1: पहली बार मेरा कान लगा है। मैं बहुत दिन से प्रयास कर रही थी मगर नहीं लगा, लेकिन आज प्रयास सफल हो गया।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कामनी जी, ये प्रयास तब और सफल होगा यदि आप अपने आसपास के लोगों को भी पानी बर्बाद करने से रोक सकें,
1: जी
0: है ना। कहीं भी आप किसी को अगर ऐसा कुछ करते देखें तो उसे बिल्कुल जाकर रोकिए कि ये गलत है, उसे सही तरीका बताइए। या कहीं नल खुला हुआ देखें तो उसे तुरंत बंद कर दीजिए बिना किसी झिझक के, है ना।
1: पानी
0: तब
1: का भी, और मैं दीदी मैं तो लाइट का भी हमेशा घर में कहती रहती हूँ, वहां का लाइट जल रहा है, फालतू जल रहा है,
0: बिल्कुल
1: उसको
0: हर
1: बंद करो।
0: चीज की अगर बचत हम करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम अच्छा भविष्य दे सकेंगे, अच्छी विरासत दे

0: कर जाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, आज के कार्यक्रम में आपसे हमने जो बातचीत की वो आप कल प्रोग्राम में सुन सकेंगी 11 बजे से, और हमें बहुत खुशी हुई आपसे बातचीत करके। धन्यवाद कामनी जी।
1: थैंक यू
0: जी, नमस्ते
1: नमस्ते।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 5 दिवसीय प्रदेश प्रवास के पहले दिन आज बैतूल में ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल सोसाइटी बाय स्पिरिचुअल अवेकनिंग कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। इसके बाद वे ओंकारेश्वर के लिए रवाना होंगी। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को और प्रगाढ़ करने के प्रयासों के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में प्रमुख फ्रांसीसी व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। उन्होंने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी भर्ती प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जा रही है। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पुलिस में उपनिरीक्षक के 10 और आरक्षक के 50 पदों पर सीधी नियुक्ति का अवसर मिलेगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल उज्जैन के महिदपुर में विकास कार्यों के लोकार्पण समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डोंगला से गुजरने वाला नया 4-लेन महिदपुर शहर के विकास को गति देगा। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से इंदौर, उज्जैन, भोपाल और ग्वालियर संभाग के अनेक जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। और भारत अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे 1 दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का 3रा और अंतिम मुकाबला शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। वो गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर भेजते हैं। पहला गीत आप सुनेंगे हेमलता के स्वर में, फिल्म का नाम अखियों के झरोकों से। गीत लिखा रविंद्र जैन ने, संगीतकार रविंद्र जैन।

इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है कोटवा बलिया से। श्रोता हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। अगले श्रोता नेवादा गाजीपुर से हैं, प्रतीक, रोशनी और प्रांजल राय। अगले श्रोता अमरावती महाराष्ट्र से हैं, कमरुल्ला, नसीम, आयशा, हदिया, अजमा, सालिया, शोएब खान, मुश्तबा खान, राउफ, शाहिद। अगले श्रोता अकोला से हैं, रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म मुगले आजम से। इस गीत को सुरों से सजाया लता मंगेशकर और साथियों ने। गीतकार हैं शकील बदायूं, संगीतकार नौशाद। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है घंटा घर चौक खंडवा से। श्रोता हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। अगले श्रोता नांदेड़ से हैं गौतम नगर, प्रभाकर जौंधले और आरती जौंधले। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

अमर अकबर एंथनी इस फिल्म से अगला गीत आप सुनेंगे। इस गीत को सुरों से सजाया किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है कनेरा मोहल्ला पटियाला से। श्रोता है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। अगली श्रोता गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक और मीका बिरक। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: आशा भोसले और किशोर कुमार के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म सीता और गीता से। गीत लिखा आनंद बख्शी ने, संगीतकार आर डी बर्मन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। श्रोता हैं ताज अंसारी, गुलाम साबिर और मिराज जहां। अगले श्रोता धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं, रामचंद माखीजा, शंकरलाल माखीजा, राहुल कुमार, श्रीमती सविता, स्वाति और पूरा माखीजा परिवार। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।
1: अरे अरे।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक जंग लगी तलवार की 13वीं कड़ी।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना अपनी बेटी पार्वती के भाग जाने से दुखी भृगु साई नदी में कूदकर आत्महत्या करना चाहता है। यशवंत उसे बचाता है। भृगु हड़ताल को लेकर यूनियन नेताओं पर जम

कर बरसता है। रामू बामू कंपनी के पुराने टायर बेचकर बोतल लेकर आते हैं। खाने के लिए मछली का इंतजाम करने के लिए दोनों मिलकर कंपनी के भंडार से जिलेटिन चुराकर साई नदी में विस्फोट करते हैं। विस्फोट में लिचू का लड़का जगन्नाथ मारा जाता है। लेबर इंस्पेक्टर का सहायक राधेश्याम ठाकुर साहब से मिलता है और कमीशन लेकर कंपनी के मजदूरों की हड़ताल से निजात दिलाने का सौदा तय करता है। नारायणी को अस्पताल में सफाई करने का काम मिल जाता है। पुलिस विस्फोट करने के आरोप में रामू बामू को गिरफ्तार कर लेती है और वर्कसाइट पर विस्फोटक का भंडारण करने के कारण कंपनी पर 10,000 रुपए का जुर्माना करती है। मुंशीगंज के कसाईयों द्वारा फेंके हुए सड़े कच्चे मांस को खाकर दलित बस्ती के कई बच्चे मर जाते हैं और बहुत से बीमार होकर अस्पताल में भर्ती होते हैं। अब आगे

0: नारायणी, अरे सफाई हो गई क्या?
1: जी डॉक्टर साहब।
0: गुड। देखो नारायणी, अभी तुम्हें एक काम और करना है।
1: जी कहिए।
0: देखो वो सामने मरीजों के खून और मवाद से सनी पट्टियां पड़ी हैं, इन्हें साई नदी के किनारे गड्ढा खोदकर उसमें दबा देना, समझ गई?
1: जी।
0: ये रोज का काम होगा, समझ गई तुम?
1: जी जी समझ गई डॉक्टर साहब।
0: शाबाश।

0: अरे नारायणी, तुम ये गड्ढा क्यों खोद रही हो?
1: वो यशवंत बाबू, खून और मवाद भरी पट्टियां दबानी है इसमें।
0: अब कोई बात नहीं, ये तुम फावड़ा मुझे दे दो, गड्ढा मैं खोद देता।
1: नहीं नहीं, आप यूनियन के नेता हैं, साफ कपड़े पहने हुए हैं।
0: अरे तो क्या हुआ, अब लाओ मुझे दो, मैं खोदता हूँ। अरे लाओ दो। नारायणी, गड्ढा तो खोद गया, ला कपड़े मुझे दे दे।
1: ये लीजिए।
0: अच्छा, बर्खास्त हो जाने के बाद तुम क्या करोगी नारायणी? सच सच बता नारायणी, क्या उस दिन तू ठाकुर साहब के घर अपनी इच्छा से पाप का काम करने गई थी? बोल, जवाब दे।
1: हे भगवान, क्या जवाब दूं मैं इसे? क्या ये मेरी बात का विश्वास करेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसे मेरी बात का यकीन होगा। पर सुमति काकी के अलावा और कौन है इस दुनिया में जो दिल खोल कर दिखाने पर मेरी सच्चाई पर विश्वास करे? मैं जानती हूं, और ऐसा कोई भी नहीं है।
0: क्या सोचने लगी नारायणी?
1: हाँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं बाबू।
0: नारायणी, क्या मैं तेरी कोई सहायता कर सकता हूँ?
1: बर्खास्त होने पर हम लोग एक साथ चले जाएंगे। अगर अगर बाबू रास्ते में मेरा पति मर गया तो?
0: नारायणी, नहीं मरेगा तेरा पति, नहीं मरेगा। देखा नहीं लिचू लंगड़े का क्या हाल हुआ? बेटे के मरने के बाद से सारा दिन बेटे की चिता जलने वाली जगह पर ही पड़ा रहता है। भृगु की बेटी पेट की भूख मिटाने के लिए पैसेंजर ट्रेन में भाग गई। अरे कितने बच्चे जहरीला मांस खाकर मर गए। देख, अब धैर्य रखना रानी, मेरा दिल कहता है कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा।
1: यशवंत बाबू, मजदूरों की बातें छिप कर सुनी थी, सहायता की जरूरत मुझे नहीं आपको है। हा? आपको और दूसरे यूनियन नेताओं को अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए।
0: ये तुम क्या कह रही हो नारायणी?
1: वो मजदूर तुम लोगों को जिंदा गाड़ देंगे, खून खराबा होगा, वो तुम लोगों के चीथड़े बना डालेंगे। मैं पूछती हूँ, सच सच बताना, क्या तुम लोगों ने सबके साथ विश्वासघात नहीं किया? क्या भूख से मरने वालों की हत्या तुम लोगों ने नहीं की?
0: इतनी कोशिशों के बावजूद, इतने

0: लोगों की भलाई हम नहीं कर पा रहे हैं नारायणी, फिर भी कम से कम एक आदमी के लिए कुछ करने की शक्ति हम में जरूर है। बिल में छिपे हुए सांप की तरह शरीर के किस हिस्से में वो शक्ति है, ये ना तो तुझे मालूम है और ना ही मुझे।
1: मैं फिर कहती हूँ यशवंत बाबू, हमें तो हालात के सामने मजबूर होकर मरना ही है, लेकिन लेकिन तुम लोगों को जिंदा रहना है, हड़ताल कराने के लिए जिंदा रहना है, मजदूरों को भूखा मारने के लिए जिंदा रहना है।
0: नारायणी सुन, नारायणी देख, मैं जानता हूं कि तुमने जीवन में बहुत कष्ट सहा है, मैं सब जानता हूं सब, लेकिन क्या तुम इस तरह टूट जाओगी? इतने दिनों से कष्ट सहते हुए हम लोगों ने अपनी हड्डियों को सीमेंट के खंभे जैसा मजबूत नहीं किया है। अरे गांधी बाबा ने कहा था कि अगर उन्हें फिर से जन्म लेना पड़े तो वो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि वो दलितों के घर में जन्म लें। तू रो क्यों रही है नारायणी?
1: यशवंत बाबू मैं क्या करूं, सरकारी अस्पताल के बरामदे में भी मेरे पति को रहने नहीं देते।
0: क्या?
1: हाँ, यहाँ की बैरक से सब जाने लगेंगे तो मैं इन्हें साथ लेकर चलूंगी, ऊपर से एक दूध पीता बच्चा भी है, हम मर जाएंगे। मैं ये बात अच्छी तरह से समझ गई हूँ, अच्छी तरह से समझ गई हूँ यशवंत बाबू, हम मर जाएंगे।
0: देखो नारायणी, अब खुद पर भरोसा रखो, भरोसा खो देने वाले और मरे हुए इंसान में कोई फर्क नहीं होता, खुद पर भरोसा रखो।

0: नारायणी नारायणी नारायणी इधर आ।
1: क्या है लिच्चू?
0: नारायणी मेरे लिए दो रोटी लाकर दे सकती है? देख देख मेरा पेट कैसे सूख है, नदी का पानी भी कड़वा लगने लगा है। नारायणी
1: लिच्चू चल मेरे साथ चल, तू यहाँ ऐसे बैठा रहेगा तो क्या तेरा मरा लड़का वापस आ जाएगा? चल, देख यहाँ बैठा बैठा तो तू वैसे ही मर जाएगा।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नारायण, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। मुझे तेरी रोटी नहीं चाहिए नारायण।
1: सिर्फ नहीं करते
0: तू चल यहाँ से।
1: सुन तो
0: मुझे कहीं नहीं जाना है, चल चल।
1: मेरी बात तो सुन।
0: मेरे जगन्नाथ जगन्नाथ मुझे भी अपने पास बुला ले।
1: हौसला रख, नहीं लिच्चू नहीं, देख रोते नहीं।

0: नारायणी।
1: तुम तो वही हो ना जो यशवंत के साथ यूनियन में रहते हुए भी कंपनी के साहबों की गुलामी करते हो।
0: अब देखो, सब अपने अपने फायदे की सोचते हैं, तो मैं भी सोचता हूँ। क्या गलत करता हूँ?
1: तुम्हें मुझसे क्या चाहिए?
0: ओहो नारायणी, मैंने तुझसे पहले भी कहा था, ठाकुर साहब बीमार हैं और यहाँ पर हड़ताल चल रही है,
1: तो
0: तो ठीक तरह से उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, और तू साहब के लिए नई तो है नहीं, है ना? देख नारायणी, मुझे

0: साहब ने खुद तुझे ले जाने के लिए भेजा है।
1: पर मैं नहीं जाना चाहती।
0: अरे नारायणी, क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहती है?
1: क्या मतलब?
0: मतलब साफ है नारायणी, साहब ने धमकी दी है कि वो तुझे उस रात वाली घटना को लेकर झूठ मूठ बदनाम कर देंगे। हाँ। तो तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगी। हाँ। अब सोच ले क्या करना है तूने, चलना है या नहीं? आ जा, चल चल चल चल।

0: देख नारायणी, साहब थोड़ी देर में आएंगे, तब तक तू यहाँ आराम कर है? मैं अभी आता हूँ, ठीक है? अभी आता हूँ मैं।
1: मैं किस जंजाल में फंस गई हूँ। लगता है आज कल में कयामत आने वाली है। खून की नदियाँ, साई में तूफान, इस तूफान में सब ध्वस्त हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, कोई जिंदा नहीं बचेगा, कोई नहीं, ये ठाकुर साहब भी नहीं, ठाकुर साहब भी नहीं। कौन कौन हंस रहा है?
2: पहचाना नहीं नारायणी?
1: चौधरी साहब, आप?
2: यानी पहचान लिया? इतने साल बाद भी पहचान लिया? तुझसे इस तरह यहाँ मुलाकात होगी? नारायणी, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था।
1: मैंने भी नहीं सोचा था।
2: नारायणी, तू आज भी मुझसे प्यार करती है ना?
1: प्यार? और तुमसे? तुम्हारे लिए प्यार सिर्फ एक वासना है, शरीर की आग को ठंडा करने का जरिया भर है।
2: नारायणी, तुझे देखकर और तेरी दुर्दशा के बारे में सोचकर मुझे बहुत दुख हुआ। अले, कुछ ये पैसे रख ले, तेरे काम आएंगे। नारायणी
1: साहब, इन पैसों के बदले में आपको क्या चाहिए?
2: कुछ नहीं नारायणी, कुछ नहीं, बस तेरे रूप की गंगा में गोता लगाना चाहता हूँ नारायणी।
1: मैंने तो सुना था कि आपकी शादी हो गई थी।
2: हाँ, ठीक सुना था तूने नारायणी।
1: साहब, आपकी पत्नी गंगा को पूछती है?
2: गंगा को पूछती है मतलब?
1: हाँ, मेरा मतलब है गंगा की पूजा, पूजा पाठ तो करती है ना?
2: हाँ, करती है, पूजा पाठ जरूर करती है। मैंने तेरे बारे में उसे बताया था, उसकी बहुत इच्छा है कि अगर तू कभी मिले तो तेरी देखभाल करूं, तेरी कोई दिक्कत हो तो मैं तेरी मदद करूं नारायणी। हाँ हाँ, उसने कहा था मुझे।
1: यही वो आदमी है जो वर्षों पहले मेरी देह को छल्ली करके भाग गया था, मेरा सारा सुख छीन लिया था इसने, मुझे आसमान से नरक में धकेल कर कायरों की तरह मुझे पाकर चुपके से निकल भागा था, और आज फिर इसकी गंदी नियत मुझ पर लाट ठपका रही है। जी तो करता है कि मैं इसका गला दबा दूं, लेकिन अभी तो इस राक्षस के हाथों किसी तरह खुद को बचाना है, मगर कैसे? हाँ, वो सामने फल काटने वाला चाकू पड़ा है। हाँ, यही मेरी असमत की रक्षा कर सकता है।
2: अरे कहाँ गुमसुम हो गई तुम? है, बोलना।

0: चाहिए तुझे धन दौलत पैसा सब कुछ दूंगा। बोल ना नारायणी क्या चाहिए। देख देख नारायणी तेरा पति बीमार है, तेरा बच्चा छोटा है, मैं तेरी धन दौलत से सब सब
1: देखो देखो आगे मत बढ़ना।
0: अरे नहीं
1: नहीं वरना ये चाकू मैं आपके सीने में भोंक दूंगी।
0: चाकू
1: आपकी बेहतरी इसी में है कि तुरंत यहाँ से चले जाइए। सुना आपने, आगे मत बढ़ना, अच्छा नहीं होगा।

0: ये हड़ताली मजदूर का मजाक ही बना रखा है।
1: बोलो बोलो साथियों, हड़ताली मजदूर जब तब हमसे टकराते रहते हैं, भले ही कंपनी की शर्तों ने हमारे हाथ बांध रखे हो, लेकिन हम अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते।
2: हाँ हाँ, हमें आत्मसम्मान से जीना है। हड़ताली मजदूरों का मुकाबला करने के लिए हमें कमर कस लेनी चाहिए।
1: दलित बैरक की पार्वती जब से भागी है, हड़ताली मजदूर आते जाते हमें गाली देते हैं, तिरस्कार भरी नजरों से देखते हैं। हम ये अपमान नहीं सह सकते।
2: हमने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। अब की बार हड़ताली मजदूरों का जुलूस इस ओर आएगा तो हम उनका मुकाबला करेंगे।
1: हमें पीस वर्करों की यूनियन बना लेनी चाहिए, हड़ताल करने के लिए नहीं, बल्कि हड़तालियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए।
2: हमारी यूनियन का नाम होगा आजाद मजदूर यूनियन। अब की बार

0: अरे 2 दिन से नारायणी घर नहीं आई। अरे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उसे मैंने, पर वो कहीं नहीं मिली, कहीं नहीं मिली। अरे उसे उसे इस दूध मुहे बच्चे की भी सुध नहीं रही। भगवान, पता नहीं कहाँ होगी वो, अरे किस हाल में होगी वो। भगवान,
1: शिवू, शिवू भाई,
0: कौन है, कौन है दरवाजे पर?
1: शिवू, मैं हूँ, लिचू।
0: लिचू, लिचू, तू इतनी रात को यहाँ क्या करने आया है?
1: डर मत, मैं रोटी मांगने नहीं आया।
0: तो फिर तू क्यों आया यहाँ?
1: शिवू भाई, देखने आया हूँ कि नारायणी अभी तक आई या नहीं।
0: अरे नहीं आई वो, अभी तक नहीं आई। अरे सब जगह ढूंढ लिया उसे, पुलिस वालों से भी पूछा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। अरे लिचू भाई, समझ में नहीं आता क्या करूं, कहाँ जाऊं। अरे तू अब दरवाजे पर ही खड़ा रहेगा या अंदर आएगा?
1: शिवू, अंदर आ शिवू। बच्चे को गोद में उठा ले और मेरे साथ चल, खुरपी वगैरह कुछ भी साथ ले ले।
0: ये क्या कह रहा है तू? अरे क्या तुझे पता है नारायणी कहाँ है?
1: हाँ पता है, और तू मेरे साथ चल, खुरपी जरूर ले ले।
0: मगर मेरे पास खुरपी तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास कुल्हाड़ी है।
1: चलेगी चलेगी शिवू, जल्दी कर, समय कम है, सवेरा होने से पहले पहुंच जाना है हमें।
0: अरे देख शिवू, शिवू वो देख, पलंग पर बैठी नारायणी साहब के पैर दबा रही है, वो देख।
1: अरे हाँ,
0: अरे हाँ, चल चल जल्दी से अंदर चल, चल चल चल आजा।
1: है कौन, कौन है?
2: क्या तुम दोनों यहाँ?
3: हम दोनों, पति को घर पर अकेला छोड़कर तू यहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है। अभी तुझे मजा चखाता हूँ मैं।
2: मैं जानती थी कि तुम दोनों यहाँ जरूर आओगे, मेरा विवेक ही तुम्हें यहाँ तक खींच कर लाया है। लाओ लाओ कुल्हाड़ी मुझे दे दो।
1: नहीं, मैं कुल्हाड़ी नहीं दूंगा।
2: अरे
1: नहीं दूंगा,
2: दे दो या मुझे जबरदस्ती छीनना पड़ेगा।
1: नहीं दूंगा कुल्हाड़ी।
2: तू मुझे दे दो कुल्हाड़ी, दे दो तू मुझे, तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? लेकिन तू दो मुझे, दो दो कुल्हाड़ी मेरे हाथ में।
1: नारायणी, तू तू तू ये क्या कर रही है? नहीं नहीं नहीं नारायणी नहीं, देख देख देख देख, ऐसा मत कर नारायणी, ऐसा मत कर।
2: मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी, तू मुझे बदनाम करेगा, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा।
1: नहीं नहीं नहीं,
2: अब देखती हूँ कि तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। अरे भाग।

0: यशवंत, यही नाम है ना तेरा?
1: अब जी।
0: देख यशवंत, हड़ताल खत्म हो चुकी है, तुम्हारे सारे के सारे नेता गिरफ्तार हो चुके हैं।
1: हाँ?
0: 60 मजदूरों को वापस काम पर रख लिया गया है, दलित बैरक के सभी मजदूरों को बर्खास्त कर दिया गया है। राम, तुझे भी।
1: क्या?
0: ये ले लिफाफा, इसमें तेरा हिसाब है। जाकर शंभू के दल से मिल जा, अभी शंभू का दल बहुत ज्यादा दूर नहीं पहुंचा होगा। जा।
1: मैं

0: शंभू काका, रुक जाओ शंभू काका, मैं भी आ रहा हूँ।
1: शंभू काका
2: हाँ?
1: वो देखो यशवंत दौड़ा चला रहा है, थोड़ी देर रुक जाते हैं।
2: ठीक है।
0: अरे शंभू काका, शंभू काका, सब कुछ खत्म हो गया, सब खत्म हो गया काका। हड़ताल विफल हो गई, यूनियन के सारे बड़े नेता गिरफ्तार हो गए।
2: बड़ा भोला है रे यशवंत तू।
0: हाँ?
2: अरे यूनियन के नेताओं को तो शास्त्री जी की सिफारिश पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ताकि विद्रोही मजदूरों से उनकी जान की रक्षा की जा सके। जब शास्त्री जी का इशारा होगा यूनियन नेता छूट जाएंगे।
0: ये अब क्या कह रहे हो शंभू काका?
1: हाँ, और जानता है यशवंत, तुझे इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि तू हमारा सच्चा हमदर्द है, ईमानदार है। उन लोगों के लिए तेरा मजदूरों के हाथों मर जाना ही अच्छा है।
0: नहीं नहीं भृगु, ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं है।
2: यही सच है यशवंत, मगर तेरे जैसा सच्चा इंसान इस कड़वी सच्चाई को कैसे समझ सकता है। एक बात और, शास्त्री भी कंपनी के हाथों बिक चुका है।
0: क्या? हो, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब।
2: चल यशवंत, आ चले।
1: हाँ, चल।
0: लेकिन काका, लिचू कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा।
2: उसने साई नदी में कूद कर अपनी जान दे दी।
0: और बसुमती काकी?
1: माँ पुलिस की गोली का शिकार हो गई।
0: और नारायणी और उसका पति?
2: शिबू मर गया।
0: क्या?
2: नारायणी उसकी लाश को छोड़कर आने के लिए तैयार नहीं हुई। तू हमारे साथ चल, अगर मजदूरों को पता लग गया कि तू यहाँ है तो वो तुझे जिंदा गाड़ देंगे।
0: नहीं काका, मैं नहीं जाऊँगा।
2: क्या?
0: आज तक आपका ये डिब्बा खाली है ना?
2: ये हमेशा खाली रहेगा यशवंत, कभी नहीं भरेगा ये डिब्बा।
0: ये मेरे हिसाब के रुपए हैं काका, सारे रुपए मैं आपके इस डिब्बे में डाल रहा हूँ। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ फिर हड़ताल होगी, तब ये रुपए बहुत काम आएंगे। तब किसी को भूखा मत मरने देना काका, किसी को भूखा मत मरने देना।
2: एक बात सुन यशवंत।
0: हाँ बोलो काका।
2: उस दिन की घटना से तूने हमेशा नारायणी को चरित्रहीन समझा, लेकिन वो चरित्रहीन नहीं है।
0: ये तुम क्या कह रहे हो काका?
2: मैं ठीक कह रहा हूँ, तू भी हमारे साथ चलता तो कितना अच्छा होता।
1: हाँ चलना यशवंत।
0: नहीं काका नहीं, मुझे वापस जाना होगा, हर हाल में वापस जाना होगा।
2: क्या

0: नारायणी के पास?
1: उसके पास भी जाऊंगा, उसे और उसके बच्चे को मेरी जरूरत है। और काका, एक कारण और भी है मेरे वापस जाने का।
0: एक कारण और?
1: हाँ काका, एक कारण और।
2: यशवंत, अरे रुक जाओ, रुक जाओ, यशवंत रुको।
3: ओ, अरे इतनी रात को कौन आ गया भैया?
2: अरे ठहरो भैया, आ रहा हूं। दरवाजा तोड़ोगे क्या? आ रहा हूं।
3: यशवंत तुम?
1: हाँ मैं।
3: इस वक्त? चलो चलो जाओ यहां से, जाओ। अरे जाओ यहां से, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, समझे? जाओ यहां से।
1: शास्त्री जी, मैं वो तलवार हूं जिस पर आज तक जंग लगी हुई थी, लाचारी की जंग, लेकिन हकीकत ने आज इस जंग को उतार दिया है। अब इस तलवार में एक नई चमक पैदा हो गई है, विद्रोह की चमक शास्त्री जी, और आज ये तलवार तेरे अंत का कारण बनेगी शास्त्री।
4: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे जंग लगी तलवार की 13वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 5 दिवसीय प्रदेश प्रवास के पहले दिन आज बैतूल में ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल हुई। इसके बाद वे ओंकारेश्वर के लिए रवाना होंगी। भारत और फ्रांस औद्योगिक सहयोग को प्रगाढ़ करने के प्रयासों के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में प्रमुख फ्रांसीसी व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। उन्होंने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जा रही है। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पुलिस में उप निरीक्षक के 10 एवं आरक्षक के 50 पदों पर सीधी नियुक्ति का अवसर मिलेगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं। भोपाल के रविंद्र भवन में आज शाम को रानी दाई नाटक का मंचन किया जाएगा। विश्व संगीत दिवस के अवसर पर भोपाल के भारत भवन में 19 जून को शाम 7 बजे फ्रांस के संगीत बैंड की प्रस्तुति होगी। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से इंदौर, उज्जैन, भोपाल और ग्वालियर संभाग के अनेक जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। और भारत अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एक दिवसीय क्रिकेट मैच का तीसरा और अंतिम मुकाबला आज शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

दिन का एक बजा है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की है।

आकाशवाणी द्वारा प्रसारित महिला सभा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं आपकी सखी पूर्णिमा। आप सभी को हमारा नमस्कार। सखियों, अगले कुछ मिनट्स मैं आपके साथ रहूंगी, तो सोचा क्यों ना प्रकृति से जुड़े विषय पर चर्चा करूं। सखियों, जरा कल्पना कीजिए, एक खूबसूरत सी सुबह जब आंखें मलते हुए खिड़की खोले तो ठंड

हवा का स्पर्श मिले, पेड़ों पर बैठे पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई दे, दूर तक फैली हरियाली आंखों को सुकून दे और वातावरण में ताजगी घुली हो। सखियों, इस अनुभूति को शब्दों में कहना शायद मुश्किल होगा। कहते हैं कि यदि धरती मुस्कुराती है तो उसकी मुस्कान पेड़ों की हरियाली में दिखाई देती है। जब हवा पत्तों को छूकर गुजरती है तो लगता है जैसे प्रकृति कोई मधुर गीत गुनगुना रही है। लेकिन आज यही प्रकृति हमसे आग्रह कर रही है, मुझे थोड़ा और हरा भरा बना दीजिए। सखियों, प्रकृति में सुंदरता अपने आप नहीं आती, इसके पीछे होते हैं पेड़, पौधे और उन्हें सहेजने वाले लोग। सखियों, हमें धरती की गोद में हरे भरे पौधे लगाने होंगे, जिससे आने वाले कल को ठंडी छांव, शुद्ध हवा और अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित भविष्य बनकर तैयार कर सकें। सखियों, ये पेड़ वर्षा बुलाते हैं, बाढ़ को कम करते हैं, पक्षियों जीव जंतुओं को आश्रय देते हैं। इनकी छांव में ठंडी हवा का एहसास कीजिए, बस आपका मन यही गुनगुनाएगा।

0: सखियो, एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है, उसका पालन पोषण करके उसे बड़ा बनाती है, वैसे ही पौधा लगाकर उसे बड़ा करना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। घर के आंगन में लगा एक पौधा पूरे घर की शोभा नहीं बढ़ाता है, बल्कि पूरे परिवार के स्वास्थ्य और खुशहाली का साथी बन जाता है। सखियों, इसी विषय पर और अधिक जानकारी लेने के लिए अब सुनेंगे वार्ता। विषय है पर्यावरण संरक्षण। वार्ताकार हैं सुश्री रश्मि शर्मा। तो सुनते हैं ये वार्ता।
1: पर्यावरण संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। पर्यावरण शब्द परिधन आवरण से मिलकर बना है। पर्यावरण संरक्षण से तात्पर्य है कि हमारे चारों ओर के वातावरण को सुरक्षित रखना। प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए हम सभी को लगातार प्रयास करना होगा। पेड़ लगाना, पानी बचाना, पुनर्चक्रण करना और प्लास्टिक का उपयोग ना करना जैसे सरल कार्य बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा करके स्वयं को और सभी जीवित प्राणियों को सुरक्षित रख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। प्रदूषण को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों का आवश्यकतानुसार ही उपयोग करना चाहिए। वन्य जीवों की सुरक्षा करनी चाहिए। जल, ऊर्जा और प्लास्टिक के सही उपयोग से पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करके भूमि और जल संसाधनों की बचत की जा सकती है। नदियों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जंगलों का संरक्षण करना चाहिए। अगर हम जंगलों का संरक्षण करेंगे तो जीव जंतु सुरक्षित रह सकेंगे। सामूहिक सहयोग और जागरूकता के माध्यम से हम सभी मिलकर पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। आज जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, इसलिए पर्यावरण संरक्षण बहुत ज़रूरी हो गया है। हमारे पर्यावरण में हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी शामिल हैं और इन सभी की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पेड़ों को काटना और नदियों में कचरा फेंकना, अत्यधिक रसायनों का प्रयोग करने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। पर्यावरण के संरक्षण को हमें हमेशा बनाए रखना है। इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा। बिजली बचाकर, पानी का सही उपयोग करके, पेड़ लगाकर हम सभी पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। अगर हम हमारे चारों ओर देखें तो ईश्वर की बनाई पर्यावरण की इस अद्भुत सुंदरता को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। पर्यावरण में सुंदर फूल मन को मोह लेते हैं, परंतु आज मानव ने विकास की चाह में पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। पर्यावरण पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। प्रकृति अर्थात पर्यावरण के द्वारा ही मनुष्य को भोजन प्राप्त होता है। पर्यावरण वह प्राकृतिक परिवेश है जिसमें मानव अपना जीवन व्यतीत करता है। नदी, झरने, सागर, पर्वत, जलवायु के सूक्ष्म तत्व भी पर्यावरण को निर्मित करते हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी को प्रकाश और ऊर्जा देने वाले सूर्यदेव व संपूर्ण ब्रह्मांड के आकाशीय पिंड भी पर्यावरण में आते हैं। ये सभी तत्व हमारे जीवन के अस्तित्व और विकास के लिए अनिवार्य हैं। हमें पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना है। इसके लिए हमें पर्यावरण के लिए को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। मनुष्य ने अपने विकास के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण को विशेष महत्व दिया गया है। प्राचीन काल से ही विभिन्न वृक्ष जैसे पीपल, तुलसी, बरगद, नीम को महत्व दिया जाता रहा है। पेड़ पर्यावरण का

अनिवार्य हिस्सा हैं, इसलिए हमें अपने जन्मदिन पर और विशेष कार्यक्रमों पर वृक्षारोपण करना चाहिए। मुख्य वृक्षों में हम जामुन, आम, अमरूद, बरगद आदि वृक्षों को लगा सकते हैं। मैंने देखा है कि आम का पेड़ तो गमले में भी लग जाता है। हम सभी को ऑक्सीजन वृक्षों से ही मिलती है, अतः हमें सभी पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए वृक्षों को लगाना चाहिए। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और पर्यावरण को शुद्ध और स्वच्छ बनाए रखने का कार्य करते हैं। वृक्षारोपण करने से मृदा का अपरदन नहीं हो पाता, क्योंकि वृक्ष की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं और पेड़ों को उनके चिकित्सा गुणों के लिए भी जाना जाता है। जैसे नीम का प्रयोग फोड़े फुंसी आदि के उपचार के लिए किया जाता है, इसी प्रकार तुलसी का प्रयोग सर्दी खांसी से सुरक्षा के लिए किया जाता है। अर्जुन का पेड़ हृदय से संबंधित समस्याओं और ब्लड प्रेशर के उपचार में बहुत उपयोगी है। जो भूमि बंजर है उस पर भी हम सिंचाई की सहायता से वृक्षारोपण कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में वृक्षों का विशेष महत्व है। वृक्षों से हमें फल, सब्जियां, लकड़ियां, औषधियां आदि प्राप्त होती हैं। लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं। पेड़ों से बहुत सारी औषधियां तैयार की जाती हैं जो हमें रोगों के उपचार में मदद करती हैं। पेड़ न केवल शुद्ध हवा प्रदान करते हैं बल्कि पर्यावरण को सुंदर बनाते हैं। पेड़ों पर पक्षी घोंसला बनाकर रहते हैं। पेड़ तपती धूप में हमें छाया प्रदान करते हैं। पेड़ों की कमी होने से मनुष्य का जीवन संकट में आ जाएगा, इसलिए हम सभी का दायित्व है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वृक्षारोपण करें ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके और हम सभी एक खुशहाल जीवन जी सकें। मनुष्य ने पर्यावरण को कई प्रकारों से क्षति पहुंचाई है। वाहनों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण हुआ। लकड़ी, कंडे, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, इन्हें जलाने से वायु प्रदूषण हुआ और इन वाहनों में CNG गैस का प्रयोग करके हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। लकड़ी कंडे के स्थान पर हमें प्राकृतिक गैस का उपयोग करना चाहिए जिससे प्रदूषण कम हो। मनुष्य ने जल को भी प्रदूषित किया है। जल में पूजन सामग्री विसर्जित करने से, उद्योगों का कूड़ा कचरा जल में डालने से, जानवरों को जल में नहलाने से, इन सभी से जल प्रदूषित हो जाता है। हमें जानवरों को नदी जल में नहीं नहलाना चाहिए। हमें मुर्दों को नदी जल में नहीं डालना चाहिए। उद्योगों का कूड़ा कचरा जल में नहीं डालना चाहिए। पूजन सामग्री जल में विसर्जित ना करके गमले में विसर्जित कर सकते हैं जिससे जल प्रदूषित ना हो। रेडियोधर्मी प्रदूषण भी होता है, जो बड़े बड़े बमों का परीक्षण होता है, परमाणु बमों का परीक्षण होता है जिसमें वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण होता है। हमें परमाणु बमों का परीक्षण कहीं नगर से दूर एकांत जगह में करना चाहिए जिससे कि यह ध्वनि प्रदूषण ना हो। बड़े बड़े DJ और लाउड स्पीकर तेज ध्वनि में बजते हैं, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। इनकी आवाज़ मध्यम रखनी चाहिए जिससे ध्वनि प्रदूषण ना हो। उद्योगों में पुरानी मशीनें जो बहुत तेज आवाज़ करती हैं, इनसे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। गाड़ी में साइलेंसर ना होने से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। अतः हमें ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए एक नियंत्रित ध्वनि पर लाउड स्पीकर बजाने चाहिए। उद्योगों में नई आधुनिक मशीनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कम आवाज़ आए, और गाड़ियों में साइलेंसर का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हम जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को रोक सकें। इसी प्रकार मृदा अपरदन होता है। अत्यधिक वर्षा होने पर मिट्टी बह जाती है। पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी अपने पैरों से मिट्टी को ढोकर मृदा का अपरदन करते हैं। मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए कतारबद्ध लाइन से पेड़ लगाने चाहिए ताकि मृदा अपरदन को रोका जा सके, क्योंकि वृक्ष जो हैं वो मिट्टी को बांधे रहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमें जल, मृदा और वायु का संरक्षण करना होगा। यह सब कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। हम सभी को मिलकर
पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करने होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वृक्षारोपण

0: रोपण करना होगा ताकि हमारा जीवन सुरक्षित हो। जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं, लेकिन हम चाहें तो हम उपयोगी वृक्ष जैसे बरगद, पीपल, आम, जामुन, अमरूद लगा सकते हैं और उन्हें सिंचित कर सकते हैं ताकि पेड़ पौधे सूखे नहीं। हम सभी हर कार्यक्रम में वृक्षारोपण करें ताकि पर्यावरण असंतुलन को कम किया जा सके।
1: सखियो, अभी आप सुन रही थी वार्ता, विषय था पर्यावरण संरक्षण। वार्ताकार थी सुश्री रश्मि शर्मा। सखियो, वास्तव में पौधारोपण एक अभियान नहीं बल्कि जीवन से जुड़ा एक संस्कार है। जब कोई माँ अपने आंगन में पौधा लगाती है, जब कोई बेटी उसकी देखभाल करती है और जब पूरा परिवार उसे वृक्ष बनते हुए देखता है, तब केवल एक पेड़ नहीं बढ़ता बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी संवेदनशीलता भी बढ़ती है। कहते हैं ना कि पेड़ धरती की मुस्कान है, इनसे ही जीवन की पहचान है। सखियो, आज गांव की चौपाल हो, विद्यालय का मैदान हो, खेत की मेड़ हो या घर का छोटा सा आंगन, हर स्थान एक नए पौधे की प्रतीक्षा में है। बहनों, यदि हम अपने जीवन के खास अवसरों को पौधारोपण से जोड़ दें तो विशाल परिवर्तन संभव है। संतान के जन्म पर एक पौधा, जन्म दिवस पर एक पौधा, विवाह की वर्षगांठ पर एक पौधा, बच्चों की सफलता पर एक पौधा और अपने प्रियजनों की स्मृति में एक पौधा। सखियो, तनिक विचार कीजिए, यदि प्रत्येक परिवार वर्ष में केवल 5 पौधे लगाए और उनकी देखभाल करें तो हमारा पूरा क्षेत्र कुछ ही समय में हरा भरा हो जाएगा। पेड़ केवल ऑक्सीजन नहीं देते बल्कि हमें जीवन भी देते हैं। इन्हीं भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक और गीत।

सखियो, इस हरे भरे रास्ते से भरा हुआ गीत सुना और ये भी सच है सखियो, पेड़ अपनी जुबान से कुछ नहीं कहते हैं बल्कि अपनी छाया, अपने फल और अपनी सांसों से संपूर्ण प्राणियों पर परोपकार करते हैं। सखियो, इनके परोपकार को याद करते हुए अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। अंत में बस यही कहेंगे कि विकास की दौड़ में पर्यावरण और प्रकृति से दूर ना हो, जल जंगल और जमीन को बचाएं, पर्यावरण का संरक्षण करके प्रकृति में संतुलन बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि पेड़ लगेंगे तो धरती मुस्कुराएगी, धरती मुस्कुराएगी तो जीवन मुस्कुराएगा। सखियों, हम आशा ही नहीं करते हैं बल्कि हमें विश्वास है कि आप आज से ही पर्यावरण संरक्षण की सहभागी बनेंगी, और इसी विश्वास के साथ अनुमति दीजिए अपनी सखी पूर्णिमा को। नमस्कार।

0: मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है एक अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे समर्पण का प्रतिमा।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है लोक संगीत के कार्यक्रम में शोभना कश्यप के गाए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की है। आरंभ में ये दादरा

इस गारी गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे शोभना कश्यप के गाए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कोकिला दत्ता के गाए कुछ भजन।

कबीर की इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे कोकिला दत्ता की गाए कुछ भजन, प्रस्तुति

0: आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
4: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
5: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
6: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
4: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
5: आकाशवाणी है ना,
7: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
5: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
4: शाम सुहानी हो,
5: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
4: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
5: सफर में
4: आपके साथ
5: आकाशवाणी।

0: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: न सनसनी, न सनसनी, न सनसनी, न उत्तेजना, न उत्तेजना, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। चमत्कार फिल्म का यह गीत है, कुमार सानू ने गाया है, आनंद बख्शी के बोल हैं, धुन अनु मलिक की।

0: राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में सूरज का लिखा यह गीत था। लता मंगेशकर, उदित नारायण ने गाया था। फिल्म थी सातवां आसमां। इसके साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन इंदौर पहुंचने पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने बैतूल में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित जनजाति सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए देश का कोई भी व्यक्ति और समुदाय विकास की यात्रा में पीछे नहीं रहना चाहिए।
2: 2047 विकसित भारत बनाने के लिए हम सोचे हैं। पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, ये देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। राष्ट्र पुरुष का प्रत्येक अंग हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक अक्षत होना चाहिए, क्षति नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ये भारत में रहने वाले जनता, कोई भी समाज पीछे ना रह जाए।
1: राष्ट्रपति आज ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगी और शाम की आरती में भी शामिल होंगी। इस दौरे में 21 जून को जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 22 जून को कूनो नेशनल पार्क का दौरा भी शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करने के बाद कहा कि उनका प्रदेश आगमन प्रदेशवासियों के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति प्रदेश के सफल चीता प्रोजेक्ट का अवलोकन करेंगी और सिकल सेल एनीमिया से निपटने की राज्य सरकार की रणनीति से भी अवगत होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैतूल में ब्रह्मकुमारीज के कार्यक्रम में राष्ट्रपति की भागीदारी से आध्यात्मिक और स्वयंसेवी संस्थाओं

को भी प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार समझौते, रक्षा सहयोग और पश्चिम एशिया की स्थिति समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता होने के बहुत करीब है और यदि भारत पर कोई हमला हुआ तो अमेरिका उसके साथ खड़ा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में प्रमुख फ्रांसीसी व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि पिछले साल अगस्त से इस योजना के अंतर्गत 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। पहली सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा। इस कार्यक्रम में 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को सीधे उनके खाते में राशि हस्तांतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम श्वास तक शत्रु के समक्ष शीश नहीं झुकाया और मातृभूमि के सम्मान के लिए उनका बलिदान भारतीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। मुख्यमंत्री ने फ्लाइंग सिख और पद्मश्री प्राप्त मिल्खा सिंह को भी उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देशभर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान और विकसित भारत की पहचान है। इस अभियान के तहत जागरूकता रैलियां, युवा अभियान, नुक्कड़ नाटक, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं तथा सोशल मीडिया अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। अब रुक करते हैं खेलों की खबर का। भारतीय महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड में जारी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत की ओर से दीपिका ने 2 और दीपिका सोरेंग ने 1 गोल दागा। इस जीत के साथ भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल किया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। प्रदेश का खेल एवं युवा कल्याण विभाग प्रदेश की उभरती खेल प्रतिभाओं को तलाशने के लिए टैलेंट सर्च महाअभियान चला रहा है, जिसके तहत 8 से 18 वर्ष आयु वर्ग के युवा खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार किया जाएगा। इस अभियान में एथलेटिक्स, हॉकी, कुश्ती, बॉक्सिंग और तीरंदाजी समेत कुल 21 खेल विधाओं के ट्रायल होंगे। ऑनलाइन पंजीयन 17 जून से शुरू हो रहा है और चयन प्रक्रिया 27 जून से आरंभ होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया नगर पालिका परिषद में जनकल्याण शिविर का आयोजन किया गया। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पत्रकारिता के अध्येता एवं इतिहास लेखक विजय दत्त श्रीधर को डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। गुना कलेक्टर ने स्कूल चले हम अभियान के दूसरे चरण के तहत पुरानी छावनी के PM श्री शासकीय माध्यमिक विद्यालय के छात्रों से संवाद किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की

0: अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारे की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा, मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में

0: चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर दो दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंग रोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर हॉर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
1: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमरीका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून

0: उनको चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आपके पत्रों के माध्यम से भेजी पसंद हम पूरी करेंगे इस कार्यक्रम में। पहला पत्र शामिल कर रहे हैं हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी, मोहम्मद रफी इंदौर से हमें पत्र भेजते हैं। जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड के पास बंडा बेलई जिला सागर से लक्ष्मण रैकवार, श्रीमती विनीता रैकवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी अनरथ रैकवार, हल्ले लल्लू, ऋषि रैकवार, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय की। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमारी संचित वायाल मैताला से प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख करडा रिसोर्ड से सानवी देशमुख और सर्वद्र देशमुख, डोंगर गांव जिला रांदन गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनामिका, अनिष्का और तन्मय गजबिये।

इसी गीत को सुनना चाहा है शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजू लता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव ने। अमरपुर पंडरा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव ने। विश्वात्मा फिल्म का गीत साधना सरगम का गाया हुआ। आनंद बख्शी ने बोल लिखे हैं, विजू शाह ने संगीत बनाया।

कार्यक्रम में अगला अनुरोध शामिल कर रहे हैं कालीचरण यादव, दीपक यादव, चांदनी यादव और उर्मिला यादव की ग्राम संदलपुरा से। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार की। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर और डॉक्टर अमनदीप की। कालका से शुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल की। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, पोतरा मुजतबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय की। सुनना पसंद किया है सौदागर फिल्म का गीत, कविता कृष्णमूर्ति, मनहर उदास और सुखविंदर ने इसे गाया है। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत पेरेला।

अगली पसंद शामिल कर रहे हैं आशा रेडियो श्रोता संघ के मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राही, सरिता गवाणकर सिद्धांत, प्रिंस और एकांश गवाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश वैशाली, श्वेता सुमित ध्वनि गवाणकर परी की, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले की, सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा की, बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर की, तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई परू, मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर और तैमूर बारेकर की, मुकाम

पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से 68 तड़वी आरिश असलान यूनुस तड़वी की। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खान तड़वी, जरीना मुबारक, परवेज, बिटिया रोजमीन, तैमूर और तड़वी परिवार के सदस्य। एक लड़का एक लड़की फिल्म का गीत कुमार सानू और साधना सरगम ने गाया है, मजरू ने बोल लिखे हैं, आनंद मिलन की धुन है।

कार्यक्रम में अगली ख्वाहिश शामिल कर रहे हैं आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी और सौरभ शर्मा की। शाइना और निवान भी इनके साथ हैं। ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और सूरज कुमार ढाकसे की। रामचंद्र माखीजा काफिर, श्रीमती सविता, बेबी स्वाति माखीजा, छुटकी, शरद और पूरा माखीजा परिवार छत्तीसगढ़ बनियापारा धमतरी से ये पत्र हमें भेजता है। जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन, अरुण चौरसिया हमें ये पत्र भेजते हैं। और कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूराज श्रीमाली की। प्रमीलागंज आलोट जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल और प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा की। दिल है कि मानता नहीं फिल्म का गीत अनुराधा पोडवाल का गाया हुआ, समीर के बोल है, नदीम श्रवण ने धुन बनाई है।

0: अनुराधा पौडवाल के गए फिल्म दिल है कि मानता नहीं के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन इंदौर पहुंचने पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करने के बाद कहा कि राष्ट्रपति प्रदेश के सफल चीता प्रोजेक्ट का अवलोकन करेंगी और सिकल सेल एनीमिया से निपटने की राज्य सरकार की नीति से भी अवगत होंगी। राष्ट्रपति ने बैतूल में प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित जनजाति सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए देश का कोई भी समुदाय विकास की यात्रा में पीछे नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार समझौते, रक्षा सहयोग और पश्चिम एशिया की स्थिति समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। प्रदेश में मानसून 22 से 24 जून के बीच प्रवेश कर सकता है। प्रदेश में मानसून से पहले गर्मी का असर भी बढ़ता दिख रहा है और अगले 3 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं हॉकी में भारतीय महिला टीम ने न्यूजीलैंड में जारी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव पर सभा समापन के पूर्व बता दें आपको सांध्यकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। श्रोताओं, शाम 6:30 पर आप सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बैतूल प्रवास पर आयोजित कार्यक्रमों की रेडियो रिपोर्ट। युवाओं का कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 पर होगा, प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की होगी। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:00। रात्रि 8:00 समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष के अंतर्गत आज सुनिएगा विरासत। आपकी फरमाइश कार्यक्रम रात्रि 10:00 आप सुनेंगे और रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिएगा SL कंडारा का वायलिन पर बजाया राग यामिनी। आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी का प्रसारण शाम 7:21 पर होगा। इसके अंतर्गत डॉक्टर अनामिका पंडे से ग्रामीण महिलाओं के विकास में अग्रसर शासकीय योजनाएं विषय पर की गई भेंटवार्ता प्रसारित करेंगे। ये थे मुख्य आकर्षण संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, DTH के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 3:33 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारा ये प्रसारण समाप्त होता है। शाम 5:00 हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः हाजिर होंगे। इस बीच हमारा प्रसारण DTH पर जारी है।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। इस समय दोपहर के 3:02 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे शोभना कश्यप के गाए कुछ लोकगीत।

0: बातचीत होगी।
1: जी हाँ।
0: और आज एक खास दिन भी है, सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी जाएगी।
1: बिल्कुल, और आज मुझे कुछ कहना भी होगा, तो उसके अंतर्गत हम बात करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा क्या रहा आपका।
0: बिल्कुल, सबका कुछ ना कुछ अनुभव रहा होगा,
1: क्योंकि शॉपिंग सभी करते हैं ऑनलाइन।
0: हाँ।
1: तो आपने अगर शॉपिंग करी है तो उसमें आपने ऐसी क्या चीज ली कि आपको पछतावा कि अब हम कभी नहीं ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे।
0: तो इस बारे में जरूर अपने अनुभव
1: बिल्कुल
0: हमारे साथ ही हमसे साझा करेंगे, और कुछ उपयोगी टिप्स होंगे जो हमारी सखियां हमें बताएंगी कि खाना बनाते समय कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत उपयोगी हो सकती हैं। भाई खाना अगर जल्दी पकाना है तो क्या, तुरंत घर पे मेहमान आ गए तो फटाफट क्या बन सकता है, तो इस तरह के जो
1: और
0: भी
1: क्या चीज अगर कुछ कम ज्यादा हो गया है तो उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं उसके बारे में भी बात कर
0: इसके
1: सकते
0: अलावा
1: हैं।
0: लंबे समय तक अगर आपको सहेज कर रखना है किसी खाने पीने की चीज को, चाहे वो पकी हुई है या कच्ची है, उसके बारे में भी उपयोगी टिप्स हमें सखियां बता सकती हैं।
1: बिल्कुल
0: ये सारी बातें करेंगे विस्तार में, लेकिन पहले गाना सुन लें।
1: हाँ, बिल्कुल गीत सुनते हैं।

0: तो हम बात कर रहे हैं भाई
1: बसंती देवी बिष्ट की।
0: जो है उत्तराखंड की पहली जागर गायिका। और हम बता दें कि इनका जन्म हुआ 1953 में उत्तराखंड के चमोली जिले के लुबानी गांव में।
1: जी
0: और उनकी माँ बहुत अच्छा गाया करती थी, और अपनी माँ के साथ जो वो जो गीत सुनते सुनते बड़ी हुई, तो गांव में जो मेले लगते थे, जो त्योहार होते थे, तो माँ के साथ वो गाने भी गाया करती थी। और इसी दौरान गाते गाते उन्हें भी इन गीत से, उस संगीत से, जो लोक संगीत था वहाँ का, उससे प्यार होने लगा। और भाई जब आपके खून में कोई चीज़ रच बस जाती है ना, तो जब आप उस चीज़ को गाते हैं तो वो बड़ी दिल से आवाज़ निकलती है।
1: बिल्कुल। और वो पूरा जो माहौल था ना, वो बचपन से उनको मिल गया था,
0: जी
1: और गायन के इस प्रेम की वजह से उन्हें पारंपरिक जागर गायन शैली को नई पहचान दिलाने के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जागर गायन करने वाली पहली प्रमुख महिला कलाकार मानी जाती हैं। ये जागर कला उत्तराखंड की लोक परंपरा से जुड़ी हुई है, जिसमें देवी देवताओं और लोक देवताओं को याद किया जाता है।
0: और आरती, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो जागर शैली परंपरागत रूप से पुरुष पहले प्रस्तुत
1: हाँ
0: किया करते, जैसे आपने भी कहा ना कि वो पहली महिला गायिका है,
1: जी
0: तो महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में आ सके ना, इसीलिए इस परंपरा को तोड़ने वाली बसंती देवी ही रही। और तब से लेकर आज तक वो लोक गायन की जो परंपरागत शैली है, यानी कि जागर गायन की हम बात कर रहे हैं, इसको संरक्षित करने के प्रयास में लगी हुई हैं वो, और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए इसके भी प्रयास कर रही हैं। और उनके बारे में एक बात और भी गौर करने वाली है कि 5वीं कक्षा की जिला बोर्ड परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने वाली भी वो पहली छात्रा
1: मतलब
0: थी।
1: बहुत कुछ उन्होंने पहला काम किया
0: जी
1: है। तो और उन्होंने आगामी 3 वर्षों के लिए आगे की पढ़ाई के लिए प्रति माह 20 रुपए की छात्रवृत्ति से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन वो आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख सकी क्योंकि उच्च विद्यालय उनके घर और गांव से बहुत दूर था, और गांव के स्कूल में 5वीं कक्षा से आगे की जो पढ़ाई होती है वो नहीं होती थी, और यही मुख्य कारण था कि वो आगे की पढ़ाई अपनी जारी नहीं रख पाई थी।
0: और फिर क्योंकि पहले के ज़माने में भी बच्चियों के विवाह भी छोटी उम्र में हो जाया करते थे, गांव में खास तौर पे ऐसा हुआ करता था, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ कि जब वो सिर्फ 15 साल की उम्र थी तो उनका विवाह हो गया, और तोपखाने के एक सैनिक में जो थे उनके साथ उनका विवाह हुआ। और जीवन का अधिकांश समय एक गृहिणी के रूप में ही उन्होंने अपना बिताया। पेशेवर संगीत करियर की शुरुआत उन्होंने की जब वो 40 बरस की हो गई थी, और
1: वाह।
0: अपने पति के साथ जब वो जालंधर गई तो वहाँ उन्होंने एक प्राचीन कला केंद्र में फिर से एक बार संगीत सीखने की शुरुआत की, और उनकी बेटी ने उनके शिक्षक के तौर पर हारमोनियम बजाने की शुरुआत की।
1: हाँ, उनकी बेटी के शिक्षक से उन्होंने उन्हें सिखाया था बजाना,
0: जी
1: तो यहीं से उनके करियर की शुरुआत भी हुई। बाद में उन्होंने भजन, फिल्मी गीत, त्योहारों जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में गाना शुरू किया। इसके बाद उनके पति सेवानिवृत्त हो गए और परिवार देहरादून में जाकर बस गया। बाद में उन्होंने 1996 में नजीबाबाद स्थित अखिल भारतीय रेडियो स्टेशन में काम करना शुरू किया, यानी वो रेडियो से भी जुड़ी हुई थी, और वो
0: और जुड़ी हुई
1: आकाश
0: नहीं, वो
1: जी
0: ए श्रेणी की
1: ए श्रेणी की
0: कला,
1: कलाकार
0: जी।
1: थी। देखिए, मतलब जमीनी स्तर से उन्होंने अपना काम करना शुरू किया।
0: और साल 1996 की हम बात कर रहे हैं, तब वो पहली महिला प्रधान भी बन गई अपने क्षेत्र की। और कुछ समय के बाद जब उनको लगा कि बचपन में अपनी माँ और गांव के अन्य बुजुर्गों से जो संगीत की अनूठी शैली की जो प्रतिभा उन्हें मिली है, जिसे जागर गायन कहा जाता है, तो उन्होंने महसूस किया कि लोग इसको गा ही नहीं रहे, इसे भूल रहे हैं, और शास्त्रीय गीतों को खोज करने के लिए अपनी पुरानी धुनों में प्रस्तुत करने का दायित्व इन्होंने फिर संभाल लिया।
1: जी, और बसंती देवी बिष्ट की गायकी थोड़ी नाक से निकलने वाली आवाज और लय की धीमी गति के लिए जानी जाती है, जो उत्तराखंड की गढ़वाली गायन शैली का विशिष्ट रूप माना जाता है। बसंती देवी बिष्ट की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं गोरिया रे, धोखेबाज दगड़िया, न्योली, प्यारी सुमना, दाजीव बॉर्डरा और फोन करना, ओ स्याली साली रुकमा, पारा भीड़ा जादियो और देवारा जारे जू, और भी बहुत सारी हैं।
0: तो हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, अगर वो सुन रहे हैं और इस क्षेत्र के वो लोग हैं, तो वो ज़रूर जानते होंगे इन पंक्तियों को, जो तो आपने बताई भी कि
1: जी,
0: उनके प्रसिद्ध गीत कौन से हैं और ये किस तरह गाए जाते हैं, वो इस बारे में भी जानते होंगे।
1: ये रुकमा वाला तो मैंने सुना हुआ
0: जी
1: है।
0: और बसंती देवी की जो उपलब्धियां हैं, उनके जो पुरस्कार हैं, अगर इनकी बात करें तो बहुत सारे पुरस्कार इन्हें मिले। और मध्य प्रदेश द्वारा सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मातोश्री अहिल्या देवी सम्मान से उन्हें नवाजा गया। लोक संगीत के क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा, इसके लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो बात लोक धुनों की हो रही है, एक ऐसा गीत सुने जिसमें कुछ लोक धुन जैसी झलक मिलती हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सुनते हैं।

0: आरती, ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में हम बात कर रहे थे ना कि भाई
1: बिल्कुल
0: सबका कुछ ना कुछ अच्छे के साथ साथ बुरे अनुभव भी जुड़े होते
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: बहुत सारे लोगों के रहते हैं अनुभव, कभी अच्छे भी रहते हैं तो बुरे भी रहते हैं।
0: और आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर कोई बुरा अनुभव रहा और आपको पछतावा हुआ कि क्यों आपने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, इसे तो अच्छा होता कि थोड़ी से हम कष्ट लेते, बाजार जाते और वो
1: बिल्कुल
0: चीज़ खरीद लाते।
1: बिल्कुल, क्योंकि बाजार जाके उस चीज़ को छू के देखना, पकड़ के देखना, उसके बारे में पूरी जानकारी लेना उस दुकानदार से, वो एक अलग बात हो जाती है। और जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम उस ऐप पे देखते हैं कि उसके बारे में क्या जानकारी दे रखी है, और पूरी दे रखी है भी कि नहीं वो भी हमें नहीं पता होता है।
0: कई बार तो हम सिर्फ लुभावने ऑफर देखकर वहां से शॉपिंग के लिए चले जाते हैं।
1: बिल्कुल, या हम देखते हैं कि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है।
0: हाँ, और जब सामान हमारे पास आता है तो या तो उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है, या तो एक के साथ एक फ्री वाला जो ऑफर था ना,
1: हाँ
0: वो फ्री की चीज़ मिली नहीं और हमसे डबल पैसे में वो
1: बिल्कुल
0: चीज़ हमें सिंगल ही दे दी गई। तो
1: जी
0: इस
1: हाँ
0: तरह के अगर अनुभव रहे हैं तो इसके बारे में देखो ना कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत सुविधाजनक है, लेकिन कई बार लोग आकर्षक ऑफरों और छूट के चक्कर में ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत ही नहीं होती, और बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या फिर बेहतर और कीमत से बेहतर नहीं होता, कीमत कहीं ज़्यादा होती है, तो पछतावा होता ही है। इसीलिए ऑनलाइन ख़रीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी और उसके जो रिव्यू हैं वो कीमत की जानकारी अच्छी तरह कर लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है मेरे जो लिखते हैं कि बात कोई भी हो उसके दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू, उसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग के भी दो पहलू होते हैं। आप कोई भी चीज़ कहीं से भी कभी भी घर बैठे ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं, डिस्काउंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अन्य खरीदारों के रेफरेंस पढ़ सकते हैं, फिर भी इसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। आप उत्पाद को फिजिकली देख कर या छू नहीं सकते, फिटिंग का भी पता नहीं लगा सकते। उसके अलावा आजकल ऑनलाइन फ्रॉड की ज़्यादा संभावना रहती है, असली के बदले नकली उत्पाद भेज दिया जाता है, तब या कोई चीज पसंद नहीं आने पर वापस भेजने के बाद रिफंड प्राप्त करने में ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये प्रलोभनों से आप बच के रहिए।
0: बिल्कुल, हमें किसी ब्रांड नेम का, ब्रांड नेम को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इतने बड़े ब्रांड का सामान हमें कम कीमत में मिल रहा है, लेकिन उसी की जो दूसरी तीसरी कॉपी होती है, अब दरअसल ये वो वाली कॉपीज होती हैं जिन्हें सेकंड या थर्ड में हम निकाल कई लोग निकालते हैं। तो हमें सिर्फ फोटो देखकर अंदाजा नहीं हो पाता और इस तरह की जो प्रलोभन है
1: बिल्कुल
0: उनमें फंसकर हम गलत चीज
1: बिल्कुल।
0: खरीद
1: और
0: लेते
1: कई बार
0: हैं।
1: ऐसा होता है ना, जो हम कपड़े मंगाते हैं उसकी फिटिंग उसमें दे रखी होती है जो वो नहीं निकलती,
0: जी
1: या रंग एकदम अलग होते हैं उससे,
0: हाँ,
1: तो इस तरीके की चीजें भी काफी होती हैं। कपड़ा जो दिया होता है कि ये वाला कपड़ा है, वो कपड़ा भी नहीं होता, तो इस तरीके के फ्रॉड काफी
0: अब
1: होते
0: रंग
1: हैं।
0: की तो जब आपने बात कही तो मान लीजिए आपके और मेरे दोनों लोगों के हाथ में अलग अलग फोन है, एक ही रंग पर हम जब पिक्चर क्लिक करते हैं तो आपके फोटो से वो कलर अलग आ सकता है, मेरे मोबाइल से जब पिक्चर क्लिक की जाएगी तो उसका रंग थोड़ा अलग हो सकता है। तो इसी तरह की कुछ बातें होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, जो रंग हमें दिखते हैं वो असल रंग से थोड़े से भिन्न हो सकते हैं, और किसी भी तरह की चीज़ें हम खरीद सकते हैं ना। तो
1: बिल्कुल
0: हमारे एक श्रोता जिन्होंने कुछ पौधे खरीदे वो अपना अनुभव लिख रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में पौधों की खरीदारी मैं करती हूँ, कुछ पौधे अच्छे मिलते हैं, कुछ ख़राब भी निकल जाते हैं, और कुछ पौधे जिनकी मैं खरीदारी करती हूँ वो आम नर्सरी में नहीं मिलते हैं, तो ऑनलाइन ही हमें खरीदने पड़ते
1: और
0: हैं।
1: लेकिन ये चंचल जी, हमने भी मांगा है कई बार पौधे मंगा, जैसे पौधे जब हम मंगाते हैं तो ये देखना चाहिए हमें कि उसमें वो क्या दे रखा है, उसमें पूरी डिटेल क्या रखी कि वो वापस हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि फिर हम बाद में उसे वापस करने की कोशिश करते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि नहीं वापस नहीं हो सकता है ये।
0: इसी बात पर देखिए एक बड़ा अच्छा सा कमेंट है, नॉन रिटर्नेबल आइटम। आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि सामान पसंद ना आने पर पता चलता है कि इसे वापस या एक्सचेंज किया जा सकता है या नहीं, कई बार हिडन चार्जेस भी इसके लिए होते हैं और रिटर्न करने के लिए अलग से शॉपिंग चार्जेस भी देने पड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इस
1: और
0: तरह की जो भी पॉलिसीज हैं आप उनको पहले से
1: पहले
0: पढ़कर
1: से पढ़ना
0: ही,
1: चाहिए।
0: ताकि आपके साथ में कोई धोखेबाजी दगाबाजी ना हो।
1: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि कई बार लोग आकर्षक ऑफर्स के और छूट के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती, बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या बेहतर कीमत कहीं और मिल जाती है तो उन्हें पछतावा होता है। इसलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी, रिव्यू और कीमत उस अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए।
0: और इसी में आगे एक और कमेंट हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा उम्मीद

0: हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पछतावा ना हो ताकि।
1: कुछ बार तो ऐसा भी हो जाता है कि हम तोहफे में देखने देने के लिए कोई चीज़ ले
0: हाँ
1: रहे होते हैं, हमने मंगाई बिना खोलकर भी नहीं देखा, और वो जिस तरह की पैकिंग में आई थी उसी पर एक और गिफ्ट रैप हमने लगाया और हमने सामने वाले को तोहफे के रूप में वो दे दिया। जब सामने वाले ने खोला तब हमें पता लगता है कि उनके पास कोई अगर कम उच्च स्तरीय वाली चीज़ गई है, तो वो जब वो शिकायत करते हैं या नहीं भी करते, सिर्फ कहकर उस बात को बता देते हैं, तो बड़ा अफसोस मन में आता है।
0: बिल्कुल। और अच्छा भी नहीं लगता है ना कि किसी को एक ऐसे उपहार दे रहे हैं हम और वो भी अच्छा ना निकले,
1: जी
0: तो ज़रूरी है हम बेहतर होगा कि जितना ज़्यादा हम जा सकें बाहर वहाँ से खरीदें
1: बिल्कुल,
0: जो
1: देने वाले की नीयत
0: बिल्कुल।
1: भले अच्छी थी, उसने उसके लिए कीमत भी अच्छी चुकाई, लेकिन कंपनी ने अगर कोई धोखा किया है तो आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि वो निम्न स्तरीय सामान था। तो
0: बिल्कुल
1: इस तरह की धोखेबाजी ना हो। और भी कमेंट्स हम पढ़ेंगे, पहले एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं।

आरती, ये सही सही है कि ऑनलाइन शॉपिंग ने ख़रीदारी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन कई बार एक क्लिक के बाद में जो हम फैसला हमने लिया था और क्लिक कर दिया, वो पछतावे का कारण बन सकता है। और सबसे बड़ा पछतावा अक्सर वो चीज़ होती है जो तस्वीर या विज्ञापनों में बड़ी शानदार दिख रही होती है।

0: लेकिन उम्मीदों पर हमें हमें खरीद नहीं उतरती जब वो हमारे हाथ में होती है।
1: बिल्कुल.
0: सेल देखकर खरीद ली जाती हैं चीज़ें, कपड़ों के रंग और गुणवत्ता जो है वो तस्वीरों से बहुत अलग होती है।
1: और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग से बड़ा में सबसे बड़ा पछतावा, भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. ये तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के निर्णय से पहले ही आपको सोचना चाहिए था. खैर कोई बात नहीं है, अब एक बार खरीद ही लिया तो मिले रद्दी के सामान को देख कर घबराइए मत, अपितु तो उसे सीख लेकर अग्रिम खरीदारी बाजार बैठ जाकर ठोक बजा कर ही करिए. जैसे कि कोई सामान खरीदते हैं तो उसे अच्छे से देखभाल करके ही खरीदें, मगर लगता है कि इसके लिए महानगरों में समय का भी अभाव है. और ऐसे में सब्जियों की ऑनलाइन शॉपिंग रात्रि 8 बजे की बात करें तो सस्ती और अच्छी सब्जी प्राय मिल जाती है. ऐसे ही विवेकपूर्ण वस्तुओं की खरीदारी ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन पके हुए भोजन की ऑनलाइन शॉपिंग मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए.
0: बहुत सही सलाह दी है उन्होंने। और ये बात भी सही है कि जो महानगरों की ज़िंदगी है, कई बार लोगों के पास काम के चलते समय नहीं होता, या त्योहारों का समय जब होता है ना, जब हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी होती है, ख़ासतौर पर बाज़ारों में इतनी भीड़ होती है, तो उस भीड़ में जाने से बचने के लिए भी कई बार लोग ये
1: हाँ
0: काम करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें अब ऐसी हो गई हैं जो घर पर 5 से 10 मिनट में जब हमें उपलब्ध हो जाती है,
1: हाँ
0: घर पर कोई है नहीं सामान लाने के लिए, तब तो उनमें भी धोखाधड़ी हो जाती है, चाहे वो घर के दूध, दालें, सब्जियां, ऐसी चीज़ें ही क्यों ना हो, तो
1: बिल्कुल.
0: सोच समझ कर ही
1: और
0: आपको करना
1: बहुत सारे
0: है।
1: लोग बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी चीज़ें जो इतनी ज़रूरी नहीं भी हैं आज ऑनलाइन मंगानी, वो भी ऑनलाइन ही मंगाने लगते हैं कि चलो हम क्या करेंगे,
0: जी
1: बाज़ार जाके यहीं से मंगा लेते हैं. तो फिर फ्रॉड होने की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें पकी हुई जैसे इन्होंने बताया वो चीज़ें हमें नहीं मंगानी चाहिए ऑनलाइन. और जैसे कि और भी सामान है जो हम बाहर जाके ला सकते हैं आसपास से, तो वो बाहर जाकर ही खरीदारी करनी चाहिए.
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा होता है गलत साइज़ के कपड़े, ख़राब क्वालिटी, उत्पादों की तस्वीरों से बिल्कुल अलग दिखाई देना। इनसे बचने के लिए हमेशा ग्राहक समीक्षाएं यानी रिव्यूज़ जो होते हैं और जो रेटिंग्स दिए जाते हैं और रिफ़ंड की जो नीतियां हैं, इन सब चीज़ों को एक बार जांच लेना चाहिए। केवल प्रतिष्ठित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करना है। यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग के मुख्य पछतावे से बचना हमें होगा।
1: बिल्कुल. और चंचल देखो, एक अंतराल का समय हो गया,
0: जी

0: विविध भारती पर कार्यक्रम सखी सहेली चल रहा है और हम बात कर रहे थे ऑनलाइन शॉपिंग के बारे
1: हाँ
0: में। कमेंट्स और भी बहुत सारे हैं, बातें और भी हैं, लेकिन पहले गीत
1: गीत
0: सुनते
1: सुन
0: हैं।
1: लेते हैं।

0: याद रखोगे कि भूल जाओगे नजराने। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग के विषय में ही हमारे जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अभी फरवरी में छोटी बेटी की शादी थी, बच्चों को ऑनलाइन शॉपिंग करने का कुछ ज़्यादा ही शौक होता है। शादी के कपड़े, बिंदिया, गहने, ड्रेस मटेरियल और भी बहुत कुछ उसने देखा और मंगवाया भी। इसमें से कुछ सामान ऐसा भी आया जो कि दिखाया गया वो नहीं भेजा गया, वापस करने की कोई सुविधा नहीं थी। कुछ कपड़े भी जिस साइज़ के मंगवाए थे उसे साइज़ में आए ही नहीं। जूते चप्पलों का भी यही हाल था। इसे नुकसान भी हुआ क्योंकि वापस भेजने की सुविधा नहीं थी। कुछ कंपनियों ने जैसा कहा था वैसा ही भिजवाया, तब अच्छा लगा। तो मेरा तो अनुभव ये रहा कि सामान वही मंगवाना चाहिए जिसमें वापस भेजने की सुविधा हो, नहीं तो हमें धोखा हो सकता है।
1: हमारे एक श्रोता का कमेंट है, उफ, ये ऑनलाइन शॉपिंग कभी खुशी कभी गम। अभी हाल ही ऑर्डर किया गया एक सामान है, उम्मीद है जो मंगवाया गया वही आइटम मिलेगा। मतलब इन्हें अभी तक उस सामान की डिलीवरी मिली नहीं है, उसके बारे में लिख रही हैं। और तब मुझे कोई पछतावा नहीं चाहिए। पिछली बार पछतावा मिला जब गोल्डन और वाइट पर्ल का ऑर्डर दिया था, मगर ड्रेस एक धुलाई में ही ऐसी निकली कि मेरे सारे अरमान
0: भी
1: भी धुल
0: धुल
1: गए।
0: गए। तो वैसे एक हमारे श्रोता है वो लिखते हैं कि मैंने भी सभी बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी करें, और मैं भी सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी भी ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद नहीं करते हैं।
1: आगे श्रोता लिखते हैं कि बेटे ने एक बार लैपटॉप, टैबलेट, स्क्रीन पर काम करने वाली स्टाइलिश पेन, इस तरह की कुछ चीज़ें मंगवाई थी जिनमें 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी थी। और जैसे ही इन चीज़ों को उपयोग में लाया तो पता लगा कि वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तुरंत संपर्क किया और बहुत तकलीफ हुई इन चीज़ों को रिटर्न करने में और अमाउंट को वापस अपने प्राप्त करने में। इसीलिए मैंने बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी किया करें। और जैसा कि आपने बताया था कि इनकी पत्नी है वो ऑनलाइन शॉपिंग
0: जी।
1: पसंद नहीं करती हैं, बच्चे हैं वो कर लेती
0: देखिए
1: हैं,
0: बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी आ जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ चीज़ें खराब भी आती हैं।
1: लेकिन आज हम फिलहाल वही अनुभव ले रहे हैं
0: हाँ, जो
1: जिन्हें
0: उनको
1: कभी
0: हुए।
1: पछतावा हुआ। जी
0: और एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि शॉपिंग की कहूँ तो भतीजे की शादी में बिटिया रानी ने कुछ कपड़े मंगवाए, सब गड़बड़ हो गया एन समय पर। फिर आखिर बाजार से तुरंत फुर्ती से दूसरे खरीदने पड़े तो पैसे गए और जो बुलाए वो भी नहीं आए। इससे अच्छा बाजार से अपनी पसंद के ही खरीदें, यही बेहतर होगा कि उनको दो बार पैसे खर्च करने पड़े, ये
1: बिल्कुल,
0: इनका
1: आप
0: कहना है।
1: बहुत सारे अति उत्साहित होकर ऐसे कोई चीज़ें ना खरीदें, ध्यान रखिएगा। और आज बता दें कि गुरु अर्जुन देव शहीद जो हैं, उन गुरु अर्जुन देव जी का शहीद दिवस है और ये सिख धर्म के 5वें गुरु माने जाते हैं। और इनका बलिदान दिवस ज्येष्ठ माह की 24वें दिन अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जहांगीर के विद्रोही बेटे राजकुमार खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ जब विद्रोह किया तो लाहौर की तरफ वो चल पड़ा और रास्ते में गुरु अर्जुन देव जी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी सहायता भी की। और जहांगीर ने इसे राजद्रोह मानकर उन्हें सजा सुना दी और उन्हें बहुत सारी यातनाएं देकर शहीद किया गया था। और वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों पर समझौता करने से मना कर दिया था और सिख धर्म के इतिहास में उन्हें पहला शहीद माना जाता है।
0: जी बहुत ही बड़ी बात है, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
1: और
0: और आज एक और
1: ये जो दिन
0: दिवस।
1: होता है ना,
0: जी
1: इस पर बहुत सारे जो गुरुद्वारे होते हैं वहाँ पर शबद कीर्तन होते हैं, श्रद्धालु आते हैं और छबील यानी कि मीठे प्याऊ, मीठे
0: हाँ
1: पानी की
0: हाँ
1: जो प्याऊ होते हैं वो
0: ये चीज़
1: लगाई जाती है और
0: हाँ
1: लंगर यानी कि जो भोजन
0: लंगर
1: प्रसाद है
0: होता है
1: उसकी व्यवस्था की
0: बिल्कुल।
1: जाती
0: और
1: है।
0: लंगर का खाना चंचली इतना इतना अच्छा, इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है ना कि मन करता है कि आप वहाँ रोज़ जाके खाएं, क्योंकि लंगर की सेवा वो हमेशा करते हैं।
1: और वो बहुत श्रद्धा
0: जी
1: से पकाया गया भोजन होता है, वो सिर्फ
0: बिल्कुल
1: भोजन नहीं होता, वो प्रसाद होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम एक और दिवस है इसके बारे में बात करें कि गीत सुनने पहले
1: पहले गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल गीत सुन लेते हैं।

0: इनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल

0: बज रही थी दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो भाई खाना बनाते समय कुछ जरूरी चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, और बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त आ गई है हमारे पास जो हमारे श्रोताओं ने हमें लिखकर
4: बहुत कुछ लिख डाला है भाई
3: जी।
4: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि खाना बनाते समय सबसे पहला काम सारी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए, इससे गैस की भी बचत होती है और परेशानी से भी बच सकते हैं। और खाना बनाते समय अपने मन को भी खुश रखना जरूरी है, और उसके लिए विविध भारती है ना, वो तो है। और वैसे एक बात हम कहना चाहेंगे कि क्या कभी किसी ने भजन सुनते हुए खाना बनाया है? बना कर देगी, स्वाद में अंतर जरूर नजर आएगा। आप चाहे भजन सुने या फिर कोई गीत अपने मनपसंद सुने, खाने में स्वाद तो आएगा ही आएगा जब हम खुश होकर बनाएंगे।
3: और बिल्कुल सही बात है, अगर आप कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, आपकी भावना बहुत अच्छी है उस खाने को बनाने के लिए, बहुत प्रेम से किसी के लिए कुछ पका रहे हैं, तो वो खाना वैसे भी स्वादिष्ट बनेगा। अमूमन खाना जो है घर में महिलाएं ही पकाती हैं, पुरुष नहीं पकाते हैं, लेकिन हमारा ये जो कार्यक्रम है,
4: चंचल जी ऐसा मत कहिए क्योंकि आजकल पुरुष बहुत ज्यादा काम करने लगे हैं,
3: लेकिन मैंने कहा अमूमन ये होता
4: है, ये तो है
3: ना। तो हमारे जो पुरुष होता कार्यक्रम को सुनते हैं और जो कभी कभार रसोई में खाना भी पकाते हैं, उन्हीं का संदेश मैं पढ़कर सुना रही
4: हूं। बिल्कुल बिल्कुल।
3: मैं खाना नहीं बनाता इसलिए कोई खास टिप्स नहीं है मेरे पास।
4: अच्छा।
3: पर सुबह की पहली चाय मैं हमेशा बनाता हूँ, तो एक टिप है मेरे पास
4: जी। बिल्कुल।
3: चाय की एक बूंद भी प्लेटफॉर्म पर गिरती ही इसे तुरंत साफ करता हूँ, यानी कि खाना बनाते वक्त साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी टिप है,
4: बहुत जरूरी।
3: ऐसा इसलिए भी होता है कि अगर पुरुष जो होते हैं अगर किचन में खाना बनाया तो वो क्या करते हैं, बस खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए इसका तो ध्यान रखेंगे, लेकिन किचन वही पूरी फैली पसरी छोड़कर वो आते
4: तो है।
3: तो इन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा है कि इनकी श्रीमती जी उस चीज से नाराज ना हो कि भाई चाय की बूंद भी गिरी है तो वो ना हो,
4: एकदम साफ सुथरा किचन मिले। बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अनाज दाल और बेकिंग के टिप्स बता रहे हैं वो, तो इसमें चावल के बारे में बता रहे हैं। तो चावल उबालते समय पानी में कुछ बूंदे नींबू के रस या घी की डाल दी जाए, इससे चावल के दाने आपस में चिपकेंगे नहीं। और अगर आपको दाल जल्दी पकाना है तो सूखी दालों या छोलों को पकाने से पहले कुछ घंटे पानी में भिगो दीजिए, इससे वो जल्दी पकते हैं और गैस की बचत भी होती है। और आटा गूंदते समय गुनगुने पानी या थोड़ी सी दूध का इस्तेमाल करने से रोटियां बेहद नरम और फूली हुई बनती हैं।
3: इसी तरह से कुछ और टिप्स हमारे पास आए हैं कि हरी सब्जियों का रंग, जैसे मटर पालक इस तरह की जो भी होती हैं सब्जियां, उनका रंग बरकरार रखने के लिए चुटकी भर चीनी डालने से उनका हरा रंग बना रहता है। विटामिन का अगर संरक्षण करना है तो सब्जियों को बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में काटने की बजाय या पानी में उबालने की बजाय बड़ा थोड़ा मोटा काटें, और पानी में उबालने के लिए उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं तो ऐसा ना करें, इसीलिए इन्हें मध्यम आकार के आकार में काटें। और आलू बैंगन अक्सर काले पड़ जाते हैं तो इन्हें जैसे ही काटें तुरंत नमक वाले पानी में रखें, इससे वो काले नहीं पड़ेंगे। और लहसुन की कलियों को कुछ देर गर्म पानी में भिगोकर रखने से छिलका बड़े आसानी से निकाला जा सकता है।
4: अरे वाह क्या बात है। और एक हमारी श्रोता है जो बहुत ही, उन्होंने तो बहुत ही मजेदार सा कमेंट किया है, गाना ही लिख दिया है। उन्होंने लिखा है कि खाने बनाने का समय का टिप्स हम क्या दे सकते हैं भला, जिसे खाना बनाना ना आया, ना गाना आया, ना बजाना आया, सिर्फ और सिर्फ दिलबर के हाथों का खाना खाना आया। तो मतलब ये इन्होंने खाना खाना सीखा है, खाना बनाना नहीं सीखा है। कोई बात नहीं, आप अभी भी आप सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं,
3: नहीं भी खाना बनाते तो सिर्फ अगर मदद भी करेंगे ना अपनी बहन की, माताजी की, श्रीमती जी की, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान ले आइए, ये भी बहुत बड़ी बात।
4: बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी सी तैयारियां करा दीजिए, सामान ले आइए या उनके लिए कुछ अच्छा ले आइए जिससे वो खुश हो जाए और अच्छा अच्छा खाना खिला पाए।
3: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि खाना बनाना एक कला है जिसे थोड़ी सावधानी और सही तरीकों से और बहुत आसान बनाया जा सकता है। खाना बनाने से पहले सभी आवश्यक सामग्री तैयार कर लेनी चाहिए जिससे समय की बचत हो जाती है। मसालों और नमक का प्रयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए और गैस और बर्तनों को सावधानी पूर्वक उपयोग करें, बीच बीच में स्वाद चखते रहना चाहिए

0: ताकि कोई चीज कम या ज्यादा ना हो जाए।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि प्याज को अच्छी तरह सुनहरा भूरा होने तक भूनने से भोजन में गहरा स्वाद और प्राकृतिक मिठास आती है। सब्जी या दाल में ज्यादा नमक अगर हो गया है तो करी या सूप में नमक तेज हो जाए तो उसमें उबला हुआ आलू या गूथे हुए आटे की छोटी सी गोली छोटी छोटी गोलियां बनाकर डाल दीजिए, वो अतिरिक्त नमक सोख लेंगी। गाढ़ी और मखमली ग्रेवी के लिए टमाटर प्याज की ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आप उसमें भुना हुआ बेसन, काजू का पेस्ट या उबले आलू को मैश करके मिला सकते हैं। और ग्रेवी में दही मिलाते समय आप आंच को धीमा रखिए, इससे लगातार चलाते रहिए ताकि दही जो है वो फटेगी नहीं।
0: अगले टिप में लिखा है कि अगर आप घर में ही घी बनाते हैं मलाई से और मलाई जमा कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी दही मिला दें और उसके बाद उसे फ्रिज में रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसे थोड़ी देर ही पहले बाहर निकाल कर छोड़ दीजिए। इससे थोड़ा सा फर्मेंट हो जाता है और मक्खन निकालने के बाद स्वादिष्ट मट्ठा भी तैयार होता है। मलाई को 8 दिन, अगर मलाई से निकाल रहे हैं तो उसे 8 दिन में ही कंज्यूम कर लें और इसे फ्रिज में ही रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसी दिन फ्रिज से बाहर निकालें। मथने के बाद ठंडे पानी में बर्फ़ डालकर मक्खन को तुरंत रखें और गर्मियों में जो मट्ठा है वो निकलता है उसमें बड़ा स्वाद होता है।
1: बिल्कुल। और चंचल जी, हम एक संदेश को सुन लेते हैं, उसके बाद हम बात करें आगे की।
0: जी
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि इस मौसम में अरबी बहुत मिलती है और अरबी गले में भी लगती है, उन्हें छूने से हाथों में खुजली भी होती है, तो अच्छा है ग्लव्स पहनकर यानी कि दस्ताने पहनकर इसे छीला जाए। अगर आपके पास दस्ताने नहीं हैं तो पूरे हाथ को हाथ पर सूखा आटा लपेट लें और उसके बाद अगर अरबियों को छीलेंगे तो वो हाथ पर चिपकती नहीं है और खुजली भी नहीं होती है। बड़ा अच्छा टिप दिया है।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती, तुम्हें ध्यान है कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताया था कि आज है 18 जून, जो कि होता है सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस, और ये स्वस्थ और सुरक्षित बेहतर भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है जिनको मनाना। और जब भी हम किसी सांस्कृतिक विविधता की बात करते हैं तो सबसे पहले वहाँ के पहनावे और खान पान की ही बात की जाती है।
1: बिल्कुल। और गैस्ट्रोनॉमी भोजन और संस्कृति के बीच संबंधों का अध्ययन है, जिसे अच्छे खान पान की कला और विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी भोजन की कला भी कहा जाता है। इसे किसी विशेष क्षेत्र के खाना पकाने की शैली या फिर स्थानीय भोजन के संदर्भ में हम समझ सकते हैं। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी कार्य, जैसे कि कृषि हो, मछली पकड़ना हो, भोजन तैयार करना हो, इस तरह से किया जाए जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी ना हो और भविष्य में भी इसे जारी रखा जा सके बिना हमारे पर्यावरण या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए हुए।
0: बिल्कुल, भोजन की बर्बादी से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाता है और इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। अपने आहार में जो भी पारंपरिक फसलें हैं उन्हें हम शामिल कर सकते हैं जो हमारे क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो खनिज और विटामिन से भरपूर भी होती हैं, और कई तरह के जो व्यंजन हैं उनको तो हम अपनी यात्राओं में भी आजमा सकते हैं। और
1: बिल्कुल
0: अब एक गाना सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।
2: मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहाँ की खाक मोहब्बत।

0: भाई ये था कार्यक्रम का अंतिम गीत और समय हो चला है सखियों से विदा लेने का।
1: तो आरती श्रीवास्तव को और
0: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। दोस्तों, गर्मी की इस चिलचिलाती दोपहरिया में कोई चीज सुकून देता है तो वो है पानी या फिर शरबत या फिर आइसक्रीम। लेकिन इसके अलावा इन सब से परे जो सुकून और ठंडी छांव देता है वो है सुरीले गीतों की सौगात। सुरीले गीतों की फरमाइश करते हैं आप सभी श्रोता, मीठी और दिलचस्प बातें करते हैं आप सब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला बातों और गीतों का। ये है आज के प्रोग्राम का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं ठाणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए, आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद चौहान है।
0: रामेश्वर जी, क्या काम काज करते हैं आप ठाणे में?
1: मेरा काम है, छोटा मोटा दुकान है, घर के अंदर ही है, हॉल और अस्तर ये सब है।
0: अच्छी बात है, ठीक है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी काम अच्छे होते हैं, काम करना चाहिए, कोई काम छोटा नहीं होता।
1: हाँ, जिंदगी तो इसी में निकल गई हमारी, पिछले 32 साल से ही कर रहा हूँ।
0: तो आप बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रमेश जी?
1: ओ, एक कुल दो मालिक का है, तुझे सूरज कहूँ या चंदा,
0: तुझे दीप कहूँ या तारा। तो किसके लिए सुनना चाहते हैं? कभी बच्चे को गाकर सुनाया है ये गाना आपने?
1: बच्चे लोग को तो मैं बहुत सुनाता हूँ, लेकिन आजकल पुराना गाना सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहता इन लोग।
0: अच्छा, नए गाने पसंद करते हैं बच्चे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब बातचीत करते हैं खत्म। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैम
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैम, मैं लक्ष्मण सिंह चंदेल बात कर रहा हूँ मैम, ग्राम बोतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से।
0: तो आपका गांव कैसा है, जरा गांव की कुछ विशेषता बताइए अपने।
1: गांव बहुत बड़ा है मैम, यहाँ की मतलब आबादी 5,000 की समथिंग है मैम।
0: और पैदावार क्या होती
1: जी
0: है?
1: यहाँ पे सोयाबीन मुख्य खेती मतलब बोनी होती है सोयाबीन की।
0: और सोयाबीन बहुत पौष्टिक होता है खाने के लिए, बहुत
1: जी जी
0: रिच
1: मैम, बहुत
0: प्रोटीन
1: बड़ा।
0: होता
1: जी
0: है।
1: जी मैम,
0: तो व्यापार भी करते हैं, मतलब बिकता भी है सोयाबीन या फिर खाने भर का
1: हाँ
0: सिर्फ?
1: मैम, मंडी के लिए भी ले जाते हैं।
0: अच्छा, और बाकी चीजों में जैसे दाल चावल और गेहूं धान, इन सब में क्या होता है ज्यादा पैदावार?
1: अरहर होती है मैम यहाँ पे, मूंग भी होती है, उड़द भी होता है, मूंगफली भी होती है मैम।
0: भाई देखिए, गांव मतलब जब आम का मौसम है, गर्मी का मौसम यानी आम का मौसम, और इस
1: जी
0: समय
1: जी
0: आम जो लोग गांव में रहते हैं उनको आम खाने का बड़ा सुख मिलता है। तो बाग
1: जी
0: आपके
1: मैम,
0: पास भी है?
1: 4-5 पेड़ लगे हैं मैम हमारे खेत पे,
0: अच्छा, सिर्फ
1: और
0: चार
1: अभी
0: पांच पेड़?
1: जी जी
0: भाई हमने
1: बस
0: तो
1: 4-5 ही।
0: बाग देखे हैं, वो बड़े बड़े बाग दूर दूर तक फैले, आम के पेड़, जामुन के पेड़। संख्या पेड़ों की कम हो रही है ऐसा लगता है आपको?
1: नहीं, मैम गांव में तो बहुत है, लेकिन हम खेत पे लगाए हैं मैम इतने 5-6 पेड़।
0: अच्छा, जी बताएं कौन सा गाना आपको सुनवाए,
1: देवासनम का सुनना है मैम।
0: कौन सा?
1: अच्छा शिल्ला दिया तूने मेरे प्यार के, ये गीत के बोल है मैम।
0: अच्छा, क्या कभी दिल टूटने की बात आई थी क्या जीवन में, ऐसा गाना
1: नहीं नहीं
0: क्यों?
1: मैम, चलो पर नहीं, पसंद नहीं है मैम ऐसा
0: अच्छा
1: कुछ
0: अच्छा
1: नहीं।
0: जी, एक समय जब फिल्म आई थी ना तो ये गाना बहुत मशहूर हुआ था, हर किसी की जुबान पर ये गाना होता था। तो चलिए, शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये
1: ओके
0: गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मेरा नाम नई मलिक है, मैं सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, कश्मीर की किस जगह से?
1: जी मैं बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। हमारे गांव का नाम है बड़गाम, ये एक खूबसूरत एरिया में पड़ता है, एक
0: अरे
1: टूरिस्ट एरिया में ये पड़ता है।
0: वाह भाई वाह। तो श्रीनगर से कितनी दूर है आपका गांव?
1: हम 45 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से।
0: अच्छी बात है। तो अगर पर्यटक वहाँ जाते हैं तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या सुविधा है, गाड़ी से या घोड़े से, कैसे जाया जाता है?
1: बस गाड़ी से आते हैं, और जो कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद है, और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमारे बड़गाम में ही मौजूद है। और अब तरह तरह की सड़कें भी है और गाड़ी से भी आते हैं, और जो हमारा जो टूरिस्ट एरिया है वहाँ पर कोई सैलानी घोड़े को भी पसंद करते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपका क्या काम काज है वहाँ?
1: जी मैं बिजनेस करता हूँ, टैल मार्बल और सीटी की सामान बेचता हूँ, जैसे दीवार पर पेंट पेंट लगाती है वही मैं बिजनेस करता हूँ।
0: अच्छी बात है। तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है, ठंडा है, गर्म है?
1: थोड़ी गर्मी भी है, तो जून का महीना चल रहा है, गर्मी भी है लेकिन साथ साथ कभी कभी बारिश भी होती है, और पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में भी बारिश भी हो रही है और गर्मी भी है। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे सैलानी भी आते हैं, हमारे कश्मीर के अंदर बहुत सारी टूरिस्ट जगह है, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं।
0: क्या बात है। गर्मी तो आपके लिए होगी क्योंकि आपकी आदत ज्यादा ठंड की है, जो सैलानी आते होंगे उनके लिए ज्यादा गर्म नहीं लगता होगा।
1: यहाँ पर ज्यादा 35-35 डिग्री यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान के कई शहरों में 40 से भी ऊपर डिग्री गर्मी होती है, उनको ये
0: 48
1: नॉर्मल सी लगता है।
0: जी, तो बहुत ज्यादा गर्मी से जूझते हुए जब वहाँ लोग पहुँचते होंगे तो ठंडक महसूस होती होगी। वहाँ की कुछ नदियों, वहाँ की झील के बारे में बताना चाहते हैं तो बताइए, अगर आपको जानकारी है तो।
1: हमारे इलाके में सबसे एक मशहूर झील है, उसको दूध गंगा कहते हैं। उनका जो पानी बिल्कुल साफ और नेचुरल पानी होता है, और अगर आप हम जंगल के उस पार जाएंगे या जंगल के उन जगहों पर जाते हैं जहाँ पर टूरिस्ट है, वहाँ पर बहुत सारे नदियाँ हैं। जाए अगर आप पहलगाम की बात करेंगे, सोनमार्ग, गुलमार्ग या दूध पत्थर की तरह की नदियां हैं, जो बहुत ही उनका पानी भी मीठा है और साफ भी है। और अगर आप कश्मीर में रहते हैं तो कश्मीर का आपको ऐसा पानी मिलेगा।
0: पहलगाम और गुलमर्ग के पास तो लिद्दर नदी भी बहती है, हमें याद है
1: आपको
0: कि
1: सबसे मान
0: वो,
1: जी आपको पता है ये पहलगाम में पड़ता,
0: हाँ,
1: कश्मीर में पड़ता।
0: उस नदी का पानी हमने छुआ भी, बहुत ठंडा पानी था क्योंकि हम ठंड
1: बहुत
0: के
1: ठंडा
0: मौसम
1: पानी
0: में गए थे। अच्छी बात यह है कि पानी बिल्कुल पारदर्शी लगता है। बताइए इस समय गाना कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
1: ये साजन फिल्म का नगमा है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें फोन किया और कश्मीर के बारे में इतनी उम्दा बातें आपने शेयर की श्रोताओं के साथ। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं मध्य प्रदेश से देवास जिले से गोविंद प्रसाद जलोदिया बोल रहा हूँ।
0: तो गोविंद जी, देवास मध्य
1: हाँ।
0: प्रदेश किसी खास व्यक्ति के लिए, संगीत के लिए मशहूर है। शास्त्रीय संगीत के एक मर्मज्ञ,
1: हाँ,
0: वहाँ के
1: ठीक
0: मूर्धन्य संगीतज्ञ
1: गंधर्व
0: पैदा,
1: गौरव
0: पंडित कुमार
1: हाँ
0: गंधर्व
1: हाँ
0: जी,
1: जी
0: जो उनका निवास है, देखा है आपने? बाहर से देखा होगा, बहुत सुंदर बना हुआ है।
1: वो क्या है, वैसे खातेगांव से देवास की दूरी 100 किलोमीटर है करीब।
0: अच्छा, तो गए हैं आप घर?
1: देवास वो आना जाना रहता ही रहता है।
0: जी बिल्कुल, शास्त्रीय संगीत
1: हाँ
0: के चाहने वाले वहां तक जाते हैं, पंडित कुमार गंधर्व के दरवाजे तक मत्था टेक कर आते हैं। कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सर, वो बरसात का गाना है लता मंगेशकर की आवाज में, हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा मलमल का।
0: क्या बात है, बहुत सुरीला गाना चुना है आपने। तो क्या पुराने गाने ज्यादा पसंद आते हैं आपको?
1: और सर, हाँ वो क्या है, पुराने गाने ही पसंद करता हूँ मैं। और दूसरी बात ये है कि वो शुरू से ही मेरे को लगाव है ये गाने पिक्चर से। क्या है कि मेरे रेडियो का बहुत शौकीन था शुरू से ही, 1967-1968 से ही।
0: अच्छा,
1: तो घर वालों ने मेरे को रेडियो ट्रेनिंग में भेज दिया था। पहले वाल वाले रेडियो चलते थे,
0: हाँ
1: जाली
0: हाँ
1: लगती थी, ये उसकी ट्रेनिंग होती थी सीखने
0: अच्छा
1: के लिए। तो मेरे को इंदौर में भेज दिया था सीखने के लिए। तो फिर मैंने इंदौर में भी काम किया और फिर खातेगांव में दुकान खोल दी रेडियो की,
0: अरे
1: वाल
0: वाह,
1: वाले रेडियो।
0: क्या बात है। तो अभी भी है रेडियो वाली दुकान आपके पास?
1: अब तो मैंने बंद कर दी, अब तो मेरे से बनता नहीं है।
0: तो क्या करते थे,
1: अब तो
0: रिपेयरिंग
1: वो,
0: करते थे?
1: हाँ रिपेयरिंग करता था और वाल वाले रेडियो बनाते भी थे।
0: अच्छा, क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात बताई
1: हाँ
0: आपने। वॉल वाले रेडियो अब
1: हाँ
0: मिलते नहीं
1: बनाते,
0: है?
1: हाँ 5 बार 3 बार 2 बैंड 3 बैंड ऐसे
0: अच्छा
1: चलते थे वो।
0: जी, तो अभी लोग आपसे कहते हैं कि मेरा रेडियो खराब हो गया, जरा रिपेयरिंग करके दे दो?
1: नहीं, अब तो अपने से बनता भी नहीं है। अब रेडियो का जमाना है ही नहीं, अब रेडियो का जमाना खत्म हो गया। धीरे धीरे करके फिर ट्रांजिस्टर शुरू हो गए सेल वाले, अब सेल वाले से अब मोबाइल पे आ गए।
0: लेकिन सुनना कहाँ बंद हुआ, रेडियो से प्यार तो वैसे
1: हाँ
0: ही है।
1: सुनना तो नहीं रहा अब तो, सुनना तो और ज्यादा होगा क्योंकि पहले, आजकल तो क्या है कि बड़ी मुश्किल से 20 भारतीय आकाशवाणी लगता था, और आजकल तो क्या है कि घर बैठे ही, मतलब घर में मिल रहे हैं सभी स्टेशन
0: मोबाइल पे भी सुन सकते हैं आप।
1: में। हाँ
0: और
1: मोबाइल,
0: पहले वो जो रेडियो बड़ा वाला होता था, उसमें आप वो जो बटन होता था, बटन को घुमाते रहो, कई बार विविध
1: हाँ
0: भारती पकड़ने में बहुत दिक्कत होती थी, मुश्किल होती थी,
1: दिक्कत होती थी, हाँ इधर से
0: है
1: उधर तक
0: ना
1: नहीं लगता था।
0: जी। लेकिन उसका एक अलग आनंद था उस रेडियो का।
1: हाँ वो तो अलग ही था, उसकी उस प्रकार की उसकी बॉडी भी इतनी अच्छी बनती थी कि संगीत में मजा आ जाता था। और इतने
0: जी
1: उतने सारंगी वगैरह इतने भी उतना उस टाइम समा, मतलब उसका जमाना नहीं था संगीत का। ढोली
0: बिल्कुल,
1: हारमोनियम भी इतने अच्छे लगते थे।
0: बहुत सारे कलाकारों को रेडियो ने मंच दिया, बहुत सारे कलाकार को रेडियो ने गढ़ा, तो रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है जीवन में हम सबके। तो बरसात फिल्म का गाना आपने पसंद किया है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम। और अब आपको सुनवा रहे हैं यही गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैडम जी नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: हाँ जी मैडम जी, मैं करणवीर सिंह पॉल जलंधर पंजाब से।
0: करणवीर सिंह जलंधर पंजाब के बारे में बताइए, क्या हाल चाल है जी?
1: बिल्कुल ठीक मैडम, बहुत बढ़िया। अभी तो थोड़ी 2 दिन बारिश हुई है तो मौसम अभी ठंडा हो गया है।
0: वाह
1: पहले
0: भाई,
1: तो बहुत ज्यादा तपश थी, तो अभी आज फिर वैसे बारिश होने के 4 शाम तक बारिश हुई।
0: और गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो राहत बहुत मिलती है, लेकिन उसके बाद जब
1: बिल्कुल जी,
0: बारिश रुक
1: बहुत
0: जाती
1: राहत
0: है।
1: मिलती है इधर। तो पहले तो 45 टेम्परेचर हो गया पंजाब में, जो अभी कुछ राहत मिली है पहले से।
0: तो
1: आप सुनाओ, बॉम्बे का कैसा हाल है?
0: बस मुंबई में भी गर्मी बहुत पड़ रही है इस समय, बारिश का इंतजार है हम सबको, और बारिश के छींटे आप अपनी बातचीत के जरिए और गानों के जरिए बता दीजिए। वैसे भी पंजाब का
1: वैसे
0: लोकगीत
1: भी
0: बहुत
1: हाँ बिल्कुल जी,
0: समृद्ध है।
1: बिल्कुल जी, हम तो विविध भारती थे, हम प्रसार भारती थे, 1970 से लेकर जुड़े हुए हैं,
0: क्या बात है
1: तो आज
0: भाई
1: तक बहुत हमें हमारा इन्होंने साथ दिया है। तो 90 वर्ष भी पूरे हो गए हैं,
0: जी।
1: तो हम तो कहते हैं अभी 10 साल और बाकी है, सेंचुरी हो जाएगी पूरी, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। और फिर
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, और सेंचुरी
1: हाँ
0: होगी वो तो सेलिब्रेट किया जाएगा, उसके बाद भी विविध भारती चलती
1: बिल्कुल,
0: रहेगी, रेडियो चलता
1: हाँ
0: रहेगा।
1: बिल्कुल चलती रहेगी, वो तो चलती रहेगी, लेकिन हमें बहुत लगेगी, हमें देखो इतना साल हो गया सुनते इसको।
0: तो कोई पंजाबी लोकगीत वगैरह याद है आपको?
1: पंजाबी लता हमारे सुरेंद्र कौर और प्रकाश कौर ने बहुत लोकगीत गाए हैं, लेकिन मेरे को उनका तो याद नहीं। मेरे को गुरदास मान का एक गीत बहुत ज्यादा है, गुरदास
0: गा के सुनाइए ना श्रोताओं को हमारे।
1: मान जी का गीत है, बह के वेख,
0: हाँ
1: वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पाउंदे ने, वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पाउंदे ने। बस इतनी जी 2 लाइन बोलनी थी।
0: जी जी बढ़िया। और वहाँ का
1: बिल्कुल
0: खान पान भी बड़ा मशहूर है, बहुत अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल जी, सर्दी होती है तो सर्दी में तो हमारे मक्के की और सरसों का साग
0: हाँ जी हाँ
1: और
0: जी,
1: मक्खन घी दही सब कुछ
0: क्या
1: ये
0: बात
1: बहुत
0: है
1: चलता
0: भाई,
1: है फिर तो। हाँ
0: वाह वाह
1: जी,
0: वाह। आप अपने वहाँ के बारे में बताइए, किस चीज़ की पैदावार वहाँ पर होती है आपके गांव में?
1: हमारे पंजाब में ज्यादा करके ना गेहूं होता है, तो जैसे अभी धान की खेती शुरू हो गई है, गेहूं होता है, गन्ना होता है, ये खास 4 फसलें ये खास होती है, बाकी पशुओं के लिए चारा भी होता है। ये 4 फसलें तो वैसे हमारे पॉपुलर है ना, ज्यादा करके होती है, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया और धान हो गया।
0: तो मक्का होता है तो मक्के दी रोटी और सरसों दा साग तो मशहूर है ही है, तो
1: बिल्कुल
0: वो
1: जी, मक्के की
0: और
1: रोटी, सरसों का साग, जैसे मक्के के भुट्टे भुट्टा भी बाजार में
0: हाँ
1: आने लग गया है ना हमारे इधर, हम खा लेते हैं, तो जो उसका जो तना होता है वो पशुओं चारा बन जाता है,
0: अच्छा, क्या बात
1: उसको
0: है,
1: भी
0: ये तो
1: बेचते
0: बड़ी उम्दा बात बताइए भाई। हमारे श्रोता अगर सुन रहे हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं कि मक्का खाने के बाद जो उसका
1: बिल्कुल।
0: तना होता है वो पशुओं के खाने के काम आ सकता है। बताइए कौन सा गाना आप सुनेंगे?
1: गीत मैडम सुना दीजिए, आज मुझे फिल्म का नाम है पाकिजा, गीत के बोल है चलते चलते मुझे कोई मिल गया था।
0: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है आपने। मीना कुमारी
1: बिल्कुल जी,
0: और
1: बिल्कुल
0: राजकुमार हैं इस फिल्म में, है ना?
1: हाँ
0: देखी थी
1: हाँ
0: फिल्म?
1: जी, देखी है जी मैंने फिल्म मूवी।
0: हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम पाकीज़ा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं मोहम्मद कोरा श्रीनगर से, जवान मोहम्मद ऋषि
0: जी बताएं क्या हाल है आपका
1: जी।
0: और श्रीनगर का क्या हाल है?
1: श्रीनगर का हाल तो बहुत ही अच्छा है, और आजकल तो मौसम बहुत ही अच्छा है, सुहाना है मौसम है।
0: अच्छा, बारिश हो गई है, गर्मी पड़ रही है, गर्मी के
1: हाँ
0: मौसम में भी सुहाना मौसम।
1: जी बिल्कुल, बारिश भी हो रही है और धूप अच्छी है, फिर भी मौसम बढ़िया है। और आपके प्रोग्राम सुनते हैं हम, बहुत ही मजा आता है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप?
1: सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन हम सभी प्रोग्राम सुनते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है ना, वो पश्चिम का काम, मजा आता है इसमें। रेडियो दिन भर ऑन होता है, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: पश्मीने का काम?
1: जी बिल्कुल
0: जी, पश्मीने का शॉल बहुत मशहूर है, लोग जाते हैं जब कश्मीर तो वहाँ से खरीद कर ले आते हैं।
1: जी जी
0: तो उसकी खासियत क्या होती है, थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को, कितनी
1: हाँ
0: मेहनत
1: ये
0: लगती है,
1: मैंने
0: कितना वक्त लगता है?
1: जी बिल्कुल, ये कौन ही जामा होता है, ये मतलब महंगा ही होता है, ये 1,50,000 1.5 लाख तक भी होता है
0: जी जी
1: इसमें। मतलब एक थोड़ा बहुत कठिन ही काम है, धागे मतलब जैसे तीली से बनाते हैं हम, मतलब हैंड से बनाते हैं हम। बिल्कुल,
0: इसमें धागे का प्रयोग करते हैं, ऊन का प्रयोग करते हैं?
1: ऊन का होता है, उसमें फिर हम फिर धागे बनाते हैं ना, फिर वो हम तीली पे लगा मतलब उसमें
0: वो
1: लगाते
0: जो
1: हैं।
0: डिजाइन बनाते हैं वो धागे से बनाते हैं?
1: हाँ वो धागे से बनाते हैं।
0: तो काफी मेहनत होती है, काफी वक्त लगता है ना? अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सहेली फिल्म है, उसी में एक गाना है, इतना तो कह दो हमसे तुमसे ही प्यार है, लता और हिम्मत कुमार की
0: क्या
1: आवाज़
0: बात
1: में
0: है,
1: सॉन्ग।
0: बेहद सुरीला गाना पसंद किया आपने, और बहुत दिनों
1: जी
0: बाद
1: बिल्कुल
0: इस
1: हम
0: गाने की फरमाइश आई है। खुद भी आप गाते गुनगुनाते हैं क्या?
1: थोड़ा बहुत गाते हैं।
0: गाना चाहे तो गा के सुनाइए, हमारे श्रोता भी सुनेंगे, आप गुनगुनाएंगे तो।
1: चलिए आपने कहा तो कोशिश करेंगे। इतना तो कह दो हमसे तुमसे ही प्यार है, तुमसे ही प्यार है, मेरी खामोशी सजना तेरा इकरार है।
0: बहुत शुक्रिया। सुनते हैं सहेली फिल्म का ये गाना।
2: इतना तो कह दो हमसे।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: जी मैं मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रही था।
0: जी मनोहर लाल जी, बताइए क्या हाल है आपका और गाजियाबाद का क्या हाल है?
1: बस ठीक है जी, गाजियाबाद का तो बहुत ही अच्छा हाल हो गया क्योंकि मेरी कॉल लग गई आज विविध भारती।
0: पर गर्मी बहुत पड़ रही है ना, दिल्ली पूरा इलाका बहुत गर्म सुना है हमने।
1: गर्मी तो बहुत पड़ रहा था लेकिन आज मौसम ठीक हो गया। सुबह सुबह अपना बादल आए, थोड़ी बूंदाबांदी हुई तो मौसम ठीक है आज।
0: बादलों ने सुकून दिया आपको, तो इस सुकून के बाद आप बताइए कौन सा सुकून दे गाना सुनना चाहते हैं?
1: ये गाना सुनना चाहता हूँ मैं, फिल्म चमत्कार का, जिसके बोले इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: जी आप तो गाते भी अच्छा खासा।
1: जी यहाँ पे हम गाते रहते हैं करोके म्यूजिक पे, हमारे दोस्त हैं बहुत सारे बुजुर्ग दोस्त हैं, यहाँ अपना हफ्ते में एक दिन प्रोग्राम बनाते हैं और गीत संगीत के साथ ही हम जुड़े रहते हैं और बचपन से हम विविध भारती सुनते आए हैं, आज भी सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, ये जो सब ग्रुप में गाने वाली बात कही, हमारे बहुत सारे श्रोता इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि जब आपके पास फुर्सत के लम्हे होते हैं तो आप सब साथ में गाने गुनगुनाने का, सुनने का एक अलग मजा होता है।
1: संगीत साथ होता है, विविध भारती साथ होता है तो सकारात्मक सोच भी उत्पन्न होती है और दिल भी हमारा खुश रहता है
0: और बहुत सारे झंझावात तनाव भूल जाते हैं गानों के साथ जब होते हैं, है ना?
1: तनाव तो खैर होता ही नहीं है और बीमारियों से भी हम जो दूर रहते हैं क्योंकि संगीत एक थेरेपी की तरह है।
0: क्या काम काज है वैसे आपका?
1: जी मेरी कपड़े की शॉप है यहाँ पे,
0: तो साथ में रेडियो चलता रहता है।
1: हाँ जी रेडियो चलता रहता है, ऐप के थ्रू अपना साफ आवाज में हम सुनते रहते हैं यहाँ पे।
0: जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम चमत्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार ममता जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, धीरज जबारी
0: जी। बताएं धीरज जी, क्या हाल है आपका?
1: मौसम अच्छा है, मेरा भी अच्छा हाल है और मैं पेड़ों के नीचे से बात कर रहा हूँ। यहाँ मोर भी बहुत है, लेकिन जब हमारी बात हुई जो अगर मोर एक दो टोके तो अच्छा रहे।
0: हाँ,
1: लेकिन ये पक्षी है, हमारे कहने से कुछ नहीं बोलते, अपने आप में बोलते हैं।
0: अच्छा, कौन सा पक्षी है?
1: मोर है, बहुत है मोर, लेकिन
0: हाँ, हाँ,
1: अभी बादलों में कई बार बोलते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि जब बोले तब नहीं बोल पाएंगे।
0: उन्हें नहीं पता है ना कि हमें कब बोलना है, कैसे बोलना। वो किसी के डिसिप्लिन वाले नहीं है ना, वो तो आजाद हैं और उन्हें
1: बिल्कुल
0: आजाद
1: बिल्कुल
0: रखना भी चाहिए। तो आपके तो दिन बन जाता होगा, बड़ा खुशगवार दिन
1: बिल्कुल
0: होता होगा।
1: बिल्कुल ममता जी, हम प्रकृति के अंदर में नौकरी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
0: कहाँ काम करते हैं?
1: हम एक फार्म में नौकरी करते हैं और
0: अच्छा,
1: फार्म में पेड़ों की संख्या बहुत है और
0: अरे वाह,
1: मोर है, कबूतर है और पक्षी है, बहुत
0: हाँ
1: अच्छा
0: हाँ
1: लगता है।
0: वाह,
1: और जो पक्षियों का जो प्रेम होता है ना, इसकी भी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वो उसको जब आप दाना डालते रोटी डालते हैं मोर को, तो मोर बिल्कुल नजदीक आ जाता है, तो वो दृश्य बिल्कुल अच्छा लगता है दीदी।
0: क्या बात है। तो मोर का नृत्य भी देखा होगा फिर तो आपने? मोर का नाचना बड़ा
1: बिल्कुल
0: सुंदर लगता है ना।
1: बिल्कुल, मोरों के बीच में गांव
0: हाँ
1: में भी
0: हाँ
1: रहते थे
0: हाँ
1: और यहाँ भी रहते हैं।
0: विशेष रूप से क्या खिलाया जाता है मोर को?
1: मोर को देखा जाए तो उसको दाना, यानी दाने में ज्वार है, बाजरी है,
0: ये सब?
1: लेकिन हम रोटी डालते हैं तो बाजरे की, गेहूं की, तो वो खा जाते हैं। और
0: अच्छा।
1: वैसे देखा जाए तो जीव जंतु भी खाते हैं, लेकिन दाने भी खाते हैं और मकई का।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं यशवंत साहू बोल रहा हूँ, कर्मा चौक लोहारडीहा जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से।
0: जी बताइए, क्या हाल है आपका और छत्तीसगढ़ का?
1: जी ममता दीदी बहुत अच्छे हैं हम।
0: जी क्या कर रहे हैं?
1: हम आम के बगीचे में अभी आम खाने हैं, मैं अपने बेटे को लेकर।
0: अरे वाह, क्या बात है भाई। कौन से आम है, कौन कौन से आम वहाँ पर?
1: अब आम के नाम तो मालूम, लेकिन देसी आम है अपना खुद के, इधर हमारे पूर्वज जो है ना यहाँ पर लगाए हुए हैं आज से 100 साल के पहले आम।
0: वही खा रहे हैं?
1: हाँ, लकड़ी के सहारे से पेड़ में मार रहे हैं, उसके हिसाब से आम गिर रहे हैं, उसको हम खा रहे हैं। मतलब अभी 10-10 आम खा चुके हैं दोनों बाप बेटे।
0: अरे वाह, क्या बात है भाई, 10 आम। अब यहाँ महानगरों में, शहरों में तो लोग एक आम खा लेते हैं, उसी से पेट भर जाता है।
1: जी मैं महाराष्ट्र में रत्नागिरी में 2 साल तक वहाँ पर रुका हूँ।
0: जी
1: आम खाने के लिए हम वहाँ तरसते थे हम आम खाने के लिए।
0: जी, और बाग से तोड़कर बाल्टी में भिगो के आम खाने का मजा अलग ही है। ये बताइए कि आपने
1: एकदम
0: कहा
1: सही
0: कि
1: बात है।
0: आपने के पूर्वजों ने आम लगाया और अब वो खा रहे हैं, तो आपने भी कोई पेड़
1: जी
0: पौधा लगाया है,
1: मैं
0: आपकी
1: अपने
0: आगे
1: बाड़ी,
0: आने वाली पीढ़ी भी खाए?
1: हाँ बाड़ी पे लगाया हूँ और खेतों में भी एक दो पेड़ लगाया हूँ।
0: आम का जो बाग है,
1: जी
0: बाग में ही एक दो पौधा रोप दीजिए, पेड़ बन जाएगा कुछ महीनों में।
1: हाँ, लोगों को कहना चाहूंगा कि जैसे कि आम की गुठलियाँ होती हैं, जामुन के गुठले होती हैं, आप वहाँ पर कहीं भी टूर मतलब रास्ते पार करते हैं, अपने घूमने जाते हैं ना, तो अपने बाइक के डिग्गी में रख ले और कहीं

0: कहीं अपने डाल दे, ताकि वहाँ पर जो बारिश होगी उसके बाद ना अंकुर होकर एक पौधा बन जाएगा, जिसे कोई कोई आम खाएगा तो कम से कम ऊपर वाला देखेंगे।
1: जी बिल्कुल सही बात है। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
0: फिल्म का नाम है साजन की घर और कुमार सानू साधना सरगम जी की आवाज है। गीत के बोल है सावन आया बादल छाए।
1: ठीक है जी, सावन आए बादल छाए, बस इसी उम्मीद के साथ भेज रहे हैं आपके छत्तीसगढ़ में आपकी पसंद का ये गाना आपके रेडियो सेट तक।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: रंजीता जी, बताइए अपने बारे में, बताइए क्या काम काज है?
1: जी, मैं हाउस वाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ और मेरे बच्चे हैं और ऐसे परिवार में है। अभी गर्मी का सीजन है तो इन सारी बातों का ध्यान रखना, जैसे कि जैसे पानी वानी पीना है या कहीं जाना है तो जैसे टॉवेल लेके जाए, पानी की बॉटल लेके जाए, और साथ साथ में जैसे हमको पता है कि मैं पानी के लिए, वैसी पक्षी हैं, गाय हैं, इन सभी का जैसे पक्षियों के लिए छोटे छोटे पोला होते हैं मिट्टी के, या फिर मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसमें जाके छत के ऊपर पानी रखना, ताकि पक्षी लोग आए और वो भी अपना प्यास बुझा सके।
0: लेकिन आप खुद ये काम करती हैं?
1: जी करते भी हैं, और जैसे बालकनी वगैरह है तो पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं गर्मी की वजह से, तो उनमें भी पानी डालते हैं ताकि पेड़ पौधे सूखे नहीं।
0: और पेड़ पौधों
1: जी
0: की देखभाल के लिए और घरेलू स्तर पर भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है। सब्जी के जो छिलके होते हैं
1: जी
0: उसके माध्यम से खाद बनाया जाता है। तो

0: घर पे भी कुछ खाद बनाए जा सकते हैं ना, अगर आप बागवानी करती हैं तो।
1: जी। और हमारे इधर तो हम लोग गांव में हैं, तो घर में जैसे कि गाय है भैंस है, तो उन लोग का जो गोबर होते हैं उनको भी जैसे कि गड्ढा खन के मिट्टी में दबा के उनका भी खाद बनाते हैं और उनको भी सब्जी के लिए खेतों के लिए डालते हैं
0: ये तो बहुत
1: खाद
0: बढ़िया
1: के
0: खाद
1: रूप
0: होता
1: में।
0: है, गोबर की खाद तो सबसे अच्छी
1: जी
0: होती है, और जो घरेलू पौधे होते हैं उनमें तो इस खाद का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा होता है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: आपके
1: जी
0: गांव में और क्या क्या है, क्या खासियत है गांव की बताइए, कौन से पेड़ पौधे हैं वहाँ पर, ज्यादातर खेती किस चीज की होती है?
1: हमारे तरफ तो धान की खेती होती है दीदी, और अभी पानी का इंतजार है, जैसे पानी गिरेगा तो धान की फसल डालेंगे हम
0: तो
1: लोग।
0: आपके
1: जी
0: यहाँ धान कूटने के लिए ओखली भी है, मूसल और ओखली
1: नहीं अभी तो नहीं है, बहुत पहले
0: हुआ
1: होता था जब
0: करता था?
1: दादी लोग, हाँ हुआ करता था दादी लोग के समय में। ओखली वगैरह का तो नहीं पता दीदी, लेकिन वो ढेकी वगैरह बोलते हैं ना, उस टाइप का था
0: चक्की जात वगैरह,
1: उसमें तो।
0: चक्री है ना।
1: जी।
0: अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
1: जी, मैं खुद गर्ज फिल्म का दिल बहलता है मेरा आप क्या जाने से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते हैं आपकी पसंद का यही गाना। मैं

नमस्कार, मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर एवं मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजने को है। आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन प्रसारण सभा, न्यूज हेडलाइंस और उसके बाद कार्यक्रम युवाणी कुछ ही समय बाद आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति ने बैतूल में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित जनजाति सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए देश का कोई भी समुदाय विकास की यात्रा में पीछे नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि AI एक परिवर्तनकारी शक्ति है, लेकिन इसका उद्देश्य लोगों को सशक्त बनाना भी होना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की। श्री प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और क्षमता के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान है। प्रदेश में मानसून के पहले गर्मी का असर भी बढ़ता दिख रहा है और अगले 3 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। और हॉकी में भारतीय महिला टीम ने न्यूजीलैंड में जारी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत की ओर से दीपिका ने 2 गोल और दीपिका सोरेंग ने 1 गोल दागा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:02 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी। आज की युवाणी आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

0: नमस्कार दोस्तों, आज के युवाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सनाया नायक
1: और मैं हूं मेघा राय।
0: दोस्तों, कहते हैं ना, जब इरादे मजबूत होते हैं तो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो जिंदगी में कभी उदास ना होना और कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना।
1: तो दोस्तों, आज की शुरुआत करेंगे हम दो प्रश्नों के साथ, जिनके उत्तर हम बताएंगे आपको कार्यक्रम के अंत में। तो हमारा पहला प्रश्न है, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया गया है?
0: और हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, किसके द्वारा हाल ही में ध्रुव पहल लॉन्च की गई है? तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम का पहला गीत सुनने का, जो है फिल्म बॉर्डर 2 से, जिसे गाया है दिलजीत दोसांझ, सचित टंडन और परंपरा टंडन ने।

0: सनाया, क्या तुम भी मानती हो कि युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है? उनमें एक अलग एनर्जी होती है, उनके नए विचार होते हैं और बदलाव लाने का जुनून भी अलग ही होता है।
1: बिल्कुल सही कहा मेघा तुमने, पर मेरा मानना यह भी है कि हर युवा का व्यक्तित्व विकास अत्यंत आवश्यक है। आज भारत विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है, ऐसे में युवाओं का होलिस्टिक डेवलपमेंट देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है।
0: दोस्तों, कुछ खास बातें इस बारे में ध्यान रखना, मानना, जानना भी जरूरी है, जैसे अपना आत्मविश्वास बढ़ाना, अच्छी संचार कला विकसित करना, नियमित पुस्तक पढ़ना, समय प्रबंध सीखना, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना और पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करना है।
1: जब युवा अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं तो वे न केवल अपने करियर में सफल होते हैं बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उनका ज्ञान, उनका थॉट प्रोसेस, उनका नजरिया, उनकी सोच और ऑफ कोर्स उनका पावर सभी मायने रखता है।
0: दोस्तों, हम सबके भीतर असीम संभावनाएं छिपी होती हैं। आवश्यकता केवल उन्हें पहचानने, सही दिशा देने और निरंतर निखारने की है।
1: तो विश्व के सबसे बड़े युवा देश के शक्तिशाली युवाओं को अपनी शक्तियों को जागृत करने और देश के विकास में सीधे जुड़ने की प्रेरणा खुद को खुद से लेनी होगी। और चलिए, इस प्रेरणा के लिए यह गीत

बड़ा ही अप्रोप्रिएट बन पड़ता है। तो मेघा, सुने और सुनाए ये गीत जो लिया गया है फिल्म सूरमा से, जिसे आवाज दी है शंकर महादेवन ने।

0: कहते हैं कि कुछ कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं बनाती, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती हैं। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समय की सीमाओं को पार कर अमर हो जाते हैं।
1: बिल्कुल मेघा, और जब बात साहस, आत्मसम्मान और देशभक्ति की हो तो एक नाम पूरे गर्व के साथ हमारे सामने आता है। एक ऐसी वीरांगना जिसने न केवल किसी राज्य की रक्षा के लिए बल्कि पूरे देश को स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रेरणा दी।
0: आज के हमारे विषय प्रेरक व्यक्तित्व में हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जब भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था और एक युवा रानी ने अपने साहस से इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ दी थी।
1: वह रानी जिसने दुनिया को बता दिया कि हिम्मत का कोई लिंग नहीं होता और देश प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।
0: जी हाँ, आज की हमारी प्रेरणा है झांसी की शान,

0: वीरता की पहचान और भारत की अमर नायिका रानी लक्ष्मीबाई।
1: तो आइए सुनते हैं उनके जीवन की प्रेरणादायक कहानी।
0: 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें प्यार से मनु कहा जाता था, बचपन से ही बेहद साहसी और निडर थी। जहां उस समय लड़कियों को घर में काम सिखाए जाते थे, वहीं मनु घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में रुचि रखती थी।
1: बचपन से ही उनमें नेतृत्व करने की क्षमता दिखाई देती थी। उनकी यही विशेषताएं आगे चलकर उन्हें इतिहास की सबसे महान वीरांगनाओं में शामिल करने वाली थी।
0: समय के साथ उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ और वे रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुईं। झांसी की रानी बनने के बाद उन्होंने अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखा और जल्द ही लोगों के दिलों में विशेष स्थान बना लिया।
1: लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ समय बाद उनके पुत्र का निधन हो गया और फिर महाराजा गंगाधर राव भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। यह रानी लक्ष्मीबाई के लिए बेहद कठिन समय था।
0: रानी ने एक बालक को गोद लेकर उसका नाम दामोदर राव रखा, लेकिन अंग्रेज सरकार ने उसे उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेज झांसी को अपने अधिकार में लेना चाहते थे।
1: यहीं से शुरू हुआ वह संघर्ष जिसने रानी लक्ष्मीबाई को अमर बना दिया। अंग्रेजों के सामने झुकने के बजाय उन्होंने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी।
0: 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। झांसी भी इस क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया।
1: रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना को संगठित किया। उन्होंने महिलाओं को भी युद्ध प्रशिक्षण दिया और स्वयं सेवा का नेतृत्व किया। उनकी बहादुरी देखकर सैनिकों का उत्साह और कई गुना बढ़ गया।
0: जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया, तब रानी ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। वे युद्ध भूमि में स्वयं उतर गईं और अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी।
1: कहा जाता है कि अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर वे घोड़े पर सवार हुई और युद्ध करती रहीं। यह दृश्य आज भी वीरता की सबसे बड़ी मिसालों में गिना जाता है।
0: हालांकि परिस्थितियां कठिन थी, लेकिन रानी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने ग्वालियर तक संघर्ष जारी रखा और अंतिम समय तक मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ती रही।
1: 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। उनका साहस, उनका आत्मसम्मान और उनका देश प्रेम के लिए जो जज्बा था, आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है।

0: अभी आप सुन रहे थे यह गीत जो था फिल्म मणिकर्णिका से, जिसे गाया शंकर महादेवन ने।
1: दोस्तों, अक्सर हम बचपन से सुनते हैं कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन क्या यह सफलता का रास्ता सिर्फ नौकरी तक ही सीमित है?
0: बिल्कुल नहीं मेघा, आज का दौर अवसरों का दौर है। अब शिक्षा सिर्फ डिग्री पाने का माध्यम नहीं, बल्कि अपने सपनों को साकार करना और खुद के लिए रोजगार पैदा करने की ताकत भी बन चुकी है। एक ऐसा विषय जो युवाओं को सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाने की प्रेरणा देता है।
1: दोस्तों, शिक्षा का असली उद्देश्य केवल किताबों का ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का उपयोग जीवन में करना भी है।
0: यदि किसी छात्र ने कंप्यूटर की पढ़ाई की है तो वह फ्रीलांसिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग और कई काम भी शुरू कर सकता है। और अगर किसी ने फैशन डिजाइनिंग पढ़ा है तो वह अपना बुटीक भी ओपन कर सकता है।
1: यानी शिक्षा हमें केवल नौकरी के लिए तैयार नहीं करती, बल्कि हमें आत्मनिर्भर बनने की क्षमता भी देती है।
0: आज हम ऐसे कई युवाओं को देखते हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई को अपना व्यवसाय का आधार बनाया। किसी ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, किसी ने अपना स्टार्टअप बनाया, तो किसी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने हुनर को पहचान दी।
1: स्वरोजगार का सबसे बड़ा फायदा ये है कि व्यक्ति अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार काम कर सकता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और नई संभावनाओं के द्वार भी खुलते हैं।
0: हालांकि शुरुआत में चुनौतियां भी आती हैं। पूंजी की कमी, अनुभव की कमी या असफलता का डर कई लोगों को रोकता है।
1: लेकिन याद रखिए, हर बड़ा व्यवसाय कभी न कभी एक छोटे से विचार से शुरू हुआ था। सफलता उन्हीं को मिलती है जो पहला कदम उठाने का साहस रखते हैं।
0: अगर हम अपनी शिक्षा के साथ कौशल विकास को जोड़ दें तो स्वरोजगार के अवसर और भी बढ़ जाते हैं। आज सरकार भी कई योजनाओं के माध्यम से युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
1: आज का युवा अगर अपनी शिक्षा, तकनीक और रचनात्मकता को एक साथ जोड़ ले तो वो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है।
0: और यही एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की पहचान है।
1: तो दोस्तों, आज के विषय से हमें यही सीख मिलती है कि शिक्षा को केवल नौकरी प्राप्त करने का साधन ना समझें।
0: और इसी नई शुरुआत, नए सपनों और आत्मनिर्भरता के जज्बे को सलाम करते हैं। आइए सुनते हैं एक

0: कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे सवाल पूछे थे और उनका जवाब जानने का समय हो चला है। पहला सवाल था, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया है? सही जवाब है राजस्थान।
1: और हमारा दूसरा प्रश्न था, किसके द्वारा हाल ही में ध्रुव पहल लॉन्च की गई है? इसका उत्तर है भारतीय डाक विभाग। इन्हीं विचारों के साथ आज के युवाणी कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त सनाया नायक
0: और मैं हूँ मेघा राय।
2: स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।

मिनीवे पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5:32 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू के स्वर में, इंदीवर के बोल, और फिल्म का नाम है क्रिमिनल, M.M. करीम का संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुनने से पहले एक सूचना सुनिए। आपके मैसेज हमारे गीत कार्यक्रम आपके लिए शुक्रवार रात 9:30 से रात्रि 10 तक आपके अपने प्राइमरी चैनल पर प्रसारित किया जाता है। इस बार की 5 फिल्में जिनके लिए आपको व्हाट्सएप संदेश भेजना है शुक्रवार शाम 4 तक। फिल्में हैं अनमोल घड़ी,

के बोल हैं जवा है मोहब्बत, फिल्म का नाम है सूरज, गीत के बोल हैं बहारो फूल बरसाओ, फिल्म का नाम है आशा, गीत के बोल हैं शीशा हो या दिल हो, फिल्म दामिनी, गीत के बोल हैं जब से तुमको देखा है, फिल्म जानवर, गीत के बोल हैं तुझको न देखूं तो। हमारा मोबाइल नंबर है 9425149342। मोबाइल नंबर एक बार पुनः नोट करें 9425149342। आपके संदेश हमें शाम 4 बजे तक मिल जाने चाहिए। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, इस गीत को हमने लिया है फिल्म वक्त पर बोलना से। हरिहरन का स्वर है, शकील आजमी ने इस गीत को लिखा है।

अभी आप सुन रहे थे हरिहरन को। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को इंदिवर के बोल, कल्याण जयानंद जी का संगीत, फिल्म हिमालय की गोद में।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, इंदिवर के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत और फिल्म का नाम हिमालय की गोद में। आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम का।

गाया फिल्म एक दूजे के लिए का ये गीत। आनंद बख्शी के बोल और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।

एक दूजे के लिए। इस फिल्म में लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम के गाए इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शाम के 5:55 हुए हैं। आइए आपको हमारे आज की शेष सभा के कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से कुछ ही समय बाद यानी कि शाम 6 आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आज शाम 6:30 पर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बैतूल प्रवास पर आधारित रेडियो रिपोर्ट हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। आज शाम 7:21 पर सुनिएगा कृषि जगत। कृषि जगत में आज चर्चा का विषय है रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस और योग। साथ ही हम आपको सुनवाएंगे श्री विकास सिंह के गाए बुंदेली कविता पाठ। आज रात 8 सुर्खियों में फिल्म संगीत का समय है 8:45। समाचार संध्या रात 8:00 फिल्म संगीत का समय है 8:35। समाचार संध्या रात 8:45। News@9 रात 9:00 और रात 9:15 पर स्पॉटलाइट। आज रात 9:30 पर सुनिएगा धारावाहिक हंसना मना है का भाग 6। आलेख हेमंत कुलकर्णी का, परिकल्पना विमल कांति येंडे की और प्रस्तुतकर्ता डॉ. वैजनाथ गौतम। रात 10 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा ललित रतोनिया का तबले पर बजाया 3 ताल। और रात 10:30 पर श्रोता सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। श्रोताओं, ये थी हमारे आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। कुछ ही समय बाद आप समाचार सुनेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में फ्रांस के कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस मुलाकात में विनिर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और समुद्री अवसंरचना जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति ने बैतूल में प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित जनजातीय सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए देश का कोई भी समुदाय विकास की यात्रा में पीछे नहीं रहना चाहिए। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की। श्री प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और क्षमता के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देश भर में

0: नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। और हॉकी में भारतीय महिला टीम ने न्यूजीलैंड में जारी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शबदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
3: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
3: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
2: ग्वालियर सुरेश खुराना, पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
3: आज जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोताओं, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओं, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं, जो समुद्र की रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है, यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून है, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओं, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहां से आते हैं, तो आपको बताए देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहां तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियां भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओं, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओं, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओं, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम? तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्यौहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्यौहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओ, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओ हमारी आज की जानकारी विश्व विख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओ आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
2: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
4: माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं।

जिसमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं।

आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनत के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वो खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
1: हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो ना, जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
0: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया।

0: भयभीत सी वो बोली,
1: मैं थककर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
2: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है, मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहां ही तुम क्यों ना रहो?
1: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
2: प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए है? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहां ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
0: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई, वो बोली,
1: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? दो दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
2: बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो?
1: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती।
2: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
1: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है। तब मुझे जाने दीजिए
2: चिड़िया।

0: तो मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूं।
1: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं? क्या मुझे वो तुम्हारा मालामाल होना चाहिए?
0: अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है। तू सोना नहीं जानती? सोना, उसी की जगत को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तो उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
1: वो सोना क्या चीज होती है?
0: तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूं, उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया? तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
1: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं। पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
0: ठहर ठहर ठहर। इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं। ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? हाँ, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रह।
1: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती। इतना जानती हूं कि माँ मेरी माँ है, और मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो। रात में अंधेरा बहुत हो जाता है, और मैं राह भूल जाऊंगी।

अच्छा, चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।

0: कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
1: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना।
0: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
1: सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
2: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
1: हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है।
2: सेठ मुझे देर हो रही है।
1: देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
2: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
3: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
4: जी मालिक।
0: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
1: हाथ से निकल गई।
0: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी।
2: माँ
0: ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा,
5: क्या है बच्ची? क्या हुआ बेटा, बता बेटा। ना, ना, ना।
0: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही।
5: बड़ी
0: देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 होने को हैं। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बैतूल प्रवास पर आधारित रेडियो रिपोर्ट कुछ ही समय बाद आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बैतूल प्रवास पर आयोजित कार्यक्रमों की रेडियो रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी बैतूल का योगदान है और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित किया जा रहा है।

0: श्रोताओं, आज बैतूल नगर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में जिला प्रशासन और ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त प्रयासों से आध्यात्मिक जागृति से आदिवासी समाज का सशक्तिकरण इस विषय पर महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके, जिले के प्रभारी मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल तथा विधायक बैतूल श्री हेमंत खंडेलवाल प्रमुख रूप से उपस्थित थे। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग और बैतूल जिले के प्रभारी मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की हेलीपैड पर अगवानी की। तत्पश्चात कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रपति का काफिला समारोह स्थल पर पहुंचा। आयोजन स्थल पर श्वेत भव्य वर्षारोधी मजबूत पंडाल लगाया गया था, जिसमें लगभग 4000 लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्था की गई थी। सभी के प्रवेश हेतु अलग अलग प्रवेश द्वार निर्धारित किए गए थे। सुरक्षा कर्मी सघन जाँच और एंट्री पास देखकर ही लोगों का प्रवेश सुनिश्चित कर रहे थे। मंच पर विशेष अतिथियों के बैठने की सुरुचिपूर्ण व्यवस्था की गई थी। यहां पहुंचकर महामहिम द्वारा कार्यक्रम स्थल पर वृक्षारोपण एवं ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ सदस्यों के साथ फोटो सत्र भी पूरा किया गया। कार्यक्रम में आध्यात्मिक जागृति के साथ साथ स्थानीय संस्कृति और विकास की झलक भी देखने को मिली। यहाँ बैतूल की अनूठी स्थानीय कला, हस्तशिल्प और जनजातीय विरासत को प्रदर्शित करती हुई विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। साथ ही वन विभाग द्वारा भी पर्यावरण संरक्षण, वनोपज और जनजातीय समाज के आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़े कार्यों को जीवंत रूप से दिखाया गया था। कार्यक्रम का आरंभ राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान के गायन से हुआ। फिर मंच पर विधिवत दीप प्रज्वलन किया गया तथा मंच पर उपस्थित सदस्यों द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी का शॉल और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत और अभिनंदन किया गया। इसके बाद पीके मंजू दीदी, संचालक बैतूल मध्य प्रदेश, द्वारा स्वागत उद्बोधन दिया गया।
1: आज हम सभी के लिए, विशेष बैतूल वासियों के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, बहुत खुशियों का दिन है। मैं बताना चाहती हूँ, आज से 2 साल पहले मैंने एक छोटा सा सपना देखा था। सपना तो बहुत बड़ा था, दिल और दिमाग की जंग शुरू हो गई थी। दिमाग ने कहा था असंभव, लेकिन दिल ने कहा था संभव। और इतनी इन खुली आँखों से मैंने जो सपना देखा था, आज वो सपना हम सब के सामने साकार हो रहा है।
0: इसके बाद प्रस्तुत स्वागत नृत्य ने सभी का मन मोह लिया।

0: इस अवसर पर जोनल संचालक मध्य प्रदेश बी के शैलजा दीदी ने कहा,
1: आज हम सभी बहुत सुंदर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण। आदिवासी समाज सदैव से ही प्रकृति का रक्षक रहा है। आप में एकता और सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। आपकी जड़ी बूटियाँ जीवन दान देने वाली हैं। जड़ी में दवा और श्रद्धा में दुआ, ये कहावत भारतीय संस्कृति की आस्था और ईश्वर में विश्वास का परिचायक है। हमारे आदिवासी भाई बहनों की ये परंपरा कि हर शुभ अवसर पर नीम, महुआ, पीपल, बरगद जैसे वृक्षों को रोपने की, इन्होंने ही जंगलों को जीवित रखा हुआ है। जलाशयों को प्रदूषण से मुक्त रखना और उनके गहरीकरण के प्रति जागरूक रहना, ये आपका दिव्य कर्तव्य रहा है। ऐसे आदिवासी समाज के जागृति क्या केवल भौतिक विकास द्वारा संभव है, या इसके लिए आध्यात्मिक जागृति आवश्यक है? आध्यात्मिकता हमें स्वयं के अर्थात इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा के मूल गुणों से परिचित कराती है। मूल गुणों में शक्ति है।
0: कार्यक्रम में उपस्थित माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार श्री दुर्गादास विके ने अपने उद्बोधन में जनजातीय समुदाय हेतु सरकार द्वारा लागू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की।
2: आज बैतूल की पुण्य धरा पर हम सभी एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण के साक्षी बन रहे हैं। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं भाइयों बहनों, बल्कि आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक जागरण और जनजातीय अस्मिता के सम्मान का एक विराट महोत्सव है। सबसे पहले मैं अपने संसदीय क्षेत्र बैतूल की ओर से भारत की प्रथम जनजातीय महिला महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ओडिशा के एक छोटे से जनजाति गांव में जन्मी एक साधारण बालिका का भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुँचना केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की शक्ति, संविधान की महानता और सामाजिक समरसता की अद्भुत मिसाल है। महामहिम राष्ट्रपति जी, आपका जीवन संघर्ष, समर्पण और सेवा की अद्वितीय मिसाल है। आपने अपनी कर्मठता, धैर्य और सामाजिक उत्थान के प्रति अटूट संकल्प के बल पर न केवल उच्चतम संवैधानिक पद को सुशोभित किया है, बल्कि देश की हर बेटी, हर वंचित वर्ग और समाज के हर नागरिक के लिए आप प्रेरणा स्रोत है, आदर्श है। आपका जीवन यह दर्शाता है कि सच्ची लगन, कड़ी मेहनत और ईमानदारी से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। आज जब आप बैतूल की इस जनजाति बहुल भूमि पर पधारी हैं, तब यहाँ का प्रत्येक जनजाति परिवार स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। महोदया, आपकी अंतर्वेदना और देश की जनजातियों के प्रति अथाह संवेदनाओं के फलस्वरूप धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनमन आदि कर्मयोगी, संसदीय संकुल विकास परियोजना, सिकल सेल एनीमिया, टीबी जैसी अनुवांशिक बीमारियों के प्रति ठोस कार्य योजनाएं बन सकी हैं।
0: मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने अपने संबोधन में कहा,
3: राजयोग और मेडिटेशन से जो शांति मिलती है वो अब मैंने खुद ने अनुभव किया है। मैं समझता हूँ, यहाँ नीचे में सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी बहनें देखी, यहाँ भी बहुत से आदिवासी समाज के भाई बहन बैठे हैं। मैं सभी को आग्रह करूँगा कि जीवन में हमको शांति चाहिए। पहले पैसा की बात करो, मगर मन को शांति मिलेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। मन को शांति मिलेगी, धार्मिक भावना होगी, तो हम नीति से चलेंगे और भगवान को भी वो पसंद है। इसलिए मैं समझता हूँ आदिवासी सशक्तिकरण में आध्यात्मिकता भी ध्यान होना चाहिए और ऐसी संस्था से जुड़कर हमको जो हमारे जीवन में प्रगति करना है वो अच्छी तरह कर सकेंगे।
0: राष्ट्रपति जी द्वारा कलश एवं ध्वज स्थापना द्वारा महासम्मेलन के शुभारंभ की घोषणा की गई।

0: आध्यात्मिक जागृति आदिवासी समाज के सशक्तिकरण का मूल आधार है। अपनी समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक जीवन शैली इन्हें अपनी अलग पहचान बनाने का एक अवसर देती है। इस बात को रेखांकित करते हुए महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा,
1: उपभोग की संस्कृति और संस्कृति पर आधारित आज की तेज भागती दुनिया में समाज के हर वर्ग की आध्यात्मिक सुचिता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के बल पर दीर्घकालीन रूप से समतापरक आचरण पद्धति और प्राकृतिक संपदाओं के प्रति संवेदनशीलता जीवन शैली

0: विकसित की जा रही है। आज के तनाव और युद्धों से त्रस्त विश्व में इसकी आवश्यकता अतीत के किसी भी कालखंड की तुलना में और अधिक हो गई है। इसीलिए इस सम्मेलन तथा ऐसे प्रयासों का महत्व और भी बढ़ जाती है।
1: आध्यात्मिकता आदिवासियों की जीवन शैली में नैसर्गिक रूप से बसी है, इस बात पर बल देते हुए राष्ट्रपति महोदया ने कहा,
0: जनजातीय समुदाय की जीवन शैली सहज रूप से ही अध्यात्म की मूलभूत प्रेरणाओं के निकट होती है। हम जनजाति को आदिवासी कहते हैं, कोई कोई उनको वनवासी कहते हैं। ये आदिवासी है, आदिम आदिवासी, जो सृष्टि के आरंभ से ही ये धरा पे रहते हैं और उनके जीवन शैली ये केवल कोई वो आध्यात्मिकता ही भरा हुआ है और सुख शांति आनंद प्रेम में जीना जानते हैं, हिंसा से दूर रहते हैं। हम जानते हैं ये आदिम काल में जैसे थे आज भी ऐसे ही है, जैसे कि गीली मिट्टी उसको जैसे बनाओ ऐसे बनते हैं और प्रकृति के पूजा करते हैं, लेकिन केवल प्रकृति नहीं पंचतत्व को पूजा करते हैं। ये धरती, ये आकाश, वायु, जल, सूर्य, चंद्र, इसको पूजा करते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन बनाने के, कोई मंदिर, कोई पूजाशाला बनाते नहीं।
1: राष्ट्रपति जी आगे कहते हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन प्रकृति को कोई क्षति नहीं पहुंचाते, यह उनकी सकारात्मक सोच को दर्शाता है।
0: धरती को क्षति पहुंचाते नहीं, जल को भी दूषित नहीं करते, तालाबों में नहाते, नदियों में नहाते, नदी में कोई कूड़ा फेंकता नहीं, तालाबों को कोई अपरिष्कार नहीं करते। धरती को जरूरत के मुताबिक कभी चोट पहुंचाते तो उसके पहले उसको नमन करते हैं, पेड़ पौधा पूजा करते हैं, वो सही है। आज तो गैस आ गया है, लेकिन एक दिन था पेड़ से ही हम खाना बनाते थे, लेकिन सूखे पेड़ को चुनते हैं। किसी भी कारण कोई पेड़ को चोट पहुंचाते कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो उसके पहले उनको नमन करते हैं, सूर्य को पूजा करते हैं। आप सोचिए, सूर्य नहीं होता तो क्या होता, पेड़ पौधा नहीं होता तो ये जितने हवा परमपिता परमात्मा ने धरती पे दिए हैं वो खत्म हो जाता। आज पेड़ पौधा है इसीलिए वो रोटेट होता है। आज समुन्द्र नदी है इसीलिए बारिश हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए इसी दृष्टि से ये आध्यात्मिकता से आदिवासी समाज भरपूर है, फुट फुट का उनके मन में आध्यात्मिकता भरे हुए है। पेड़ पौधा में वो रहते हैं क्योंकि कभी कभी किसी आदिवासी उनको उनके वंशज, पेड़ पौधों के वंशज कहते हैं।
1: अपने उद्बोधन के अंत में बैतूल जिले और उनके निवासियों के स्वभावगत विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा,
0: मध्य प्रदेश का ये बैतूल जिला अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक विरासत के लिए पूरे देश में जाना जाता है। मुझे बताया गया है कि यहाँ के जनजातीय समुदाय ने अपने विशिष्ट परंपराओं, लोक ज्ञान और सांस्कृतिक मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रखे हैं। बैतूल की जनजातीय संस्कृति में सामूहिकता, सहयोग, सरलता, ईमानदारी और आध्यात्मिकता जैसे उच्च जीवन मूल्य सहज रूप से विद्यमान है। जब आध्यात्मिक और सेवा का संगम होता है तब समाज में स्थायी परिवर्तन आता है। मुझे विश्वास है कि ये महासम्मेलन सेवा और अध्यात्म के इस संगम की ओर लोगों को आकृष्ट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आइए हम सब मिलकर 2047 तक एक ऐसे विकसित भारत का निर्माण करें और अधिक से अधिक प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें, जहां अध्यात्म, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण हमारी समावेश की विकास की आधारशिला बने। मैं एक बार फिर इस आयोजन के लिए अपनी हार्दिक बधाई देती हूँ तथा सभी प्रतिभागियों को उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: आज के कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगायन के सामूहिक गायन से संपन्न हुआ। इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को हेलीपैड पर गरिमामयी विदाई दी गई। अन्य अतिथिगण भी अपने अपने गंतव्य स्थलों की ओर चल पड़े। श्रोताओं, ये थी महामहिम राष्ट्रपति के एक दिवसीय बैतूल प्रवास की रेडियो रिपोर्ट। वाचक योगेश्वर, संकलन प्रवीण चौरे, तकनीकी सहयोग कांता प्रसाद टिकारे और अशोक सोनारे, और प्रस्तुतकर्ता सचिन भागवत।

अभी आप सुन रहे थे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बैतूल प्रवास पर आयोजित कार्यक्रमों की रेडियो रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी बैतूल का योगदान था और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित किया गया। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में आया सावन झूम के फिल्म का गीत। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म डॉन से, आवाज़ें हैं किशोर कुमार और साथियों की। अनजान ने इस गाने को लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

डॉन फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है और हम आपको याद दिला दें कि 8:35 पर भी आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजने को हैं। 7 बजे आप सुनते हैं हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। तो कृपया हिंदी में समाचार के लिए प्रतीक्षा करें, बस चंद सेकंड।
1: नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां पारंपरिक तरीके सीमित साबित होते हैं वहां नवाचार प्रभावी समाधान प्रदान कर सकता है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भारत में डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि क्षेत्रों में तेजी से हो रहे प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उपलब्धियों के माध्यम से मानव क्षमता की नई सीमाओं का विस्तार कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। श्री मोदी ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
2: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोबरे, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। सरकार ने कहा कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मीट्रिक टन LNG से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मीनाक्षी हुडा विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज अपने मुकाबले खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर चुकी हैं। मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi today attended the Viva Tech 2026 alongside French President Emmanuel Macron. Speaking at the event, he highlighted India's rapid technological transformation, stronger India-EU cooperation, and the growing role of innovation in solving global challenges.
1: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology, and tourism.
3: Earlier, Prime Minister held a series of high-level meetings with leading French business leaders in Paris as part of efforts to deepen India-France economic and industrial cooperation. Speaking to Akashvani after the meetings, top executives highlighted growing opportunities in India and announced plans for deeper engagement with the country. Our correspondent covering the Prime Minister's visit reports that discussions focusing on manufacturing, artificial intelligence, sustainability and maritime infrastructure.
2: Saint-Gobain chairman and CEO Benoît Bazin said India is emerging as a major manufacturing and export hub for the Asia-Pacific region. He highlighted the company's investment in low-carbon technologies and energy-efficient building solutions to support India's net-zero goals. Mistral AI CEO Arthur Mensch said the company is keen to strengthen support for Indian languages, expand AI research partnerships, and explore greater collaboration on sovereign AI. He also indicated plans to expand the company's presence in India. CMS CGM Chairman and CEO Rodolphe Sade said India is rapidly developing as a hub for green shipbuilding. He welcomed company's decision to build 6 LNG-powered vessels in partnership with Indian shipyards and said discussions with the Prime Minister also covered logistics, ship recycling, and deep sea port development. The meetings underscored growing economic and technology cooperation between India and France. This is Mahesh Sopre, Akashvani News, Paris, France.
3: The Prime Minister also met CEO of Alstom, Martin Sion. In a social media post, the Ministry of External Affairs said that the discussions between them focused on opportunities in mobility and railway modernization. The Prime Minister is scheduled to address members of the Indian community during a special diaspora event this evening. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today chaired a high-level review meeting to assess preparations for NEET UG re-examination scheduled on Sunday. During the meeting, the minister stressed the need to maintain the highest standards of integrity, transparency, and efficiency in the examination process. He directed all concerned authorities to remain vigilant and ensure all necessary arrangements for the free and fair conduct of the re-examination. The government recorded substantial growth in the coverage and delivery of scholarship benefits to eligible scheduled caste or SC students during the current financial year. The Ministry of Social Justice and Empowerment said that under the post-matric scholarship scheme for SC students, the centre released more than 6,208 crore rupees, reaching over 47 lakh students. While in pre-matric scholarship scheme for SC and others, the government has disbursed more than 562 crore rupees, benefiting over 26 lakh students. The UAE has approved a major new regulation setting the minimum age for social media use at 15 years, a sweeping move aimed at strengthening child protection in the digital space. The decision was taken by the UAE cabinet, chaired by Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. A landmark memorandum of understanding between the United States and Iran has come into effect, bringing an immediate halt to nearly 4 months of direct conflict and opening a 60-day window for negotiations on a comprehensive peace settlement. In FIFA World Cup 2026, Czechia will take on South Africa in Group A clash at Atlanta Stadium in United States tonight. The match is scheduled to begin at 9:30 p.m. Indian Standard Time. Later, Switzerland will face Bosnia and Herzegovina in Group B match at Los Angeles Stadium in United States at 12:30 a.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.
4: Deshik Samachar.

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
5: PLI है ना?
6: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बैतूल में आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस दौरे में एआई, रेलवे और निर्माण क्षेत्र की शीर्ष कंपनियों के सीईओ से की मुलाकात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में शासकीय कन्या विद्यालय की खगोलीय प्रयोगशाला का निरीक्षण किया। आईटी पार्क 3 का भी लिया जायजा। और 20 जून को पीएम किसान उत्सव दिवस। 9.5 करोड़ किसानों को मिलेगी सम्मान निधि की 23वीं किस्त। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन इंदौर पहुंचने पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने बैतूल में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी द्वारा आयोजित आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए देश का कोई भी समुदाय विकास की यात्रा में पीछे नहीं रहना चाहिए।
1: 2047 विकसित भारत बनाने के लिए हम सोचे हैं। पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, ये देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। राष्ट्र पुरुष का प्रत्येक अंग हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक अक्षत होना चाहिए, क्षति नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ये भारत में रहने वाले जनता, कोई भी समाज पीछे ना रह जाए।
0: राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए ओंकारेश्वर क्षेत्र को 19 जून तक नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है और विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस दौरे के दौरान आज कई शीर्ष वैश्विक कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। उन्होंने मिस्ट्रल एआई के सीईओ आर्थर मेंट्स से भारत के बढ़ते एआई इकोसिस्टम पर, एलस्टॉम के सीईओ मार्टिन सीएन से रेलवे आधुनिकीकरण पर और सेंट गोबेन के चेयरमैन बेनोइट बाजिन से निर्माण सामग्री क्षेत्र में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। तीनों कंपनियों ने भारत में और अधिक निवेश तथा विस्तार की इच्छा जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत पाटिल के एक लेख को साझा करते हुए कहा कि सरकार ने पेयजल, स्वच्छता, नदी संरक्षण, सिंचाई, भूजल पुनर्भरण और अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग जैसी चुनौतियों का समाधान समग्र दृष्टिकोण से किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया के एक लेख को साझा करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की परिवर्तन गाथा देश के युवाओं की भी गाथा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर प्रवास के दौरान स्कूल चले हम अभियान के तहत बड़ा गणपति स्थित शासकीय शारदा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया। उन्होंने विद्यालय में स्थापित अत्याधुनिक खगोलीय प्रयोगशाला का निरीक्षण किया, जहां छात्राओं ने दूरबीन, रॉकेट मॉडल और नक्षत्र ट्रैकिंग प्रणाली के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इंदौर में निर्माणाधीन आईटी पार्क 3 का निरीक्षण करते हुए कहा कि प्रदेश को देश का अग्रणी आईटी और सेवा क्षेत्र का केंद्र बनाना उनकी सरकार का संकल्प है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में आयोजित एक प्रेसवार्ता में बताया कि 20 जून को देशभर में पीएम किसान उत्सव दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे।
2: 20 जून पीएम किसान उत्सव दिवस, इस दिन 3:45 पर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। अब तक 22 किस्तों के माध्यम से 4,28,000 करोड़ रुपए, लगभग 9.5 करोड़ किसानों के खाते में अंतरित किए गए हैं और अभी 20 तारीख को फिर 18,800 करोड़ रुपए से अधिक का

0: लाभ हमारे देश भर के किसानों के खाते में ये निधि अंतरित करके दिया जाएगा।
1: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश के सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि पिछले 3 दिनों में 1,47,00,000 LPG सिलेंडर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में नक्सलवाद उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों पर एक रिपोर्ट।
3: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार।
1: केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF पर 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से EPFO के 7 करोड़ से अधिक अंशधारकों को लाभ मिलेगा और इस महीने के अंत तक खातों में ब्याज राशि जमा होने की संभावना है। प्रदेश का खेल एवं युवा कल्याण विभाग प्रदेश की उभरती खेल प्रतिभाओं को तलाशने के लिए टैलेंट सर्च महाअभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत 8 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के युवा खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार किया जाएगा। ऑनलाइन पंजीयन 17 जून से शुरू हो चुका है और चयन प्रक्रिया 27 जून से आरंभ होगी। इस अभियान में एथलेटिक्स, हॉकी, कुश्ती, बॉक्सिंग और तीरंदाजी समेत कुल 21 खेल विधाओं के ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान है। सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान में जागरूकता रैलियां, युवा अभियान, नुक्कड़ नाटक, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं तथा सोशल मीडिया अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। अब रुख करते हैं खेलों की खबर का। ICC महिला T20 विश्व कप में आज इंग्लैंड में वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला होगा, जो भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल ग्रुप ए के मैच में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रनों से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 209 रन बनाए, जिसके जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 114 रन ही बना पाई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी ITI में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी विभाग के DSD पोर्टल पर 30 जून तक ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। सीहोर के बिल्किसगंज सांदीपनी विद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत पर विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें वितरित की गईं। अशोकनगर जनपद पंचायत ईसागढ़ में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। गुना में पॉली हाउस एवं गुलाब की उन्नत खेती पर विशेष प्रशिक्षण कल आयोजित किया जाएगा। शाजापुर जिले के राजीव गांधी महाविद्यालय काला पीपल के सभागृह में आज सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक की कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। जबलपुर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के द्वारा आज राज्य स्तरीय पूर्व सैनिक रैली का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को नूतन खेल परिसर स्टेडियम मंदसौर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। धार जिले के बदनावर में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर का समापन हुआ और नीमच डाक संभाग के द्वारा 20 जून को डाकघरों में आधार एनरोलमेंट और अपडेशन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बैतूल में आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस दौरे में AI, रेलवे और निर्माण क्षेत्र की शीर्ष कंपनियों के CEO से की मुलाकात। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में शासकीय कन्या विद्यालय की खगोलीय प्रयोगशाला का निरीक्षण किया। IT Park 3 का भी लिया जायजा और 20 जून को PM किसान उत्सव दिवस। 9.5 करोड़ किसानों को मिलेगी सम्मान निधि की 23वीं किस्त। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: मिटी वेव डीटीएच ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ एवं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 7:21 होने को हैं। प्रस्तुत है कृषि जगत।

की अरे मोरे राम, धरती मैया लगत सुहैया की अरे मोरे राम, गुड़िया बाई बोली कक्का की अरे मोरे राम, जेठ उतर के असड़ बुलावत की अरे मोरे राम, धान किसानी मन मुस्कावत की अरे मोरे राम, सब मिलकर अब तेरे घर गावे की अरे मोरे राम, बस देवा मिल कहे पुकार की अरे।

खे अरे मोरे राम, कटुता सबरी दूर भगाओ खे अरे मोरे राम, बरखा आबे बारी रे भैया की अरे मोरे राम, बीज खाद रखियो तैयारी की अरे मोरे राम, खेत खलिहान।

चौकिया रे मोरे राम, हिम्मत का दीपक तुम सी चौकिया रे मोरे राम, धरती पानी देश सवार उखिया रे मोरे राम, मिलजुल कर भविष्य को निखार किया रे मोरे राम, मंगला भौजी की जय पुकार किया रे मोरे राम, सब

की, अरे मोरे राम। चलो चलो भैया आगे बढ़े की, अरे मोरे राम। बुंदेली कविता पाठ सुने की, अरे मोरे राम। श्री विकास भैया।

0: के अरे मोरे राम।
1: नमस्कार भैया हरो, आप सभी को हमारी राम राम पहुँचे। आप सभी के बीच में हम भारत को मान बड़ाए बारी महारानी लक्ष्मीबाई की गौरव गाथा, जो कि हम आला के रूप में आप सभी के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सुने सभी लोग,

सोमर गणपति बुद्धि विनायक माँ शारद को करो प्रणाम। चित में लाऊं देवी चंडिका लेख शिव शंकर को नाम। सुमर चलो भोले शंकर को बजरंगी को ध्यान लगाए। राम को नाम सुमर खे मन में गुरु चरणों में शीश नभाए। सन 1828 में जननी धरा कालिका माँ। प्राणन प्यारी पिता के अपने मणिकर्णिका नाम कहाय। मणिकर्णिका नाम कहाय। बड़ी लाडली बाजीराव की, बड़ी लाडली बाजीराव की, लौ नाना ने बहन बनाए। संग में खेले अनोखे खेले, पल भर बिलग होन ना पाए। संग में खेले अनोखे खेले, पल भर बिलग होन ना पाए। मोरो पंत है नाम पिता को, मोरो पंत है नाम पिता को, माता भागीरथी कहाय। बिटियन के एक गुण नाही, आखन भगवा रंग दिखाय। बिटियन के एक गुण नाही, आखन भगवा रंग दिखाय। नाना के संग शिकार करवे, नाना के संग शिकार करवे, रोजई दिना बवन लो जाय। धनुष बाण हाथों में ले लय, कमर लटक रही तलवार। चूड़ी पायल इन्हें न भावे, चूड़ी पायल इन्हें न भावे, बस खट खट तलवार सुनाए। भारत माता की मतवाली, भारत माता के गुण गाय। भारत माता की मतवाली, भारत माता के गुण गाय। अद्भुत साहस बसे हृदय में, जाखो देख काल भय खाए। जैसे सिंघनी जंगल घूमे, इनको खौफ काऊ का नाय। जैसे सिंघनी जंगल घूमे, इनको खौफ काऊ का नाय। अंग्रेजों में जाकी दहशत जासे, सब गोरे घबराए। मनु नाम इनको जग जाहर, जिनसे गोरे रहे डराए। मनु नाम इनको जग जाहर, जिनसे गोरे रहे डराए। बाके साहस को मैं बरनो, नए जीवन की जोत जगाए। खेलत कूदत बड़ी हो गई, ब्याह रचो झांसी में आए। खेलत कूदत बड़ी हो गई, ब्याह रचो झांसी में आए। दुर्गावन खे झांसी आई, लक्ष्मी बाई नाम कहाए। झांसी ने बारिश है पाओ, आंगन में कलियां खिल जाए। झांसी ने बारिश है पाओ, आंगन में कलियां खिल जाए। लक्ष्मी बाई माता बन गई, घर घर बाजन लगे बधाए। कछु दिन बीते हंसी खुशी से, दुख की घटा घेर लैयाए। कछु दिन बीते हंसी खुशी से, दुख की घटा घेर लैयाए। प्यारो बेटा आज गुजर गओ, प्यारो बेटा आज गुजर गओ, दुख को रहो ठिकानो।

आए। एक इमारी जब ओवरी है, एक इमारी जब ओवरी है, राजा मरना सन्न हो जाए। भारी दुख छाओ झांसी में, भारी दुख छाओ झांसी में, जिसको कोई पार ना पाए। रानी अटल हिमालय जैसी, ताके कदम डिगन ना पाए। रानी अटल हिमालय जैसी, ताके कदम डिगन ना पाए। अपनी झांसी मैंने दे हूँ, अपनी झांसी मैंने दे हूँ, लई रानी ने शपथ उठाए। ताकत लगा दई गोरों ने, क्लिप झंडा दे फहराए। झांसी की रानी मर्दानी, अंग्रेजों से भिड़ गई जाए। फौज बनाई जब रानी ने, हर हर नारा पड़े सुनाए। फौज बनाई जब रानी ने, हर हर नारा पड़े सुनाए। चमक उठी सन 57 में, बा तलवार पुरानी आए। थके सिपाही जब रानी के, रानी गई ग्वालियर आए। थके सिपाही जब रानी के, रानी गई ग्वालियर आए। मौत नाच रही अंग्रेजन पे, इनकी खैर रही अब नाए। खट खट खट खट तीगा बाजे, नाचत छपक छपक तलवार। चंडी उतड़ पड़ी ज्यों रण में, रानी मार रही तलवार। एक हाथ तलवार चल रही, दूजे कत्ता रही चलाए। लपट लपट नागन के जैसी, अंग्रेजों पे टूटी जाए। लपट लपट नागन के जैसी, लपट लपट नागन के जैसी, अंग्रेजों पे टूटी जाए। कट कट मुंड गिरे गोरन के, धरती खून से लाल दिखाए। कट कट मुंड गिरे गोरन के, धरनी खून से लाल दिखाए। जो भी रहा है रण खेतों में, उनकी खैर रही है ना। जो भी रहा है रण खेतन में, उनकी खैर बची है ना। लेखे घोड़ा आगे बढ़ गई, पहुंची नाले के ढंगियाए। लेख घोड़ा आगे बढ़ गई, पहुंची नाले के ढंगियाए। घोड़ा अड़ गौ तब रानी को, गोली लगी कमर में जाए। तो मर्दानी हटे न पीछे, जान जाए पर बचन न जाए। तो मर्दानी हटी न पीछे, जान जाए पर वचन न जाए। चोट लगी माथे पे भारी, तब रानी बेसुध हो जाए। अंतिम सांस लई मंदिर में, बोल के जय जय भारत माए। अंतिम सांस लई मंदिर में, बोल के जय जय भारत माए। करे नछावर प्राण देश पे, भारत माँ गोदी बैठाए। आज भी झांसी की धरती पे, ध्वज केसरिया रहो लहराए। आज भी झांसी की धरती पे, ध्वज केसरिया रहो लहराए। आप सभी के बीच में हमारी या भारत के वीरों पे से एक और रचना प्रस्तुत है, सभी जने सुने। जय भारत माँ बोल रे, जय भारत माँ बोल रे, भारत की भूमि लागे न्यारी। जय भारत माँ बोल रे, जय भारत माँ बोल रे, जय भारत माँ बोल रे, भारत भूमि लागे न्यारी। जय भारत माँ बोल रे, झांसी की रानी ने रण में जम

न्यारी, जय भारत माँ बोल रे। वीर भगत सुखदेव लाडले ऐसे माँ के लाल रे, वीर भगत सुखदेव लाड रे ऐसे माँ के लाल रे। जे

0: रे भारत की भूमि लागे प्यारी, जय भारत माँ बोल रे। बीर से बाजी रहे मतवाले, कोई पाव ना पार रे। बीर से बाजी रहे मतवाले, कोई पाव ना पार रे। जिनकी गाथा सब कोई गावे, जिनकी गाथा सब कोई गावे, बेबलशाली अपार रे। जय भारत माँ बोल रे, जय भारत माँ बोल रे। भारत की भूमि लागे बड़ी प्यारी, जय भारत माँ बोल रे। जय भारत माँ बोल रे, जय भारत माँ बोल रे। भारत भूमि लागे अति प्यारी, जय भारत माँ बोल रे।
1: सो भैया, 18 जून की शाम है। गांव की चौपाल में सभी लोग फलों की टोकरी लेके बैठे हैं। वातावरण देखो खुशनुमा है, और देखो बच्चे सुई खेल रहे और पक्षियों की आवाज़ सुई सुनाई दे रही। भैया, आज की चौपाल कछु खास है। एक और प्रकृति को सम्मान करवे के लाने हम सभी देखो फलदान के लाने ते बैठे हैं। फलदान हमने औरों ने रखो है, और दूसरी ओर आज को दिन हमें भारत की महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान की याद सुई दिलाऊत है। और रामू कक्का कह रहे कि आज वो ही दिन है जब झांसी की रानी ने देश की आन बान और स्वाभिमान के लाने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। और गोमती जी, तुम बिल्कुल साची कह रही कि रानी लक्ष्मी केवल एक रानी नहीं हती, बल्कि वे तो साहस और आत्मसम्मान की मिसाल हती। गुड्डू को जोश तो देखो, वो

मर्दा नहीं वो तो झांसी वाली रानी थी। और देखो भारत माँ की वीर सपूत सबकी आंखों का पानी थी। और बाकी भैया हमारे मोड़ा मोड़ी को सोई उनके बारे में ज़रूर बताने चाहिए जिसे वे देश प्रेम और साहस को सीख सके। मोहन भैया के विचार से तो जिस तरह हम पेड़ लगा के आबे बारी पीढ़ियों को भविष्य सुरक्षित करत हैं वही तरह रानी लक्ष्मीबाई ने अपनो वर्तमान देश के भविष्य के लाने समर्पित कर दो तो। अब बलिदानों की जो धरती है वीरों को सम्मान करो, बलिदानों की जे धरती है वीरों को सम्मान करो, रानी लक्ष्मीबाई के साहस को जीवन में आत्मसात करो। सो भैया आज हम दो संकल्प सो लेते हैं, एक देश के वीरों को सम्मान कर हैं और दूसरों हर साल कम से कम एक फलदार पौधा जरूर लगाएं और हम प्रकृति की रक्षा करें, देशभक्ति की भावना जगाएं और रानी लक्ष्मीबाई के आदर्शों पर चलने को प्रयास सोई करें। जय चौपाल को संदेश आए वीरों को सम्मान, प्रकृति को संरक्षण और समाज को उत्थान।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सो भैया, आज है गुरुवार और आज हमारी चौपाल में सुनाई जाऊ थे कहानी। सो सब जनी हो जाओ तैयार और बढ़िया मटको का ठंडा पानी सोई धर लियो और जे देखो भौजाई ने बढ़िया जो अभी अच्छे टेस्टी से कहो जाते ना स्वादिष्ट से चिप्स बनाए है ते बेसोई हम औरों के लाने तल के ले आई है। तुम सोई अपनी तैयारी कर लो और आज की कहानी है रहस्यमय दीपक और भविष्य को संदेश की। सो कहानी ऐसी आए कि बहुत पुराने समय की बात है, पहाड़ों, झरनों और घने जंगलों से घिरे एक सुंदर राज्य को नाम हतो सूर्यगढ़। उतह के लोग मेहनती, खुश मिजाज और एक दूसरे की सहायता करवे वाले थे।

खेत लहलहाते थे, तालाब पानी से भरे रहते और चारों ओर हरियाली फैली रहती। उस समय राज्य के लोग प्रकृति के बड़े करीब थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें एक बुरी आदत लगन लगी। वे केवल वर्तमान के सुख के बारे में सोचन लगे और भविष्य की चिंता करना छोड़ दो। पेड़ बिना सोचे समझे काटे जाने लगे, पानी व्यर्थ बहाव जाने लगो और लोगों ने जे मान लो कि प्रकृति के खजाने कबों समाप्त नहीं हुए। उसी राज्य में देवव्रत नाम को एक किशोर रहतो, बड़ो शांत जिज्ञासु और बुद्धिमान सुई। उसके पिता राज दरबार में सलाहकार हते और दादाजी एक विद्वान व्यक्ति जौन हमेशा दूरदर्शिता को महत्व समझाते थे। एक दिन शाम के समय दादाजी ने उखो अपने पास बुलाओ और पुराने कक्ष में ले गए। उते एक विशाल लकड़ी को संदूक धरो हतो जिस पे समय की धूल जमी भई थी। उनने संदूक खोली और उसमें से एक पुरानो नक्शा निकाल के देवव्रत को दे दो। दादाजी बोले, इस जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमय दीपक है। सदियों से उकी रक्षा एक विशाल बरगद को वृक्ष कर रहा है। कहो जात है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से उसके पास जात है उसे भविष्य को दर्शन होत है। देवव्रत की आंखों में उत्सुकता भर गई। अगली सुबह वो यात्रा पे निकल पड़ो। हल्की धूप, ठंडी हवा और पक्षियों को मधुर कलरव वातावरण को आनंदमय बना रहे थे। रस्ते में उको एक वृद्ध लकड़हारा मिलो। लकड़हारे ने पूछो, पुत्र किते जा रहे हो? देवव्रत ने उत्तर दो, मैं रहस्यमय दीपक की खोज में निकलो हूँ। वृद्ध मुस्काओ, बोलो, याद रखने सबसे बड़ो खजानो होत है सोना नहीं बल्कि सही समय पे सही निर्णय लेने। देवव्रत आगे बढ़ गओ। कुछ दूर जाबे पर उसने एक सूखो तालाब देखो। उसके मन में चिंता भई कि यदि जे स्थिति आगे बढ़त रही तो आवे बारे वर्षों में लोगों को हाल का हुए। अब घंटों की यात्रा के बाद भी एक विशाल बरगद के वृक्ष के पास देवव्रत पहुँच ही गए। उसकी जटाएं धरती को छू रही हती। वृक्ष के नीचे एक सुनहरो दीपक धरो हतो। जैसे ही देवव्रत ने दीपक को हाथ में उठाओ, चारों तरफ ही तेज रोशनी फैल गई। अचानक उसके सामने धुएं के भीतर एक दृश्य उभरन लगो। उन्हें देखो कि बरसों बाद उसके राज्य जोन है वो वीरान हो चुको है। नदियाँ सूख गई हैं, खेत बंजर हो चुके हैं और लोग पानी की एक एक बूंद के लाने संघर्ष कर रहे। बच्चे उदास हैं, लोगों के चेहरों से मुस्कान गायब हो चुकी है। देवव्रत तो भैया घबरा गो। तभी एक गंभीर आवाज़ गूंजी, जे वोई भविष्य है जो तब बनत है जब लोग केवल अपने वर्तमान के सुख के लाने जीत हैं। देवव्रत ने पूछो कि का इस भविष्य को बदलो जा सकते हैं? आवाज बोली, हर भविष्य आज के कर्मों से बनत है। जोन आज सुधर जे हो तो आवे बारो कल भी बदल जे है। तभी अचानक दूसरो दृश्य दिखाई दो। ई बेरा राज्य पहले से अधिक सुंदर हतो। हर घर के सामने पेड़ लगे हते, तालाब स्वच्छ थे, खेतों में हरियाली हती और बच्चे खुशी खुशी खेल रहे थे। आवाज़ फिर गूंजी, जे वोई भविष्य है जो जिम्मेदारी, अनुशासन और सामूहिक प्रयास से बनत है। देवव्रत सब समझ चुको थो। तुरते ही गांव लौटाओ, उन्हें लोगों को अपने अनुभव के बारे में बताओ। पहले तो कुछ लोगों ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लो। मानो एक व्यक्ति बोलो, एक बालक हमें सिखाए कि हमें का करने चाहिए और का नहीं। देवव्रत ने बिना नाराज भय स्वयं काम शुरू कर दो। उन्हें बच्चों के संगे मिलके पेड़ लगाए, तालाबों की सफाई करी और लोगों को समझाओ कि भविष्य अपने आप नहीं बदलत, उनको बनाने पड़त है। धीरे धीरे पूरो राज्य के साथ जुड़ गओ। हर परिवार ने एक पौधा लगावे को संकल्प लगो। पानी बचावे के लाने नियम बनाए गए और प्रकृति की रक्षा को अपनो कर्तव्य मानो गओ। कछु बरसों बाद सूर्यगढ़ पूरे देश के लाने एक आदर्श राज्य बन गओ। एक दिन देवव्रत फिर उसी बरगद के पेड़ के पास पहुँचो।
उन्हें देखो कि दीपक अब शांत हतो और उस पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखो हतो, भविष्य कोई रहस्य नहीं आ, वो आज के कर्मों को

परिणाम आए। देवव्रत मुस्काओ, कैसे कि अब उखो समझ आ गई हती कि सबसे बड़ो जादू कोई दीपक में नहीं आ, बल्कि मनुष्य की सोच और उके कर्मों में छिपो होत है। सो भैया, हमें तो लगत है कि देवव्रत ने बिल्कुल साँची बात कही, समझी और समझाई सोई कि भविष्य कोई रहस्य नहीं आ, वो आज के कर्मों को ही परिणाम आए। तभी तो कहो जात है भैया कि देखो, भविष्य की चिंता करने बहुत उम्दा बात है, तैयारी करके धरने भी बहुत उम्दा बात है, मनो भविष्य को उम्दा बनाबे के लाने आज पे ध्यान देने बहुत ही जरूरी है। और देखो, देवव्रत की जे जो सीख है, जे हम सभी को आत्मसात करने चाहिए कि आबे बारे समय की तैयारी के लाने आज हमें हाथ उठाने ही पड़े, और हाथ उठाकर एक वृक्ष तो लगाने ही है। कैसे कि भैया, जब अपन और निकल रहे हैं घर से बाहर, अभी देखो कछु दिन पहले कितनी घाम हती, अपने घर से लेके जोन खेत अंतलक जानो हो तो सो पूरी पगडंडी खाली पड़ी, एक ओ पेड़ नहीं है कि तन्ना छाँव मिल सके। और जे ही मन में विचार आओ कि पहले जब जे ही पगडंडी से निकलत थे तो कितने पेड़ पौधा लगे हते, गांव के तालाब की रौनक ही कछु और होती, अब तो देखो सब सूखे पड़ रहे। सो हमारों को सोई जे प्रयास करने हैं कि अपने गांव, अपने घर, अपने परिवार, अपने देश, मोहल्ला, क्षेत्र में भविष्य को बनावे के लाने तैयारी सोई करनी आए। और देखो भैया, कहानी तो हमने तुम्हें देवव्रत की सुना दी, और हमारी नियम के अनुसार कहानी के बाद एक प्रश्न सोई होत है, और प्रश्न को उत्तर देवे बारे को इनाम सोई मिलत है। सो भैया, कापी पेन उठा लो और लिखो प्रश्न। आज की कहानी को प्रश्न आए कि देवव्रत ने भविष्य को बदलवे के लाने सबसे पहलो कदम कौन सो उठाओ हतो। भैया प्रश्न फिर से सुन लो कि देवव्रत ने भविष्य को बदलवे के लाने सबसे पहलो कदम कौन सो उठाओ हतो। और देखो, जे जोन प्रश्न है ई को उत्तर आप औरों को 15 दिना के भीतर लिख के हमें भेजने हैं। और भैया, हम तो जे ही कहते हैं कि चिट्ठियां पतरियां आजकल भले जमाना व्हाट्सएप को और तरह तरह के साधनों को होगा, मनो जो चिट्ठियां लिखन में मज़ा आउत है ऊ की तो बात ही नहीं है। और हम तो बड़े खुश नसीब आए कि हमारी चौपाल में, हमारे बसदेवा के लाने जोन हम प्रश्न पूछत हैं ऊ में हमारे भैया हरे जिज्जी हरे भर भर के चिट्ठियां लिख के भेजत हैं, और मन बड़ो प्रसन्न हो जाते हैं सभी के विचार सुन के। सो भैया, जे रहो आज की कहानी को प्रश्न, और 15 दिन पहले हमारी गुड्डन जिज्जी ने जोन कहानी सुनाई हती, बाप शेर बेटा सवा शेर, है ना। सो बाप शेर बेटा सवा शेर जोन कहानी हती ऊ में गुड्डन जिज्जी ने प्रश्न पूछो हतो कि राजा ने काय की रस्सी बनावे क्यों कही हती। सो ई के लाने बहुत सारे लोगों ने उत्तर दिए। सबसे पहले तो तुम उत्तर सुन लो, उत्तर आए बालू की रस्सी। सो भैया, बहुत सारे हमारे जिज्जी हरे बिन्ना हरे ने उम्दा उम्दा उत्तर लिख के भेजे हैं, और बहुत सारे भैया हरे जिज्जी हरे जे सोई कह रहे कि मंगला भौजी, हमारे को सोई चिट्ठियाँ लिख के भेजनी है तो पता सोई बता दो। सो भैया, हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी जबलपुर, पोस्ट बॉक्स नंबर 14, और पिन कोड आए 4820014820001। सो भैया, जे रहो हमारा पता, और ई में ढेर सारी चिट्ठियां लिख के भेजन है, और हमारे प्रश्न को उत्तर सोई देने हैं, हमें प्रतीक्षा सोई रहे। और भैया देखो, हम और इतनो काम करत हैं, है ना, ई के बाद भी कई हमारी जिज्जी हरे भौजी हरे जोन हैं जे कहते हैं कि अरे यार, कहीं पैर में दर्द हो रहा, कहीं मोटापा चढ़ रहा, कहीं कछु हो रहा, कहीं कछु हो रहा। सो भैया, ई के लाने हमें प्राचीन धरोहर जोन हमारी भारत की धरोहर आए, जिन्हें पूरे विश्व को स्वास्थ्य जीवन जीने की राह दिखाई, वो है योग। और ई को सहारा सोई लेने हैं। योग केवल व्यायाम नहीं आ, बल्कि जे शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने की एक संपूर्ण
जीवन पद्धति सोई आए। और भैया देखो, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में तनाव इतना बढ़ रहा हो, दिनचर्या जो है बेसोया नियमित हो गई है। पहले तो अपन और भैया फिक्स हटो कि सवेरे 4 बजे उठ जाने हैं, उठ के जे जे जे जे काम करने हैं और रात में 9 बजे सो जाने। मनो आजकल के मोड़ा मोड़ी को देखो, सो देख के सोई हैरान हो जे हो। अभी हमारो खेत ही देखो, गर्मियों की छुट्टियों में सबरे इकट्ठे भाए, सारे भैया बहनन के मोड़ा मोड़ी आए सब इकट्ठे। अब हम जे देख रहे पूरी पूरी रात भी जग रहे और आधे आधे दिन तलक भी सो रहे। सो हम कहते हैं देखो, बचपना तो अपन औरों ने सोई जियो, मजा आती जब नाना नानी के संगे सवेरे 4 बजे उठ के कहीं खेतन की तरफ जा रहे, कहीं तालाब से पानी भर भी जा रहे, कहीं हमें तो ध्यान है हमारे घर में तो हम लोग 12 मोड़ा मोड़ी हते नानी के घर में। सो जब हम जाऊते तो हमारी एक ठैया मामी, सो मामी बढ़िया बनाओ थी पोहा और कागज की पुड़िया बना बना के हम सभी को दे देती थी। और जो स्वाद वो पोहा में है तो आज के ज़माने में बड़ी से बड़ी दुकान को पोहा खा के भी वो स्वाद नहीं आता। सो भैया भाग दौड़ भरी जिंदगी में तनाव और दिनचर्या को सीमित धरने तो जरूरी आई, शारीरिक निष्क्रियता जोन है ये भी कई बीमारियों को कारण सोई बन रही। और ऐसे समय में योग हमें स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखबे को सबसे सरल और प्रभावी माध्यम बन सकत है। सो भैया योग शब्द जोन है जिस संस्कृत की युज धातु से बनु आए और जी को अर्थ है जोड़ना, मनो स्वयं को प्रकृति मन और चेतना से सोई जोड़ने हैं। सो जोन हमारे केवल प्रतिदिन 20 से 30 मिनट भी योग कर लें सो हमें बड़ो लाभ मिल सकत है। और देखो हमारी त्वचा को लचीलापन बन जात है, मजबूत हो जात है, मानसिक तनाव और चिंता को कम सोई करत है योग, और एकाग्रता और स्मरण शक्ति सोई बढ़ात है। और भैया हम तो कहते हैं, हमने तो आंखों से देखी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत सोई करत है। और जो आजकल लोग कहते रहते ना कि हमें नींद नहीं आ रही नींद नहीं आ रही, तो भैया बहुत अच्छी नींद आवे में सहायता सोई करत है। सो हम तो यही कहते हैं कि जितने भी हमारे जिज्जी हरे भैया हरे हैं वे उठें और उठकर योग को अपने जीवन को साधन सोई बनाए। जौन हम अपने परिवार के संगे प्रतिदिन कछु समय योग को दें तो हम एक स्वस्थ और सकारात्मक समाज को निर्माण सोई कर सकते हैं। सो भैया हम सभी को आज एक संकल्प लेने हैं कि रोज करें योग और स्वस्थ रहें लोग। और अंत में भैया जे पंक्तियों के संगे हम आज की चौपाल को समापन की ओर ले जाते हैं कि योग से तन में शक्ति आउत है, मन में नई उमंग जगाउत है, स्वस्थ शरीर और शांत विचार योग है जीवन को सच्चा आधार। और जय विचार के साथ दीजिए मंगला भौजी को इजाजत, और चलवे की बिरिया हो गई, स्वीकारो हमारी राम राम, जय जवान जय किसान।

अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत मीडिया वेव पर। ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को है सुर्खियों में अब आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। बस थोड़ा सा इंतजार।

0: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत में बीते 12 वर्षों में जो विकास यात्रा का हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दौर देखा है, नए कीर्तिमान हमने देखे हैं, इस संबंध में आज हम कार्यक्रम में एक खास बातचीत आपके लिए लाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीते 12 वर्षों में जो पूर्वोत्तर भारत की बदलती हुई तस्वीर को हमने देखा है, इस बदलती पिक्चर को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से ये संभव हो पाया है, किन कदमों की बदौलत ही हो पाया है?
2: तो पूर्वोत्तर भारत में जो विकास हुआ है उसके मुख्यतः जो कारण है वो सस्टेन्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा टारगेटेड प्रोग्राम डिलीवरी और तीसरा स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। और ये सब जो कार्य हुआ है इसमें कोई एक सिंगल स्कीम जो पूरी कहानी को नहीं बताती है, ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स का एक साथ समावेश होना, उनका कॉन्वर्जेंस होना जो ये चेंज दिखाई पड़ता है उसको दर्शित करता है। 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मैकेनिज्म जो 55 भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इन मिनिस्ट्रीज ने अपना व्यय किया है। साथ ही साथ ऐसे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे नेशनल हाईवेज जहां पर 50,000 करोड़, SARDP नॉर्थ ईस्ट के तहत लगभग 4,800 किलोमीटर के कार्य पूरे हुए। साथ ही साथ भारतमाला परियोजना में 3,000 किलोमीटर के काम लगभग 70,000 करोड़ से की लागत में पूरे हुए। इन सभी कार्यक्रमों से रेल, रोड्स, एयरवेज, इनमें उल्लेखनीय इम्प्रूवमेंट आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जहां तक हमारी कनेक्टिविटी का सवाल है, कई कैपिटल्स अब कनेक्ट हो गई हैं। साथ ही साथ 17 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जब मैं कहता हूं तो मैं सिक्किम को भी उसमें जोड़ रहा हूं, अष्टलक्ष्मी में राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं, उड़ान के तहत 90 रूट्स ऑपरेशनल हैं और कृषि उड़ान स्कीम के तहत एयर फ्रेट चैनल को भी इम्प्लीमेंट किया गया है जिसके द्वारा पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस को फार्मर्स की इनकम्स बढ़ाने में उपयोग में लिया जा रहा है।
1: एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट में, पीएम डिवाइन। तो इस योजना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे इस योजना ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को एक नई दिशा दिखाई है और कैसे ये योजना काम कर रही है?
2: पीएम डिवाइन स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये हाल ही में लॉन्च की गई है पिछली फाइनेंस कमीशन साइकिल में। बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत समझ लीजिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के बीच के बड़े प्रोजेक्ट्स, ताकि जो बड़ी गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको पूरी की जा सके, उस पर्पस से पीएम डिवाइन को लॉन्च किया गया। और इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स जो हैं वो राज्य सरकार के साथ में कंसल्टेशन करके लॉन्च किए जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे उनकी बहुत डिटेल्ड मॉनिटरिंग करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं विभिन्न सेक्टर्स में रहें, जैसे हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन, आईटी पार्क्स, रूरल लाइवलीहुड, वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स। और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सारे प्रोजेक्ट्स का साइट सिलेक्शन, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और टाइमली मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके, ताकि ये प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकें।
1: आपने हाल ही में अभी जून की शुरुआत में ही पूर्वोत्तर भारत ने पीएम डिवाइन योजना के तहत सिक्किम का एक दौरा किया था और इसमें एक स्काईवॉक प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया था। थोड़ा हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये परियोजना धरातल पर, जमीन पर उतरकर काम कर रही है और कैसे एक नए तरह से इस योजना से विकास को देखा जा रहा है और कैसे इससे और भी चीजों को, जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
2: कई राज्यों में, इनफैक्ट ऑल दी 8 अष्टलक्ष्मी राज्यों का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत व्यापक है और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। बालेडुंगा में जो ये स्काई वॉक की आप जो बात कर रहे हैं, अपने आप में बहुत ही यूनिक और अनूठा ये एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में वहाँ मैं जब गया था तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो ना केवल जो स्काईवॉक वहाँ पे तैयार हो रहा है पर जो ऑलरेडी वहाँ पर एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोपवे का, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा है। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का वहाँ पर एक क्लिफ के ऊपर वो स्काईवॉक जा रहा है। मुझे लगता है कि विश्व में इतनी ज़्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोपवे शायद ही कहीं विश्व में हो। डेफिनेटली ये टॉप 1-3 में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा। और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं ताकि वहां पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके, टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिलता है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन में। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। 2 प्रोजेक्ट्स मेघालय में सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। और उन सब प्रोजेक्ट्स से ये कोशिश की जा रही है जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं बन रहा है, जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है तो उसका जो पहला कदम पड़ता है, चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो, या बाद में होटल में उसकी, चाहे वो 5-स्टार हो या 3-स्टार हो, चाहे वो एक छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहां जो उसका इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर, साथ ही साथ गाइड्स। और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहां पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड को हम प्रमोशन दे सकें, खासतौर पे सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। और हाल ही में इस बजट में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी एक घोषणा हुई है, उसके तहत भी आने वाले समय में एक वृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका इम्प्लीमेंट अष्टलक्ष्मी राज्यों में होगा।
1: आपने जैसे कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया, लेकिन पूर्वोत्तर भारत एक और बीड़ा उठा रहा है, वो है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में वो काम कर रहा है। ग्रीन हब के तौर पर बहुत सारे स्टेट्स उभर रहे हैं, सिक्किम के उदाहरण को हमने देखा। कैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मिसाल छोड़ रहे हैं और ग्रीन हब के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर कैसे सामने आ रहे हैं?
2: हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों का बहुत योगदान है, ना केवल भारत के लिए, मैं तो कहूंगा पूरे विश्व के लिए, कि जो यहाँ पर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है, जो यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो ओवरऑल एक इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मॉडल्स हमारे सारे ग्रीन मॉडल्स हैं। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जब जो यूएसपी डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है उसमें जो यहाँ की प्रीमियम वेराइटीज़ हैं, चाहे वो लेकडोंग टर्मेरिक हो मेघालय में, या क्वीन पाइनएप्पल हो त्रिपुरा का, या मिजोरम की जिंजर हो, या ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम हो, ये सारी कार्यक्रम जो है इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो ये सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप को कंबाइन किया जा सके।
1: आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की और अष्टलक्ष्मी शब्द से हमारे श्रोताओं को बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार का फोकस है कि पूर्वोत्तर भारत पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा हब बनेगा। इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में इस दिशा में काम हो रहा है, तो कैसे आप बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज कितना अहम रोल अदा कर रही है पूर्वोत्तर भारत के डेवलपमेंट में, और सरकार इसे कैसे देख रही है?
2: जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नॉर्थ ईस्ट में तैयार हो रहा है, उसी के अनुपात में अब बहुत जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कंपनीज और छोटी एमएसएमईज भी जाएं और अपना इन्वेस्टमेंट्स करें। बहुत पोटेंशियल है, ना केवल एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन में, बट टूरिज्म में, साथ ही साथ चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, हर सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है। तो उसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट का इन्वेस्टर समिट लास्ट ईयर हुआ था, लगभग 4.5 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स, एमओयूज और लेटर ऑफ इंटेंट उसमें हासिल हुए थे। उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को भी बड़ी बारीकी से राज्यों के साथ में मॉनिटर किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएं और इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकें। कुछ स्टेट्स अपने स्तर पर भी सिंगल विंडो पोर्टल्स इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, उससे भी आने वाले समय में अष्टलक्ष्मी राज्यों को बहुत फायदा होगा।
1: एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पूर्वोत्तर भारत के विकास में, वो है जो बीते सालों में शांति स्थापित हुई है, प्रॉस्परस एक हमने पूर्वोत्तर भारत को होते हुए देखा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहले अशांति और हिंसा थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कैसे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आपके मंत्रालय ने इस पर काम किया है, और कैसे जो विवाद थे, जो हिंसा थी, अशांति थी, उसको सुलझाने में बीते सालों में मदद मिली है, और कैसे इससे और विकास को तेजी मिल रही है?
2: गृह मंत्रालय ने कोऑर्डिनेट किया है समस्त राज्यों के साथ में, सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, और उसी का परिणाम है कि आज शांति है, और उस शांति का जो बेसिस है वो एक सस्टेन्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, डायलॉग्स हैं और खास तौर पे एग्रीमेंट्स हैं। उन एग्रीमेंट्स के टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए डोनर मिनिस्ट्री का बहुत मेजर रोल है। उन डेवलपमेंट पैकेजेस को इम्प्लीमेंट करना जो एग्रीमेंट का पार्ट है, खास तौर पे लाइवलीहुड से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और ये इंश्योर किया जाए कि सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन कम्युनिटीज तक पहुंचे जिन्होंने इस एग्रीमेंट में अपने योगदान दिए हैं। और ये सारे इनिशिएटिव्स हमें हेल्प करेंगे आने वाले समय में वहां पर शांति को बरकरार रखने के लिए और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी नॉर्थ ईस्ट की इन एग्रीमेंट्स के का एक मेजर आउटकम के तौर पर निकलेगा।
1: पहले कभी जो लुक ईस्ट का नजरिया था पूर्वोत्तर भारत का, वो एक्ट ईस्ट में सरकार ने बदला है, तो कैसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इसको आप देखते हैं, इस रणनीति को कैसे सरकार पूर्वोत्तर भारत को इस नजरिए से देख रही है?
2: तो इस सिग्नल का जो अर्थ है वो ये है कि इट इज अ मूवमेंट फ्रॉम पैसिव डिप्लोमेटिक ओरिएंटेशन टू अ प्रोएक्टिव इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद द ईस्ट, एंड हियर नॉर्थ ईस्ट इज लाइंग एट द हार्ट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। And it means that by strengthening the physical connectivity, promoting cross-border trade, people-to-people links, and integrating the region into a regional value chain with the Southeast Asia. And I think all the state-specific initiatives actually take us to that particular paradigm. And it's also essential that this approach recognizes Northeast as both a national asset as well as a gateway to external markets. And it also helps us balance the strategic and development priorities.
1: So, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का आप आने वाले समय में किस तरह का कुछ विजन के बारे में बताना चाहेंगे और कैसे जो आज हमारे जो 8 राज्य हैं वो आने वाले समय में विकसित भारत में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं?
2: हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का बैठक हुआ था शिलोंग में। माननीय होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी, हमारे डोनर मिनिस्टर, साथ ही साथ समस्त राज्यों के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ने उस बैठक में शामिल हुए थे। और उसका एक सबसे मेजर जिस बार जो योगदान रहा है वो 8 राज्यों में को मिलाकर 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस बनाई गई थी जो चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा हेडेड थी और उनमें दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया था। पहली बार ये प्रयत्न किया गया था कि हर राज्य अपने खुद के राज्य को ही ना देखे, वो पूरे रीजन को देखे और उस रीजन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस इन हाई लेवल टास्क फोर्सेज में आई है। साथ ही साथ एक विजनिंग एक्सरसाइज हुई है जो 2047 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें विकसित नॉर्थ ईस्ट का क्या योगदान रहेगा वो भी इस लक्ष्य का पार्ट है। अब ये सारी हाई लेवल टास्क फोर्सेज जो बनी है इनका इम्प्लीमेंटेशन आने वाले समय में समस्त राज्यों को मिलाकर, यूनियन मिनिस्ट्रीज को मिलाकर स्टीयरिंग ग्रुप्स के द्वारा होगा और जिससे हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में आने वाले समय में ऑलरेडी विकास की जो गति है

0: अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष विरासत।
1: मिनी वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है।

श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। आपके मैसेज हमारे गीत कार्यक्रम आपके लिए शुक्रवार रात 9:30 से रात्रि 10 बजे तक आपके अपने प्राइमरी चैनल पर प्रसारित किया जाता है। इस बार की 5 फिल्में जिनके लिए आपको व्हाट्सएप संदेश भेजना है शुक्रवार शाम 4 बजे तक। फिल्में हैं अनमोल घड़ी, गीत के बोल हैं जवा है मोहब्बत, फिल्म है सूरज, गीत के बोल हैं बहारों फूल बरसाओ, फिल्म आशा, गीत के बोल हैं शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, फिल्म दामिनी जब से तुमको देखा है सनम, फिल्म जानवर, गीत के बोल हैं तुझको न देखूं तो जी घबराता है। हमारा मोबाइल नंबर है 9425149342। कृपया मोबाइल नंबर एक बार पुनः नोट करें 9425149342। आपके संदेश हमें शाम 4 बजे तक मिल जाने चाहिए। सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। रात्रि के आठ बजकर पैंतालीस मिनट होने को है। समाचार संध्या अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस

0: में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
1: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
0: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।

0: शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गुर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
2: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया। तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
3: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
4: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है।

0: भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it's democratized. Highlights use of technology in India's rapid digital transformation at VivaTech Summit in Paris. Prime Minister also holds discussions with leading French business leaders on investment opportunities and expansion plans in India. Education Minister Dharmendra Pradhan chairs high-level review meeting to assess preparations for NEET UG re-examination scheduled on Sunday. Iranian President Masoud Pezeshkian describes newly signed MOU between Iran and US as a historic document. Ukraine strikes a Moscow oil refinery for the second time within a week. And Meenakshi Hooda advances to quarterfinals of World Boxing Cup 2026 in China. 4 Indian boxers to be in quarterfinal action tomorrow.

0: हंसना मना है के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों आप सुन रहे हैं कुलकर्णी बंधुओं को, यानी हेमंत और दत्तात्रेय कुलकर्णी को। आइए आरंभ करें आज का ये सिलसिला।
1: हाँ भैया, एक बात करना रही आपसे। भैया सुन रहे ना हमारी बात को?
2: अरे सुन रहा हूँ भाई, तुम तो ऐसे बोलो एक बात करना थी, इसी से हम घबरा गए। मतलब आज तुम 10 बातें लेके आए होगे?
1: नहीं, तुम लोग
2: ऐसे पहली बोल रहे हो अभी तुम।
1: नहीं तुम लोग जब भी हम बोलने लगते हैं ना, तुम लोग गुम सुम बिल्कुल हमारी तरफ देखने लगते हो। ये नहीं होता। अब जब अपन घूमने निकले तो घूमने में बातचीत तो होगी कि नहीं? कि चुपचाप घूमना है, क्या करना है?
2: अब जी अपनी अपनी आदत है, जैसे तुम्हारी आदत है घूमेंगे पर हम बड़बड़ाएंगे।
1: हाँ तो
2: ऐसे ही हमारी आदत है, हम घूमेंगे पर हम चुपचाप रहेंगे। पहले तुम्हारी

0: बात सुन ले हम भाई, क्योंकि हम तो कम से कम सोच समझ लेते हैं, तुम हमारे बारे में क्या दूसरे के बारे में सोचते समझते नहीं। अब हम
1: अच्छा,
0: किस परेशानी में है तुमने सोचा ही नहीं।
1: इसमें क्या सोचने की बात है? परेशानी तुम्हारी है, तुम परेशान हो,
0: जेल
1: हम उसमें क्या सोचेंगे बता।
0: मतलब ये तुम हमारे अपने कहलाए, मेरा मतलब है मैं परेशान हूँ, मेरे एक रिश्तेदार अभी दवाखाने में भर्ती है,
1: अच्छा
0: ठीक है ना।
1: हाँ,
0: मैं एक दवाखाने से चला आ रहा हूँ।
1: अच्छा अच्छा दवाखाने से,
0: अब
1: समझ
0: जो मेरा रिश्तेदार भर्ती है वो तो बीमार है,
1: हाँ,
0: पर मेरी हालत अगर देखोगे तो उस बीमार व्यक्ति से कहीं कम नहीं हूं मैं, समझ लो।
1: तो वो तो होता ही है, अस्पताल के चक्कर चालू हुए कि ये तो परेशानी होती है।
0: चक्कर
1: फिर
0: ये जो तुम कह रहे हो ना, बस यही हम सहमत नहीं है।
1: अच्छा,
0: मैं यहाँ एक बात बता दूं तुम्हें।
1: हाँ
0: दवा खाना
1: हाँ
0: है नहीं,
1: हाँ
0: अपने भारत को देखो आप पहले,
1: हाँ
0: जे एक आध्यात्मिक देश है,
1: हाँ
0: समझना बात को।
1: हाँ हम समझ रहे हैं।
0: पहले यहाँ वैद्य लोग हुआ करते थे, वैद्य,
1: हाँ
2: नाड़ी वाले,
0: नाड़ी देखी और पहचान गए कि इस आदमी को बीमारी क्या है,
1: हाँ
0: है नहीं।
1: हाँ
0: फिर राजा लोगों ने उनको अपने पास रख लिया, तो वे वैद्य जो थे वैद्यराज हो गए, वैद्यराज है नहीं। अब जहां पढ़ाई लिखाई का मामला बढ़ गया तो भैया लोग डॉक्टर बनने लगे।
1: हाँ
0: अब दवा खाना अपन बोलते हैं,
1: हाँ
0: अब बोलने ही नहीं चाहिए दवा खाना
1: है। तो हिंदुस्तान में दवा खाना है कहाँ?
0: मतलब
1: आजकल पूरे हिंदुस्तान भर में घूम लो, हाँ। हिंदुस्तान छोड़ो, विदेशों में,
0: हाँ।
1: दवा खाने कहाँ है?
0: नहीं वो
1: दवा खाने का नहीं है, वे सब रिसर्च सेंटर है।
2: रिसर्च सेंटर
1: माने उसमें खोज ही होती रहती है,
0: खोज
1: ही होती रहती।
0: मतलब
1: एक मजेदार बात बताएं?
0: नहीं मतलब ये तो ऐसा हुआ, ये जो तुमने बोल दिया ना,
1: हाँ।
0: कि दवा खाना नहीं रह गया, खोज होती रहती है।
1: और क्या नहीं फिर? अब आप गए,
0: तुम्हें अभी मालूम होगा अपने कौन से वो खेल के लोग हैं वो गए थे। अरे भाई तुम्हें तो इस समय ऐसा खेल खेलना है कि जीतना है, अपने देश का नाम करना है।
2: बिल्कुल।
0: पर वो एक खिलाड़ी था, उसको जब मैं मिला, उससे बातचीत की, तो उसने कहा नहीं शुरू में हम दो खेल में जब खेलेंगे तो बोले हम अभ्यास करेंगे। तो अरे जब जीतने की बात है तो तुम अभ्यास कर रहे हो, ऐसे ही मरीज मर रहा है और तुम खोज कर रहे हो।
1: अरे तो खोज करेंगे तभी तो पता लगेगा भैया। एक मजे की बात बताया तुमको, एक आदमी एक डॉक्टर के पास पहुंचा। अब वो डॉक्टर साहब हमको बड़ी परेशानी में, डॉक्टर ने कहा अच्छा ठीक है, उन्होंने वो फट से कान में स्टेथोस्कोप लगाया और उसकी छाती पे रखा और कहने सांस खींचो। अब वो सांस खींच और लंबी सांस खींचो, हाँ अच्छा बोले अब सांस छोड़ दो, अब बोले खांसो। तो वो आदमी ख ख ख कह लगे जोर से खा दो, कह लगे और जोर से खा दो, करें। और फिर डॉक्टर उससे पूछता है ये खांसी तुम्हें कब से आ रही? वो गए भैया जब से तुम बोल रहे हो जब ऐसे आ रहे, पहले से आ ही नहीं रहे।
2: एक बात याद आ गई था
0: नहीं, और आजकल हम एक चीज बताएं, ये खांसी पे से याद आई, अब तो ऐसे ऐसे गजब के नमूने भी मिलते हैं।
2: हम बता रहे हो का एक नमूना,
0: हम समझते हैं कि चलो तुम डॉक्टर हो, शहर में तुम्हारा बड़ा नाम है, हम आ गए। हमारे मोहल्ले में एक है वो डॉक्टर ऐसा, हम गए उसके पास, तो कोई बीमार व्यक्ति था तो उनने कहा, उसका वो लड़का छोटा सा, तो उसके पिताजी कहने लगे कि बोले डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, हाँ बोलो बोलो क्या बात है? नहीं बोले ये ऐसा दाहिने करवट पे जब सोता है ना,
1: हाँ।
0: तो इसको कान में बड़ा दर्द होता है, देखना जाए।
1: हाँ, समझ गए, हम समझ गए।
0: और हमको चिड़ यही आती है, अरे फिर तुम काहे के डॉक्टर, फिर तो वो वैद्य अच्छा था जो नाड़ी
2: देखा,
0: उसको हमने कुछ बताया है ही नहीं कि हमें क्या बीमार। खैर तो इनने बताया कि बोले डॉक्टर साहब ये ऐसा बाई करवट सोता है तो इसको दाहिने कान में दर्द होता है। डॉक्टर ने फौरन ऐसा ऐसा कुछ किया, ये लो ये दवाई लिखी है ये खरीद लेना, दिन में 3 टाइम खाना, और लड़के को बाएं करवट पे ना सो दाहिने करवट पे सुना, तो जो कोई दवाई है यार, मतलब मजाक कर रहे तुम। पर आम जनता परेशान होती है ना,
2: यही बात है।
0: तो इनने जैसे बताई कि ये खांसी कब से आ रही तुम्हें, अरे तो वो क्या बोला,
1: अरे तो बोले आप जब से खसवा रहे तब से आ रही हो। अच्छा एक घंटा हमको भी याद आ रही भैया, आपको सुना आप

0: बता रहे थे ना आप,
1: वही वही हम बता रहे थे। हमारे एक दोस्त एक बार भाई एडमिट,
0: हाँ
1: एडमिट हुए साहब, तो कम से कम 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, बीमारी दूर होने का नाम ही नहीं। आखिर हमने अपने एक परिचित डॉक्टर को बुलाया, मैंने कहा भाई देखो तो आखिर तकलीफ क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो जो पलंग के पास में चार्ट लगा रहता है ना, जिसमें पूरी बीमारी वगैरह,
0: डेट
1: ऑफ एडमिशन वगैरह ये सब लिखा रहता है, वहाँ नेम ऑफ डिसीज, अब नेम ऑफ डिसीज वहाँ लिखा हुआ था मेरे, तो मैं तो मतलब रोज देख तो रहा था, तो वहाँ लिखा था जीओ के। अब जीओ के मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा था, ये जीओ के कौन सी बीमारी होती है भाई, ये अगर जीओ के बीमारी है कोई नई टाइप की, तो कम से कम ये बोले कि बम्बई ले जाओ, कलकत्ता ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, वो भी नहीं बता रहे, बीमारी भी ठीक नहीं हुई। मैं भी भावी घबराया, मैंने कहा ये जीओ के बीमारी कौन। अब मैंने अपने परिचित डॉक्टर साहब को ले गया, हमने कहा भैया जी जरा देखो तो जीओ के, उनको भी समझ में नहीं आया। अब उनने वो हॉस्पिटल के जो बड़े डॉक्टर थे उनसे पूछा, बोले भैया ये जीओ के बीमारी क्या होती है, अब वो बोलते कुछ नहीं, गॉड ओनली नोज। बोले जे तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही, इसलिए मैंने लिखा है जियो के, गॉड ओनली नोज।
0: नहीं सही में क्या होता
1: ये हाल है साहब,
0: यही तो बात हम बता रहे हैं आपको, परेशानियां तो ऐसी हो जाती है, और कौन किसकी परेशानी का ख्याल रखता है साहब, किसको फुर्सत है। ये आप कभी स्टेशन जाके देखो जरा, रैलियां निकलती है तब।
1: अरे ये हाँ, ये आप
2: बहुत
1: ये बात तो है, बात
0: जिंदाबाद जिंदाबाद। अब वो सोच ही नहीं रहे कि जनता का क्या होगा।
1: अरे जनता का क्या हो, मैं आपको बताऊं, मतलब मैंने आरक्षण कराया, मैं बैठा हूँ अपनी जो बर्थ मिली उस पर, अब शाम का समय है, अब इसके बाद रात होने वाली है, तो मैंने आरक्षण कराया है आराम के लिए, ताकि मैं सुरक्षित वहाँ पहुँचू, रात को सो सकूँ। उतने में अगर कहीं ये रैली आ गई, एक जगह ऐसा ही हुआ,
2: पूछो मत,
1: मैं यात्रा कर रहा था और एकदम से रैली आई। अब मैं ना जिस दल की वो रैली है, ना उनके लोगों को कुछ कह पा रहा हूँ, ना कुछ, तो मेरा कुछ सामान भी यहाँ वहां गायब हो गया, मेरी समझ में नहीं आया ये चोरी हो गई या क्या हो गई। नहीं तो रेलवे अथॉरिटी से बोलना था ना आपको,
2: वहाँ पुलिस आए,
1: भाई वहाँ पुलिस, मैं आई हेल्प यू वगैरह लिखे
0: स्टेशन पे, यहाँ जाके देखो ना कभी वहाँ पर,
1: क्यों
0: पता लगेगा,
1: नहीं नहीं वो रहते ही इसके लिए
0: यहाँ लिखा रहता है,
1: नहीं
0: मैं आपकी मदद करूँ,
1: हाँ लिखा
0: आपकी मदद के लिए पुलिस सहायता केंद्र लिखा रहता है,
1: वहीं जाके आपको बोलना था, मैं गया था, पर जैसा ये कह रहे हैं,
0: हाँ,
1: क्या बोर्ड था वहां पर, पुलिस सहायता केंद्र,
0: हाँ,
1: मैं गया, मैंने कहा साहब ये ट्रेन केवल 10-15 मिनट यहाँ रुकती है,
0: हाँ,
1: मैं फलानी कोच में बैठा हूँ, ऐसा ऐसा हो गया, मेरा एक अटैची शायद चोरी चली गई, आइए थोड़ा देखिए, तो वो उसने मुझे क्या करना चाहिए,
0: मदद की होगी
1: भाई, क्या लिखा था वहाँ, पुलिस सहायता केंद्र,
0: हाँ
1: है ना,
0: हाँ,
1: उसको चाहिए कि वो मेरे साथ आकर कहाँ है, कौन है, क्या है, पूछताछ करनी चाहिए। उसने तो मुझे उल्टी एक सलाह दी, आपका और भी कुछ सामान है क्या वहाँ ट्रेन में, कि सब चोरी चला गया, मैंने नहीं एक अटैची और है, तो बोले वो लेके यहीं उतर जाओ, हम कल तफ्तीश करेंगे,
0: हाँ
1: समझ में ही नहीं आता। बाद में मैंने पूछा, मैंने यार यहाँ तो लिखा है पुलिस सहायता केंद्र, तो मैंने कल यहाँ ऐसी ऐसी शिकायत की, पर कोई मुझे सहायता नहीं मिली। उस आदमी ने सही तरीका सिखाया, इधर आइए, बोले जो लिखा है उसको आप पढ़िए और समझिए, पुलिस सहायता केंद्र
0: मतलब आपको अगर मदद करना है
1: तो नहीं, मतलब अपन जे समझते हैं कि यहाँ जाएंगे तो पुलिस की सहायता अपने को मिलेगी,
2: हाँ। पुलिस को
1: ऐसा नहीं है वो।
2: अच्छा।
1: दूसरे ने मुझे बताया पहले आप इनकी सहायता करो तो वे दौड़ के आपकी सहायता करेंगे।
0: तो देखो समझने वाली बात है। अब एक बताओ, एक आप लोग तो सब पढ़े हो, जानते भी होगे, करत करत अभ्यास के,
1: अच्छा,
0: जड़मती हो तो सुजान, सुना है ना,
1: सुना है,
2: हाँ, बिल्कुल सुना,
0: क्या मतलब है इसका,
1: ये तो बड़ा
0: मतलब बताओ ना,
1: मतलब
0: तो जानते हो तो मतलब बताओ,
1: अरे भाई मतलब बताओ, तुम तो ऐसे हल्ला मचा रहे, बार बार किसी चीज को करते चलोगे, उसका अभ्यास, बार बार वो चीज करते जाओगे, तो जड़ यानी वजनदार बुद्धि, मंद बुद्धि भी अगर है तो उसको भी ज्ञानवान बनाने की क्षमता मतलब, उस अभ्यास
3: मतलब
1: में है।
3: इनके शब्दों में बताएं तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट।
0: हम समझ गए
3: ना,
0: तुम लोगों का कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे मान लो आपको साइकिल चलाना सीखना है हाँ। तो बार बार गिरोगे पड़ोगे हाँ। सीख जाओ मतलब बार बार अभ्यास करोगे तो सीख जाओ यही मतलब है ना यही है ना ये आप लोगों को मालूम है लेकिन उसका मतलब मालूम है क्या
1: नहीं
3: मतलब
0: यही तो मतलब है
1: क्या
0: मतलब समझो
1: हाँ बोलो समझाओ अच्छा
0: अरे आपने बोर्ड बड़ा पुलिस सहायता केंद्र हाँ, चले गए
1: हाँ,
0: लेकिन आप समझे ही नहीं
1: कहा समझना है
0: समझना ये था पुलिस सहायता केंद्र
1: हाँ,
0: वहाँ की छुपा हुआ है पुलिस की सहायता केंद्र
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: हाँ, मतलब करत करत अभ्यास के जड़मति सुहोत सुजान एक आपको यही मालूम कि बार बार अभ्यास करने से मंद बुद्धि वाला पढ़ लिख जाता है ऐसा नहीं है उसका अर्थ है करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान मतलब जो जानकार है वो जब बहुत ज्यादा पढ़ जाता है तो मट्ठर बुद्धि का हो जाता है ये मतलब है
1: ये मतलब है ऐसा बोल रहे देखो ये बात को घुमा क्यों कैसे बताया ये तो जे कह रहे हैं ऐसे ही आजकल छोटे बच्चे भी बड़े तेज तर्राट हो गए कहाँ की बात करूं साहब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि अब जैसे मान लो मैं हूँ मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं कहीं तो मुझे इतना समय निकालना चाहिए कि मैं उन बच्चों को शाम को सवेरे कभी तो भी घंटा डेढ़ घंटा क्या पढ़ा तुमने क्या पढ़ाया गया तुमको क्यों कल तुम्हारा पेपर हाँ, था कैसा हुआ पूछताछ करनी चाहिए
0: हाँ, करना
1: ये पूछताछ नहीं करते हैं तो क्या होता है
0: हाँ,
1: क्या हुआ एक लड़का गया पर्चा दे के आया
0: हाँ,
1: है नहीं अब उसका हिंदी का पर्चा था एक प्रश्न उसमें आया था निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखो
0: अच्छा
1: है हाँ, अब लड़के ने भी घर आके बताया हमने सब सवाल कर दिए हमको अच्छे नंबर मिलेंगे उसको नंबर मिले ही नहीं अच्छे बाद में नींद खुली तो माँ बाप गए स्कूल में हल्ला करने लगे कैसे पढ़ाते हैं आप लोग हम इतनी फीस देते हैं बच्चा ऐसे कैसे पता किया उसकी कॉपी देखी गई बाद में तो उस प्रश्न में लिखा था निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके लिखो एक वाक्य था घूस लेना या देना अन्याय है पर इनने जैसा अपना दिमाग चलाया ना अर्थ कुछ था वो इनने बताया कुछ जड़मति हो तो सुजान ऐसे ही वो लड़का तेज तर्राट था घूस लेना देना अन्याय है उसने उसको शुद्ध कैसे लिखा मालूम घूस लेना या देना ये अन्य आय है
0: समझ की बात है
1: मान लो यानी अक्षर वही है शब्द वही है बच्चे ने आकर के बता दिया मैं पूरा प्रश्न पत्र हल करके आया पर भरोसा करने की अपेक्षा समय रहते बच्चे से अभ्यास तो करा लो नहीं साहब अपना वजन दूसरे पे डाल दिया माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं खाना बनाने वाली पोछा लगाने वाली तो बर्तन साफ करने वाली और साहब बच्चों को पढ़ाने के लिए एक किराए का मास्टर लगा दिया ट्यूशन बोला जाता है पर तुम खुद मेहनत करो ना उस पर
3: रही बात
1: वरना तो उसने तो लिख दिया अन्य आय है
0: नहीं तो ये बात होती है ना भैया माने कहने का मतलब ये है कि आपको इन चीजों को सोचना पड़ेगा ऐसी बात नहीं है सीधी बात लगती है लेकिन बहुत टेढ़ी बात होती है अरे आदमी कैसे कैसे निमक कर लेता है मतलब निकाल लेता है मालूम एक बार एक सेठ ने एक राजा ने मंदिर बनवाया
1: अच्छा
0: मंदिर बनवाया और मंदिर बनाने के बाद क्या हुआ कि उसमें भगवान की मूर्ति रख दी प्राण प्रतिष्ठा हुई धूम धड़ाका हुआ गाजा बाजा हुआ समझ गए और गाजा बाजा होने के बाद हुआ क्या एक पुजारी रख दिया पंडित और टाइम टेबल बन गया भगवान 5 बजे उठेंगे उनको 6 बजे नहलाया जाएगा 7 बजे आरती होगी 9 बजे भोग चढ़ेगा 11 बजे आरती होगी उसके बाद 12 से 3 भगवान सोएंगे पट बंद होंगे 3 बजे खुलेंगे ये नियम कानून बन गए
1: अच्छा
0: मंदिर बन गया अब सब लोग चौकने बता भगवान कभी सोते हैं क्या लेकिन सोए एक बार हुआ एक भक्त को हवाई जहाज से जाना था उसका हवाई जहाज 2 बजे छूटता था अब वो बेचारा मंदिर में आया दर्शन करने तो पुजारी कहने का बोले नहीं द्वार बंद हो गए,
3: पट बंद,
0: आप जाइए, अभी नहीं खोलेंगे, 3 बजे खोलेंगे। वो कहना भैया मेरा हवाई जहाज निकल जाएगा, बैठ जान दो। देखो दिमाग तो है अपना अपना निकालने का। उसने झट से कहा आप चिंता मत करो, एक काम करो, 3 बजे हम पट खोल देंगे, आप दर्शन करके निकल जाना। वो गिड़गिड़ाता रहा गिड़गिड़ाता रहा, फिर उसका दिमाग चल गया तो उसने जेब में से 100 का नोट निकाला और वो दिखाया उसको पुजारी को। पुजारी ने वो नोट लिया, अच्छा कहने चिंता मत करो और दर्शन कर लो। उसने दर्शन किए, पट थोड़े से उसने खोल दिए, दर्शन किए, फड़ाक से निकल गया। निकल गया ये खबर दूसरे पुजारी ने सेठ जी तक पहुंचा दी कि पंडित ने नियम मोड़ दिया। वो आए कहने क्यों तुमने ऐसा किया? वो कहना नहीं महाराज, आप विश्वास रखो मैंने नहीं किया। वो कहना नहीं किया फिर ये कैसे बता रहे? बोले बताइए भगवान सो रहे उनकी नींद कौन खोल सकता है, केवल लक्ष्मी जी खोल सकती है। लक्ष्मी नींद खोल
3: अच्छा कई बार तो मतलब इस प्रकार की चतुरता बड़ी बाल्यावस्था से रहती है। आपको बताऊं, अब एक किस्सा मैं आपको बताऊं, छोटे बच्चे का है, माँ के साथ बाजार गया। अब बाजार में विभिन्न प्रकार के फल फूलों के टोकरियां रखी हुई थी, वो बच्चा बार बार बेर की तरफ देख रहा था। अब दुकानदार को थोड़ा कुतूहल हुआ, उसने अपने बच्चे से कहा बेटा ले लो, बेटा ले लो। तो बेटा बार बार माँ की तरफ देखे कि भाई जब तक माँ आज्ञा नहीं करेगी मैं नहीं लूंगा।
0: बिल्कुल नहीं,
3: अब आदत अपने संस्कार थे बेटे के। तो माँ ने 2-3 बार जब उसने दुकानदार ने कहा बेटा ले लो, बेटा ले लो, माँ की तरफ देखे, तो माँ ने कहा हाँ ले लो बेटा ले लो, तो भी बेटे ने लिया नहीं। अब आखिर वो देखता ही रहा बेरों की तरफ। फिर क्या हुआ, वो दुकानदार को ही लगा कि बहुत ही संस्कारित बालक है, उसने अपने हाथ से बेर उठाए और बालक की जेब में भर दिए। अब जब वो चला तो माँ ने कहा कि बेटा हमने तो तुमसे बोला था कि बेर ले लो, फिर तुमने क्यों नहीं लिए? बोले अरे यही तो तुम समझती नहीं हो, मैं अगर बेर उठाता तो 7-8 बेर आते, अंकल जी ने बेर दे दिए तो मेरे इसमें 15 बेर आ गए।
0: एक कथा बताई गुरु जी ने, वो द्रोणाचार्य की कथा नहीं क्या, एकलव्य धनुष सीखना था। तो मतलब कैसे निकालते थे, देखो गुरु जी ने कथा सुनाई कि बोले द्रोणाचार्य नाम के गुरु थे और वो कौरव पांडव को धनुष विद्या सिखाते थे। एकलव्य आया कहने लगे हमको भी सिखाओ, तो बोले नहीं भाई तुम भील जाति के हो, तुमको नहीं सिखाएंगे, ये हम क्षत्रियों को सिखा रहे। वो जंगल में गया, उसने मिट्टी की मूर्ति बनाई द्रोणाचार्य की और उसके सामने खड़े होकर अभ्यास किया और अर्जुन से भी तेज हो गया। एक दिन जंगल में द्रोणाचार्य कौरव पांडवों को ले गए तो देखा कि बाण चला रहा है एकलव्य, तो उससे पूछा क्यों तुमको ये किसने सिखाया? तो एकलव्य ने कहा गुरु जी आपने। तो बोले हम तो कभी यहां आए नहीं। तो गुरु जी कहने नहीं गुरु जी एक बात है, ये जो मिट्टी की मूर्ति है ये आपकी बनी है। एकलव्य ने कहा
4: क्या बात,
0: और इस मूर्ति के सामने हम खड़े हो गए और इतना अभ्यास किया। मतलब उसका ये कि भाई मिट्टी की मूर्ति से हम इतना सीखे, ये कहानी गुरुजी उनको बता रहे थे।
4: हाँ, बच्चों
0: तो उन्होंने कहा भाई अपन ने बता दी, तो उन्होंने कहा बच्चों इस कहानी से तुमको क्या शिक्षा मिली? तो लड़के धूर आजकल के कहने गुरुजी हमको ये शिक्षा मिली कि मास्टर यदि साल भर चुपचाप रहे तो बच्चे बहुत कुछ सीख सकते। यानी कैसे समझदारी
4: क्या बात है, क्या है? दम है।
0: हाँ, एक हमको याद है किसी लेखक ने बहुत अच्छे शब्द लिखे थे कि हमारे देश की यही विशेषता है कि योजना है कार्य नहीं है, नल है पानी
3: नहीं है,
0: हाँ। लाइट है बिजली नहीं है, और बिजली का तो तमाशा तुम लोग देखते ही हो।
4: एक मिनट ये देखो, यानी ये जैसे शासन प्रशासन बोलता है ना वैसे ही कुछ बोल गए आप। हाँ? लाइट है, हाँ? बिजली नहीं है,
0: हाँ?
4: नल है, ये दोनों शब्द बड़े मजेदार हैं, पर वैसे अगर आप अभी मुझसे कहेंगे कि यार गर्म लग रहा है पंखा शुरू कर दो, मैं यही कहूंगा लाइट नहीं है।
0: हाँ,
4: है ना?
0: हाँ,
4: पर ये देखो कैसा बोल रहे हैं, लाइट है बिजली नहीं है।
0: हाँ,
4: और अभी अपन इनसे पूछेंगे ना कि मतलब लाइट और बिजली अलग है क्या, जे बहुत चतुर आदमी वो बिल्कुल बोलेगा हाँ बिल्कुल अलग है। देखो ये जो बल्ब लगा है ना ये लाइट है।
0: हाँ,
4: है ना?
0: हाँ,
4: पर ये लाइट कब देगा, जब हम ये बटन नीचे करेंगे तब।
0: बिजली है,
4: मतलब बीच में क्या है, बिजली
0: है।
4: तो लाइट अलग बिजली अलग। अब हो क्या रहा है, अब देखो क्या योजनाएं हैं सब, यानी

0: तुमने अगर ये बिजली दी है, किसानों को दी है, गांव देहात में बिजली है, शहर में बिजली है, नहीं साहब कहीं 8 घंटे बंद रहती है, कहीं 12 घंटे बंद रहती है, बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है।
1: तो परीक्षाओं का समय,
0: हाँ
2: है तो परीक्षाओं का समय इसीलिए तो बंद रखते हैं जिसमें बच्चों को परेशानी ना हो।
0: अच्छा अच्छा,
2: क्योंकि जितनी देर में बिजली नहीं रहती हाँ। उतनी देर में वही प्रश्न सेट होते हैं जो आते नहीं है। ये चीज है।
0: अच्छा एक मजे की चीज बताऊं, बल्कि इसमें एक परिवर्तन हो गया है। अगर ऐसी बिजली गोल होती है तो एक कोई संगठन था युवकों का, छात्रों का, उन्होंने मांग की कि हमारे यहाँ बिजली 12-12 घंटे रहती है, बंद रहती है, ऐसे में हमारे पढ़ाई का नुकसान होता है। उनको किसी नेता व्यक्ति ने कह दिया, चिंता मत करो, हम तुम्हें बिजली के भी अंक दे देंगे।
2: हाँ। अरे एक जगह तो इस बिजली ने तमाशा खड़ा कर दिया भाई।
0: यानी आजकल परीक्षा शालाओं का या यूनिवर्सिटी का क्षेत्र है या शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों का है, भगवान जी
1: ही समझ में आता।
0: युवकों के सामने बोलना है तो उन्होंने कहा हम 5 अंक इसके दे देंगे। अरे वो नेता आदमी है, वो बोल गया, देना तो एक परीक्षक को है ना। अच्छा मजे की चीज, परीक्षक को जब कॉपी जांचना है तब वहां बिजली गोल।
2: नहीं एक बार तो ये बिजली ने तमाशा कर दिया भाई।
3: अच्छा
2: एक बार हुआ ये कि एक आदमी थाने में पहुंचा और उसने कहा कि हजूर हमको एक रिपोर्ट लिखना है आपके पास। तो उन्होंने कहा क्या रिपोर्ट लिखना है? बोले हमारी बिजली 2 घंटे से नहीं दिख रही। हमारी बिजली 2 घंटे से नहीं दिख रही। तो थानेदार मूर्ख, शहर की बिजली 2.5 घंटे से बंद है, तुम्हारी बिजली 2 घंटे से नहीं दिख रही, तो कौन सी बड़ी बात हो? कोई बात नहीं है। वो कह रहे नहीं हुजूर आप मजाक कर रहे हैं, हमारी बिजली वाकई 2 घंटे से नहीं दिख रही। तो उन्होंने कहा बिजली 2 घंटे से? अरे यहाँ भी बिजली नहीं है देखो। और उन्होंने बटन लगाया, वास्तव में जली नहीं बिजली। तो वो कहना आप समझ नहीं रहे, मेरी लड़की का नाम बिजली है, वो 2 घंटे से नहीं दिख रही है। कुछ कुछ बातें कर गए। देखो भाई मेरे पास तो वो चीज है, आप एक हमको बात बताओ, हम उसमें आपको टेढ़ा बता दे। जैसे मालूम कोई भी नियम बनता है कब? जब उसको तोड़ने की तोड़ पहले बन जाती है। उन्होंने कहा सड़क पे आड़े टेढ़े मत चलो, सड़कें ही सीधी नहीं रहती, तो आड़े टेढ़े अपने आप ही आदमी चलता है।
0: नहीं नहीं तो ये बात बड़ी मजे की कही आपने कि क्या सड़कें ही सीधी नहीं होती।
2: अरे कहाँ होती है,
0: आप तो सीधी की बात कर रहे हो कि सड़कें ही सीधी नहीं होती। आप एक वाक्य और समझिए, मैंने तो बड़ा अध्ययन किया उसका। एक बार घोषणा हुई, किसी नेता ने भाषण में कहा हम गांव को शहरों से जोड़ना चाहते हैं, गांवों को शहरों से जोड़ना चाहते हैं। ये कहा, मैंने उसका अध्ययन किया, बात सही है। और वो तो जानता है नेता कि अपन ने बोल तो दिया, पर इतना पैसा कहाँ है कि हर गांव से एक एक सड़क यहाँ तक निकाले।
2: बिल्कुल जी।
0: तो आपने देखा होगा शहरों की सड़कें भी वैसी हो गई हैं जैसी गांव में होती है। तो अब गांव और सड़क तो गांव और शहर जुड़ गए। यानी इस समय तो ऐसा हो रहा घुमाना, भ्रम में डालना, भ्रम में डालना है ना। आपने एक बार वो किस्सा बताया था ना,
2: भ्रम में ना, भ्रम में डालने का वो बहुत मजेदार किस्सा है भैया, बहुत मजेदार किस्सा है। माने ऐसा किस्सा है वो भ्रम में डालने का कि एक जगह एक स्टेशन पर शाम के समय 4 सवारियां उतरी और 4 सवारियां अच्छी डबल एक दूसरे से डबल, चारों के चारों बाहर आए और देखा इधर उधर तो एक तांगा खड़ा था। तांगे वाला इनको बहुत देर से देख रहा था कि भाई एक हद सवारी मिल जाए तो घोड़े का दाना पानी निकल जाए। अब हुआ ये कि वो तांगे वाले ने इनकी ओर देखा, ये चारों उसकी तरफ गए और कहने क्यों फलानी जगह चलोगे? तो उसने कहा हाँ चलेंगे, कितनी सवारी? बोले हम चारों हैं।
0: अच्छा
2: तो बोले चलो। बोले पैसा कितना लगे? बोले 100 रुपए। बोले चलो। अब उसने उनको बिठाला, कैसे बिठाला मालूम? वो तांगा कैसा था, 2 सवारी इधर 2 सवारी इधर।
0: अच्छा,
2: आमने
0: अच्छा।
2: सामने बैठा,
0: मतलब वो जिसमें
1: बग्गी बग्गी बग्गी बग्गी
2: बग्गी टाइप,
1: हाँ फाटक भी होगा उसमें,
2: हाँ फटकी भी थी,
1: हाँ फटकी।
2: उसने 2 सवारी इधर 2 सवारी इधर बिठा दी, फटकी फट से बंद की और घूम

0: बैठा तांगे में और घोड़े को मारा हंटर, खड़बड़ खड़बड़ तांगा चला। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने तांगा रोका, फट से पटकी खोली, फट से पटकी बंद की, फिर खड़बड़ खड़बड़ तांगा बढ़ाया। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर तांगा रोका, फट से पटकी खोली, फट से पटकी बंद की, फिर तांगा बढ़ाया। ऐसा जब दो चार बार किया तो सवारी कहने लगी, क्यों रे तांगा चला रहे कि मजाक कर रहे हो? रोकने ए धीरे बोलो।
1: अच्छा,
0: तुम चारों ऐसे मुसंडे रखे हो और मेरा घोड़ा है मरियल, मैं हर बार फटके खटखटा के उसको भ्रम में डालता हूँ, एक सवारी उतर गई, एक सवारी उतर गई।
2: बताया ना मैं,
3: पूरा भ्रम डाल चल रहा
2: है। हाँ, आजकल एक ऐसी कुछ हवा चल गई है, सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है बस उसको भ्रम में डाल दो,
4: भ्रम में डाल दो,
2: काम करो चाहे ना करो उसको भ्रम में डाल दो।

نام نام نام हंसना मना है। अभी आप सुन रहे थे इस धारावाहिक का छठवां भाग। आलेख हेमंत कुलकर्णी का था, परिकल्पना विमल कांति येंडे की और प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर बैजनाथ गौतम। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है।

विनयवेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 10 बजने को हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत ललित रतोनिया का तबले पर बजाया 3 ताल।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ललित रतौनिया का तबले पर बजाया तीन ताल। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। मन भावन सुनने वाले सभी श्रोताओं को राजेश का नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस गीतों भरी सफर में। आपके ढेर सारे पत्र हमें प्राप्त हुए हैं और उन पत्रों के माध्यम से आपने हमें लिख भेजी हैं अपनी फरमाइशें, वो गीत जो आपके मन को भाते हैं, यानी कि मन भावन गीत। तो चलिए शुरू करते हैं गीतों और पत्रों का सिलसिला। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म टैक्सी चोर से। संगीत बप्पी लहरी का है, गीतकार हैं अनजान, आवाज किशोर कुमार की, और इस गीत को सुनना चाहा है योगेश कुमार चौरसिया, श्रीमती संगीता चौरसिया, दिव्यांश कुमार चौरसिया, और हमारे ये श्रोता हैं गोटे गांव से, साथ ही कोटवा नारायणपुर, बाबापट्टी बरिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुरा कला गाजीपुर से अवधेश, श्रीमती प्रीति और नवनीत राय। साथ ही पत्र हमें प्राप्त हुआ है आलम दिलकश जी का, और हमारे ये श्रोता हैं जतुका किशनपुर से, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, नाज प्रवीण और चांदनी नाज। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक और मीका बीरक।

श्रोता संघ बस स्टैंड बंडा बेलई से लक्ष्मण रैखवार, विनीता रैखवार, वैशाली, वैष्णवी, दीपेश, लल्लू, हल्ले, ऋषि और हमारे ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म खुद्दार का गीत, राजेश रोशन का संगीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का स्वर, मजरू सुल्तानपुरी के बोल। साथ ही हमें इस गीत के लिए कुछ और भी पत्र प्राप्त हुए हैं और ये पत्र हैं पुरानी टोली जशनपुर नगर छत्तीसगढ़ से, और ये श्रोता हैं परमानंद नागदेव, मालती कुमारी, सोनाली, मयंक, अनिमेश और मास्टर अंसल नागदेव। साथ ही पिंडरई मंडला से पत्र भेजने वाले श्रोता हैं कमल प्रसाद शर्मा, संजय जैन, सुमन कुमार जैन, मोहम्मद मोहराली और कृपाल पटेल।

श्रोताओं, अगला गीत सुनने से पहले एक सूचना सुनिए। आपके मैसेज हमारे गीत कार्यक्रम आपके लिए शुक्रवार रात 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक आपके अपने प्राइमरी चैनल पर प्रसारित किया जाता है। इस बार की 5 फिल्में जिनके लिए आपको व्हाट्सएप संदेश भेजना है शुक्रवार शाम 4 बजे तक। फिल्में हैं अनमोल घड़ी, गीत के बोल हैं जवां है मोहब्बत, फिल्म सूरज, गीत के बोल हैं बहारो फूल बरसाओ, फिल्म आशा, गीत के बोल हैं शीशा हो या दिल हो, फिल्म दामिनी, गीत के बोल हैं जब से तुमको देखा है, फिल्म जानवर, गीत के बोल हैं तुझको न देखूं तो। हमारा मोबाइल नंबर है 9425149342। आपके संदेश हमें शाम 4 बजे तक मिल जाने चाहिए। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन, और मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त राजेश। आइए सुनते हैं फिल्म सरगम का गीत। इसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसकी धुन बनाई और आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा। पसंद करा है बर्गीनगर जबलपुर से रविंद्र सुभाष, दिगंबर राजेश, शिवम शुभांग, सृष्टि विवेक, वंदना लव और लव कुश ने। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैयालाल, गीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। यंग रेडियो लिसनर्स जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन ने।

सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लकी विकी, नानू और रविंद्र सेन, साथ ही रौनक सेन भी ने भी पत्र भेजा है। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी मनन और तानिया, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत हेमेंद्र और सनमती पंचोलिया, कंवर कॉलोनी बड़वाहा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली, महाराज रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार, विशाल कुमार, शीला गायत्री, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी महिमा, नीतू वैद, आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है फिल्म यादों की बारात का ये गीत। आवाजें हैं आशा भोसले, किशोर कुमार, आर डी बर्मन की,

0: वाली मेम साहब।
1: हाँ, मैं।
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? Yes, 1, 2, 3.

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा आज का मन भावन कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने श्रोताओं के ज्यादा से ज्यादा पत्रों को कार्यक्रम में शामिल करें। जिन पत्रों को हम आज शामिल नहीं कर पाए, उन्हें अगले कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे, इस वादे के साथ। अब अपने रेडियो दोस्त राजेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी।

है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है, जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुँच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।